मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को हैं। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ

0: सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। खुशी को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

हमें सच्चे मन से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। भक्ति अपने इष्ट के प्रति ऐसा समर्पण भाव है जो हमारे मन में यह विश्वास जगाता है कि प्रभु की शरण में हम सुरक्षित रहेंगे। हमारा मन प्रभु की साधना में लीन है। प्रभु हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हम विपदाओं के अंधकार में हैं, हमें आप इस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाइए।

0: अभी आप अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, अनूप जलोटा और पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम, आइए सुनते हैं सद्गुण और दुर्गुण।
4: यजुर्वेद में कहा गया है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन आसुव। इस वेद मंत्र में ईश्वर से यह प्रार्थना की गई है कि हे संपूर्ण जगत के स्वामी, आप हमारे दुर्गुणों को नष्ट कर हमें सद्गुण प्रदान करें। प्रार्थना बुराई पर अच्छाई की विजय की। आगे हम इस वेद मंत्र पर गहन विचार करते हैं, पाते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना हमारे लिए एक लक्ष्य निर्धारित करती है। यहाँ लक्ष्य है दुर्गुणों यानी बुराइयों का त्याग और सद्गुणों यानी अच्छाइयों की प्राप्ति। पर यह लक्ष्य जिसके निर्धारण के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बिना प्रयास के संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में प्रार्थना और प्रयास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना प्रयास या प्रयत्न के प्रार्थना अधूरी है, साथ ही प्रार्थना विहीन प्रयास या प्रयत्न व्यर्थ होता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की शरण में जाकर प्रार्थनाओं के माध्यम से हम नई शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी ऊर्जा को कार्य रूप में परिणत

करने का नाम प्रयास या प्रयत्न है। इस मंत्र में प्रार्थना के बाद चर्चा की गई है दुर्गुणों और सद्गुणों की। दुर्गुण क्या है? ऐसे कर्म जिनसे हमारा स्वयं का और समूचे समाज का अहित होता है, वे कर्म दुर्गुण हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, अपव्यय करना, हिंसा करना, ये कुछ एक दुर्गुण हैं। इसके विपरीत सच बोलना, अस्तेय, मितव्ययता, अहिंसा का पालन, ये कुछ एक सद्गुण हैं। प्रश्न उठता है कि दुर्गुण

0: इसके विपरीत सच बोलना, अस्तेय, मितव्ययता, अहिंसा का पालन, ये कुछ एक सद्गुण हैं। प्रश्न उठता है कि दुर्गुण और सद्गुण की पहचान कैसे हो। सीधा सा उत्तर है, मनुष्य की विवेक शक्ति, जिसके माध्यम से वो बुराई और अच्छाई में अंतर कर सकता है। विवेक शक्ति हमें ईश्वर की आराधना और कृपा से ही प्राप्त होती है। विवेक शून्य मनुष्य पशुवत होकर अनेक दुर्गुणों का शिकार होता है। सवाल ये उठता है कि हमने अपने विवेक के माध्यम से बुराई और अच्छाई की पहचान तो कर ली, ये भी समझ लिया कि मेरा अमुक कर्म बुरा है और अमुक कर्म अच्छा, पर वो कौन सा गणित है जिसके माध्यम से हम अपनी बुराइयों को समाप्त कर अच्छाइयों को अपना सकते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार गणित में पारंगत होने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस कार्य यानी दुर्गुणों को हटाने और सद्गुणों को अपनाने के लिए हमें अंक गणित के जोड़ घटाव, गुणा और भाग की गणितीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना होगा। अपने दुर्गुणों को विवेक शक्ति से पहचान कर उन्हें पहले विभाजित करें, फिर इन विभाजित दुर्गुणों के खंडों को एक एक कर घटाते जाएं। इसी प्रकार सद्गुणों से अपने को जोड़ें और जुड़ने के बाद उन्हें गुणा करें। है ना सरल उपाय, विभाजन, घटाना, जोड़ना, गुणा करना। उदाहरण से ये बात स्पष्ट होगी। मान लीजिए मुझमें सिगरेट पीने की बुरी आदत है। पहले तो मुझे ये मानना होगा कि ये एक बुरी आदत है। इसके बाद इस बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करनी होगी। इसके बाद प्रयास, सत प्रयास, यानी इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए गणित के भाग और घटाव की प्रक्रियाओं का प्रयोग करना होगा। सिगरेट पीने की आवृत्ति को विभाजित कर धीरे धीरे उसे घटाते हुए पूर्ण रूपेण इस बुरी आदत को हम छोड़ सकते हैं और इसके स्थान पर कोई स्वास्थ्य वर्धक पेय को ग्रहण करने की आदत को विकसित कर हम इसे धीरे धीरे संवर्धित कर सकते हैं। इसी प्रकार परोपकार एक मानवीय अच्छाई है जिसे हम अपने जीवन में विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए पहले तो हमें इस अच्छाई के महत्व को भलीभांति समझना होगा, फिर इस अच्छाई को अपने अंदर विकसित करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सत्प्रयास में जुट जाना होगा। पहले अपने परिवार, मित्र अथवा पड़ोसी के लिए एक छोटा सा परोपकार, जो तन, मन अथवा धन से किसी भी प्रकार से हो सकता है। ये बीमार पड़ोसी की सेवा शुश्रूषा के रूप में अथवा किसी निर्धन छात्र को आर्थिक सहायता प्रदान कर हो सकती है। धीरे धीरे परोपकार की भावना हमारे अंदर प्रबल हो जाएगी और ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो जाएगी और हम अपने को सही अर्थों में परोपकारी कह सकेंगे। बस अपनी प्रत्येक बुराई को छोड़ने और संसार की प्रत्येक अच्छाई को ग्रहण करने की सदीक्षा, प्रार्थना और प्रयास को सदा जारी रखना है।
1: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु कार्यक्रम के अंतर्गत सद्गुण और दुर्गुण। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं इस माह के कृषि कार्य विषय पर डॉक्टर DS चौहान से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत।

में ध्यान रखें कि धान में खैरा रोग लग जाता है। अगर बेहन पीली दिखाई दे रही है तो उसमें जिंक सल्फेट का प्रयोग करें, और अगर सफेदा रोग लग रहा है तो उसमें सफेदा रोग के लिए सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, आयरन सल्फेट के नाम से आता है। इसके अलावा किसान भाई जो SRI पद्धति के बारे में जानते हैं, SRI पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें पानी की बचत होती है, बीज की बचत होती है और खाद की बचत होती है। इसमें जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो बेहन है 10 से 12 दिन की बेहन लगानी पड़ती है, और बेहन को उखाड़ करके उसी दिन लगाना होता है और एक जगह पर एक पौधे की दूरी लगाई जाती है। इसमें कल्ले की संख्या अधिक होती है क्योंकि देखा जाता है कि किसान भाई 20 से 25 दिन की बेहन की रोपाई करते हैं तो उसमें कुछ कल्ले उनकी बेहन में ही मर जाते हैं। अगर 10 से 12 दिन की बेहन की रोपाई करेंगे तो पूरे कल्ले आएंगे, कल्लों की संख्या अधिक आएगी और उनकी पैदावार भी अधिक प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों SRI पद्धति को अपना सकते हैं, कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। और जो किसान भाई बेहन लगा चुके हैं, ज़्यादा दिन की जिनकी बेहन हो चुकी है, वो किसान भाई बेहन की रुपाई 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद कर सकते हैं। जो खेत की तैयारी करके खेत को जुताई करके लेब लगा लें, क्योंकि लेब लगाना ज़रूरी होता है। अगर लेब नहीं लगाएंगे तो अच्छे से रोपाई नहीं होगी और खरपतवार की संख्या अधिक बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों इसकी दूरी भी निर्धारित करें। कुछ किसान भाई देखा जाता है कि कम दूरी पर धान की रोपाई कर देते हैं, इससे क्या होता है कि कल्ले कम बनते हैं और पैदावार कम होती है और लागत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि बीज अधिक लग जाता है, अधिक पौधे की संख्या हो जाती है। तो किसान भाई ये ध्यान रखें, लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। और इसमें है क्या है, किसान भाई देखा जाता है कि जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं करते हैं, बाद में हमारी जो फसल में खैरा रोग लग जाता है, पीली पत्ती पड़ जाती है, तो किसान भाई रुपाई के समय जिंक सल्फेट का अवश्य प्रयोग करें। 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। इसमें सफेदा रोग का भी प्रकोप होता है, इसलिए सफेदा रोग के लिए आयरन सल्फेट का भी प्रयोग करें, उसकी भी मात्रा 20 से 25 है। ये बेसल डोज में आपको देना है, इसके बाद इसकी रुपाई करनी है। और जो किसान भाई बेहन नहीं डाल चुके हैं, ये एक ऐसी पद्धति है जो DSR के नाम से आता है, डायरेक्ट सोइंग। इसमें काफ़ी बचत होता है किसान का, जुताई का, बेहन का। इसमें बेहन नहीं डालनी होती है, इसमें डायरेक्ट बुवाई की जाती है, इसलिए इसको DSR बोला जाता है। इसमें जो किसान भाई अपनी बेहन डाल रहे हैं, बेहन की देखभाल कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और इसमें करीब 20 से 25 दिन का टाइम हमारी बेहन में ही लग जाता है। तो किसान भाई क्या करते हैं कि डायरेक्ट सोइंग के लिए एक यंत्र आता है, उस यंत्र से इसकी बुवाई की जाती है। इसकी बुवाई लाइन में की जाती है, उसको बोलते हैं ड्रम सीडर। ड्रम सीडर ज़्यादा महंगा नहीं होता है, इसकी कीमत 3000, ज़्यादा ज़्यादा 3500 रुपये कीमत है। किसान भाई इसको ले सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले हम अपने बीज को फुलाते हैं, फुलाने के बाद अंकुरित करते हैं। तो किसान भाइयों को यह ध्यान रखना है कि हमारे बीज ज़्यादा अंकुरित न हो, थोड़ा सा अंकुरित फेंकता है तो ड्रम सीडर में हम लोग बीज को भर देते हैं, और फिर खेत को हम तैयारी ऐसे करते हैं जैसे रोपाई करते हैं पडलिंग। तो पडलिंग अवश्य कर लेनी चाहिए। पडलिंग के बाद हम उस ड्रम सीडर को लेकर के चलते हैं, तो इसका बीज हमारा लाइन में गिरता जाता है और बीज की दूरी भी मेंटेन रहती है। तो इसमें हमारा जो रोपाई का खर्चा, जो लेबर लगती है, उसका खर्चा कम होता है, हमारी लेबर बचती है, हमारी जो नर्सरी तैयार की जाती है उसकी लेबर बचती है, और हमारी पैदावार जैसे रोपाई करते हैं उतनी ही पैदावार प्राप्त होती है।

0: खेती किसानी में तमाम तरह के कृषि कार्य होत रहती और यहाँ में खेती किसानी में का कृषि कार्य किया जा सकता है। आज इस बीच के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर DS चौहान जी, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज। आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। आप बतावें कि हमा में का प्रमुख कृषि कार्य बाटे, का किसान भाई कह सकते हैं उनके बारे में।
1: किसान भाइयों, जैसा कि जुलाई का महीना बहुत ही किसानों के लिए महत्वपूर्ण होता है और धान हमारे यहाँ की मुख्य फसल है, किसान भाई धान की बेहन डाल चुके हैं और कुछ जो किसानों ने अभी बेहन नहीं डाल चुके हैं उसमें भी अलग अलग पद्धति प्रयोग कर सकते हैं। जो किसान भाई धान की बेहन डाल चुके हैं

0: किसान के अलावा यहाँ में और कौन कौन से कृषि कार्य हैं? जैसे बाजरा का भी है, क्या क्या किसान भाई कर सकते हैं और किस तरह की विधियों को अपना सकते हैं?
1: किसान भाई और धान के अलावा और भी फसलें हैं, जैसे बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, उसकी भी खेती कर सकते हैं। इसमें संकर बाजरा की बहुत अच्छी अच्छी प्रजाति हैं और अच्छी पैदावार लेती हैं। ये प्रजाति हमारी करीब 3 महीने में 4 महीने में पक कर के तैयार हो जाती हैं। जहाँ पे उचास जमीन है, जहाँ पे पानी नहीं टिकता है, वहाँ पे किसान भाई बाजरे की खेती, ज्वार की खेती ले सकते हैं। इसके अलावा दलहनी फसलों में किसान भाई हमारी हरहर की खेती ले सकते हैं। हरहर के साथ इंटरक्रॉपिंग भी ले सकते हैं, ज्वार की खेती भी ले सकते हैं। जैसे हरहर की एक लाइन ले लिया, उसके बीच में ज्वार की खेती डाल दिया बीज, या बाजरा का बीज डाल दिया, या कुछ किसान भाई तिल भी डाल सकते हैं, उसमें तिल की भी खेती ले सकते हैं। जैसे अरहर के अलावा उनको दूसरी फसल की भी अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। तो हमारी दलहनी फसलों में देखा जाता है उकटा अधिक लगता है, तो किसान भाइयों को यह ध्यान देना होगा कि हमारी जो फसल है दलहनी फसलों में, तो इसको हम लोग ट्राइकोडर्मा का अवश्य प्रयोग करें, अपने मिट्टी का उपचार ट्राइकोडर्मा का। 1 किलो ट्राइकोडर्मा का पैकेट आता है, वो 1 एकड़ खेत के लिए होता है। तो किसान भाई इसका कल्चर तैयार करेंगे, एक सड़ी हुई गोबर की खाद लेना और करीब 50 किलो, उसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा का पैकेट मिला के रख दें और नमी नहीं है थोड़ा पानी छिड़क दें। ये काम 1 हफ्ते पहले कर लें, उसके बाद इसको पूरे खेत में छिड़क दें और जोत करके मिला करके पाटा लगा दें और उसके बाद बुवाई करें, तो हमारी जो उकटा की समस्या है, खेत उकट जाता है, वो समस्या हमारी हल हो जाएगी। इसके अलावा किसान भाई उड़द और मूंग की भी खेती ले सकते हैं। उड़द मूंग की खेती बाजरा के साथ इंटरक्रॉपिंग भी ले सकते हैं, ज्वार के साथ भी ले सकते हैं, उसके बाद अरहर के साथ भी किसान भाई ले सकते हैं। तो इसके अलावा हमारी अरहर की खेती जैसे राइजोम कल्चर से भी उपचारित कर सकते हैं। ये इनोकुलेशन होता है, जिससे हमारा क्या होता है, जमाव अच्छा होता है और पौधा स्वस्थ होता है। तो बीज को बोने से पहले शोधन करना आवश्यक होता है, तो फफूंदी नाशक दवा से आपको बीज को अवश्य शोधित कर लेना चाहिए, चाहे किसी भी दलहनी फसल हो चाहे बिना दलहनी फसल हो। इसमें है क्या, कार्बन डाइजम नाम की दवा आती है, 2.5 ग्राम दवा 1 किलो बीज के हिसाब से बीज उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा का बीज उपचार कर सकते हैं, ये भी है क्या जैविक है। इसमें 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 किलो बीज के हिसाब से बीज उपचारित करें और फिर उसकी बुवाई करें, जिससे कोई रोग वगैरह नहीं लगेगा।
0: निश्चय रूप से किसान भाई अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो उनकी पैदावार बढ़ेगी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे इस माह के कृषि कार्य विषय पर डॉक्टर डीएस चौहान से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव की वार्ता, कैसे करें सही चश्मे का चुनाव।
1: नमस्कार। जब भी हमारी आंखों में कोई परेशानी होती है तो हम अपनी आंखों की जांच के लिए किसी नेत्र चिकित्सक या नेत्र परीक्षक के पास जाते हैं, और जब हमें चश्मा लगता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे चेहरे पर कौन सा चश्मा अच्छा लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम चश्मा बनवा तो लेते हैं पर हम उसे केवल इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि बनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे चेहरे पर अच्छा नहीं लग रहा है। आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चश्मा किस तरह का होना चाहिए और वो कैसा आप लें तो आपके चेहरे पर अच्छा लगेगा। याद कीजिए पहले

0: का दौर जब चश्मा मोटे मोटे काले काले रूखे रूखे हुआ करते थे, लेकिन आज की स्थिति बदल चुकी है। आज चश्मे में कई तकनीक आ चुकी है। चश्मा पहले की अपेक्षा ज़्यादा हल्का हो चुका है। इसके अलावा उसकी डिज़ाइन में भी बहुत परिवर्तन आया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलत चश्मे के चयन की वजह से हम परेशान भी होते हैं, हमें तकलीफ़ भी होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसा चश्मा लें कि वो आपके चेहरे को न केवल आकर्षक बनाए बल्कि आराम का एहसास भी कराए। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एक फ्रेम जो किसी दूसरे के चेहरे पर अच्छा लग रहा हो, वो कोई आवश्यक नहीं है कि आपके चेहरे पर भी अच्छा लगे। इसलिए चश्मे के चयन में विशेष सावधानी बरतें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कौन से चेहरे पर कैसा चश्मा अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चौकोर चेहरे की। ये एक ऐसा चेहरा है जिसमें चेहरे की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। ऐसे चेहरे पर आप चौकोर फ्रेम लगा सकते हैं। इसके अलावा वेफेयरर डिज़ाइन या पेंटो फ्रेम जब आप लगाएंगे तो आपके चेहरे की सुंदरता और निखर कर सामने आएगी। इस बात का आप ध्यान रखें कि चौड़े चेहरे पे बहुत अधिक छोटा फ्रेम आप ना लगाएं, वो आपके चेहरे पर ख़राब लगेगा। इसी का अब एक दूसरा हिस्सा आता है गोल चेहरा। गोल चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिसमें चेहरे की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर होती है। ऐसे चेहरे वाले बहुत ही आकर्षक होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनमें फ्रेम के चयन पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़ा फ्रेम लेंगे तो इसमें आपका पूरा चेहरा चश्मे के पीछे छिप जाएगा। तो आप ना तो बड़ा लें और ना ही छोटा चश्मा लें। अगर आप छोटा चश्मा लेते हैं तो उनमें से आप चौकोर लगा सकते हैं, कैट आई के फ्रेम लगा सकते हैं जो कि रिमलेस और सुप्रा भी आप चयन कर सकते हैं। आप गोल फ्रेम बिल्कुल ना लें क्योंकि इसमें आपका चेहरा ढक जाएगा और आपकी आईब्रो और आपकी लीड दोनों ही दिखाई नहीं देगी, जिसकी वजह से यह आपके चेहरे पर अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद आते हैं हम अंडाकार चेहरा। ये भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाना वाला चेहरा है। इसमें चेहरा बिल्कुल अंडाकार होता है और इसमें हम फ्रेम अगर चयन करते हैं तो इसमें ना तो हम गोल लें ना तो कैटाई लें। चौकोर फ्रेम इस तरह के नंबर के लिए, इस तरह के फ्रेम के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। आप अगर चौकोर लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक बड़ा फ्रेम ना लें। अगर आप ज़्यादा बड़ा फ्रेम लेंगे तो वो भी आपके चेहरे पर अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद आते हैं हम दिल के आकार का चेहरा। ये एक ऐसा चेहरा होता है जिसमें माथा चौड़ा और ठुड्डी छोटी होती है। इस चेहरे पे आप चौकोर फ्रेम लगा सकते हैं। हेक्सागोनल फ्रेम यानी जिसमें कई कोन होते हैं, उस तरह के फ्रेम भी आपके चेहरे पर अच्छा लगेगा। इसके अलावा अब हम आते हैं, इसी में एक और फ्रेम आता है जो कि अर्धचंद्राकार होता है। इस तरह के फ्रेम भी अगर आप लेते हैं तो ये फ्रेम आपके व्यक्तित्व को और उभारेगा, आप और भी अच्छे लगेंगे। इसी से जुड़ी हुई एक और कड़ी आती है सब बच्चों का। बच्चों को फ्रेम पसंद कराते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों की नाक और स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को आप ना तो बहुत अधिक बड़ा फ्रेम दिलाएं ना तो बहुत छोटा फ्रेम दिलाएं। अगर फ्रेम बहुत ही बड़ा होगा तो बच्चे को तकलीफ होगी, और अगर छोटा है तो उसके स्किन और कान के पीछे गड्ढे पड़ेंगे और जिससे बच्चे को तकलीफ होगी। अब आते हैं हम बुज़ुर्गों में। बुज़ुर्गों के फ्रेम में भी चयन का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आप इसमें भी ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेम ना छोटा लें, बल्कि वो फ्रेम इनको चयन कराएं जो कि सुविधाजनक हो।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव की वार्ता, कैसे करें सही चश्मे का चुनाव। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्म से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और दिन में 12:15 पर पंडित अनंत लाल और पंडित भोलानाथ का शहनाई और बांसुरी वादन प्रसारित किया जाएगा। रात 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित उमाशंकर का सितार वादन। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। प्रस्तुति होगी सुंदरम तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर अमृता मालवीय के स्वर में भजन सुनिएगा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। 10:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे। सुबह 11:00 आप सुनेंगे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में विशेष भेंटवार्ता, तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियां, भ्रांतियां और समाधान विषय पर सुप्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया तिवारी से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:15 पर। दोपहर 2:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे राम कृपाल यादव, विनीता तिवारी और राम सिंह पटेल। नन्हे मुन्ने सुनेंगे कार्यक्रम नन्ही दुनिया 5:00। युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी 5:15 पर। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे राधे श्याम पांडे से लोकभाषा कविता पाठ। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की वार्ता महात्मा गांधी का प्रकृति दर्शन। रात 8:30 पर कानून और हम कार्यक्रम में आप सुनेंगे कैसे कराएं जमीन की रजिस्ट्री विषय पर रमेश कुमार की बातचीत। रात 9:30 पर आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम कहकशा। रात 10:00 फिल्म संगीत। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

अवधपुरी में स्वयं भगवान राजा रामचंद्र के रूप में विराजमान हैं। नारद सनकादि मुनीश्वर नित्य प्रति उनके दर्शनों के लिए अयोध्या आते हैं और नगरी की शोभा देख अपना वैराग्य भूल जाते हैं। घरों में जब मणियों के दीप प्रज्वलित होते हैं तो मूंगों से निर्मित देहरी

पत्तियां चमक उठती हैं। पन्नों से जड़ी सोने की दीवारों को मानो ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। नगर निवासियों ने सुंदर उद्यान लगाए हैं, जिनमें अनेक प्रकार की लताएं वसंत ऋतु की सुषमा बिखेरती रहती हैं। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा के रूप में विद्यमान हों, वहां के हाट बाजार की शोभा का वर्णन क्या शब्दों में किया जा सकता है।

प्रस्तुत है फिल्मों से भजन, लीजिए सुनिए मशाल फिल्म का ये भजन लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का है और रचना है जावेद अख्तर की।

आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन, लीजिए अब सुनिए सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये भजन लता मंगेशकर के आवाज़ में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

उसे प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की। सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने पर दिया जोर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों सहित गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान की भी चर्चा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कहा, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण। और प्रदेश के स्थायी पुलिस महानिदेशक बने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों

0: के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फाजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है।
2: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए, जिससे कि नदी पूरा साफ हो सके। क्योंकि हम 5 से 6 लोग, 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना जुड़े।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हुलाइंग ने कल गौतम बुद्ध नगर में एनटीपीसी लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस का दौरा किया। उनके साथ म्यांमार का मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वह अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल।

0: में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाए। स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: उधर उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग की एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड संगठन प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा जन सेवा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। बदलते समय और नई चुनौतियों के अनुरूप इस संगठन को अधिक सक्षम, प्रशिक्षित, तकनीकी रूप से दक्ष और आधुनिक बनाया जाना चाहिए। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का स्थायी पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक DGP के तौर पर कार्य कर रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। वह जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग द्वारा कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जिलों में तूफान, बारिश, ओले गिरने और बिजली गिरने की घटनाओं के पीड़ितों के त्वरित सहायता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की। सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने पर दिया जोर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों सहित गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान की भी चर्चा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कहा, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण। और प्रदेश के स्थायी पुलिस महानिदेशक बने वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं पंडित अनंत लाल और पंडित भोलानाथ का युगल शहनाई और बांसुरी वादन। राग है गुर्जरी तोड़ी।

अभी आप सुन रहे थे पंडित अनंत लाल और पंडित भोलानाथ की युगलबंदी शहनाई और बांसुरी वादन की, राग था गुर्जरी तोड़ी। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे श्री अनुपम राय। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है।

0: म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
3: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।

0: आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
2: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार,

सुनम कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज़ महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुनम कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ है मुनीष शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान ग्रैपल

0: समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दोगुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत में 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट लांग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। एक माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलुकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट आउलोंग से बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तकम बनाने और ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर की जाएगी, जिसमें हिफाजत और राबते भी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में मेहमान शख्सियत से मुलाकात की थी। सदर ऊ मिंट आउलोंग ने म्यांमार भारत तजारत फोरम से भी खिताब किया। म्यांमार के सदर भारत के 5 रोजा दौरे पर हफ्ते के रोज बिहार के शहर गया पहुंचे थे। उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी है, जिसमें बहुत से काबीना वज़रा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर शामिल हैं। जनाब ऊ मिंट का सदर की हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। वो तिजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करेंगे और बहुत सी जगहों का दौरा करने के लिए कल मुंबई जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो कौमी राजधानी में राय पिथौरा सकाफती मरकज में लाइट एंड लोटस एक

0: आगे हुए शख्स की बाकियात की नुमाइश से भी महजूज होंगे। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता मुकद्दस पिपरा व बाकियात और नादिर अशिया को नुमाया किया जा रहा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम एक्ट ईस्ट और महासागर पॉलिसियों में शामिल है। उम्मीद है कि सदर ऊ मिन के भारत के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। न्यूज डेस्क से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए चुनाव होंगे। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एचडी देवेगौड़ा, मरकजी गुजरा और बीजेपी रहनुमा जॉर्ज कुरियन नीज रवनीत सिंह, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनके ओहदे की मुद्दत इस माह खत्म हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा

0: जी। न्यूज डेस्क से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए चुनाव होंगे। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा HD देवेगौड़ा, मरकजी गुजरा और बीजेपी रहनुमा जॉर्ज कुरियन नीज रवनीत सिंह, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनके ओहदे की मुद्दत इस माह खत्म हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए भी नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। ये सीटें महाराष्ट्र के नायब वजीर आला सुनेत्र अजीत पवार और तमिलनाडु से AIADMK मेंबर पार्लियामेंट CV शनमुगम के हाल ही में रियासती असेंबली में मंतखब हो जाने की वजह से खाली हो गई थी। ओडिशा के BJD मेंबर पार्लियामेंट देवाशीष सामंतरे ने भी इस्तीफा दिया था। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। पोलिंग इस माह की 18 तारीख को होगी और वोटों की गिनती उसी रोज की जाएगी। ज़िराअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेंगे। 1 महीना तवील ये मुहिम 30 जून तक जारी रहेगी। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इस मुहिम का मकसद सरई जमीन का तहफ्फुज़ और किसानों में साइंसी तर्ज की ज़िराअत के बारे में बेतारी पैदा करना है। इस मुहिम में ज़िराअत से मुतालिक यूनिवर्सिटीज, ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल, कृषि विज्ञान केंद्र और अवामी नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। किसानों को मिट्टी की जांच, कुदरती ज़िराअत, कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल और पानी की बचत के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली कीमियावी खादों, बीजों और जरासीम कुश दवाओं की शिनाख्त भी बताई जाएगी। मुहिम के दौरान PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी स्कीमों, नीज, खेतों में मशीनों से कामकाज किए जाने के फायदे से भी किसानों को वाकिफ कराया जाएगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
1: मगरबी बंगाल के वजीरा शुभेंदु अधिकारी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीरों की इस काउंसिल में 35 नए वजीर शामिल किए जाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब लोक भवन में दिन के 11 बजे मुनाकद होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बुनियादी तौर पर 5 काबीना वजीरों के साथ 9 मई को हलफ लिया था। इस तौसी के बाद रियासती काबीना के वजीरों की तादाद 41 हो जाएगी, जो 294 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली का आईनी उसूल के तहत 15% है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस आज नई दिल्ली में 2रे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वजरा डायलॉग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि इस डायलॉग के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक तआवुन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटर ऑपरेबिलिटी और मुश्तरका तरक्की और मौकों की मुश्तरका पैदावार समेत सनती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में इजाफा होगा, भारत बहरुल काहिल खत्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फरोग हासिल होगा और दिफा और सिक्योरिटी मामलात में इश्तराक के नए मौकों को उजागर किया जाएगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रुनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और नफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम किसानों की फलाह व बहबूद के लिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
0: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल में किसानों की बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए मुतअद्दिद पहल कदमियों का आगाज किया है। इन इकदामात में सबसे नुमाया PM किसान स्कीम का आगाज रहा है, जो मुल्क में फलाह बहबूद से मुतालिक सबसे बड़ी पहलों में से एक है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद सूदमंद है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का

0: मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: फसल बीमा योजना से तकरीबन 23 करोड़ किसानों 1,92,000 करोड़ रुपए मालियत के बीमा दावों से मुस्तफीद हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के छोटे और हाशिर बरादर किसानों को 3,000 रुपए की यकीनी माहाना पेंशन मिल रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के एक रिहायशी ने कहा कि मजकूरा स्कीम से किसानों को रोजगार में मदद मिलेगी।
2: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब
1: से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने MSP को पैदावार से मुतालिक अखराजात का 1.5 गुना कर दिया है। आकाशवाणी न्यूज से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
3: मशहूर मारूफ गुलुकारा सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनकी रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 89 बरस की थी। उन्हें 1950 से 1970 की दहाई के दरमियान, जिसे फिल्म मौसीकी का सुनहरा दौर कहा जाता है, हिंदी, मराठी और बहुत सी दीगर भारतीय जबानों में उनकी गुलुकारी के सबब जाना जाता है। सुमन कल्याणपुर के बारे में कुछ तफसील।
4: सुमन कल्याणपुर 28 जनवरी 1937 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पैदा हुई थीं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में पहली बार 1950 की दहाई के वस्त में गाना गाया था। उनकी आवाज लता मंगेशकर की आवाज से काफी मिलती जुलती थी। उन्होंने अपनी बेहद खूबसूरत आवाज में दिल को छू लेने के अंदाज में तारीख साज मौसीकारों, गुलुकारों, खासतौर पर मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गाने गाए। उनके मकबूल तरीन गानों में से कुछ गाने ये हैं।

0: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, नीज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मौसीकी के मैदान में उनके तआवुन को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर दफ्तर और मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि वो रियासत के कई अजला में तूफान, बारिश और इंतहाई खराब मौसमी हालात पर मुसलसल नजर रखे, किसी भी हादसे की सूरत में फौरी इकदाम को यकीनी बनाए। कल राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में मौसम में तब्दीली आई, जिससे लोगों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसमियात महकमे ने रियासत के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान में दिफाई एतबार से अहम ब्यू फोर्ट कासल इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इसराइल की दिफाई फौजों ने बताया कि ब्यू फोर्ट रिज और वादी अल सलूकी में फौजी दाखिल हुए और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह कहा गया है कि ईरान के साथ उनके मुजवजा माहदे में न्यूक्लियाई मामलात का जिक्र नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने बताया कि इस माहदे में वाजे किया गया है कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करना नहीं दिया जाएगा और इस माहदे में न्यूक्लियाई सरगर्मियों से मुतालिक तफसीली कवानीन शामिल हैं। क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। बीसीसीआई सदर मिथुन मन्हास और सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने आईपीएल 2026 की बाबकार ट्रॉफी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को पेश की। तफसील हमारे नमानिगार से।
1: For a second time running, Royal Challengers Bengaluru back-to-back winners of the Tata IPL.
2: कल रात उस वक्त आरसीबी के हर फैन का ख्वाब पूरा हो गया जब विराट कोहली ने गेंद को हिट करके बाउंड्री से बाहर पहुंचाकर टीम को जीत दिलाई। गुजरात टाइटंस की तरफ से दिए गए 156 रन के निशाने को आरसीबी ने विराट कोहली के 42 गेंद पर 75 रन की मदद से बआसानी हासिल कर लिया। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट के नुकसान पर महज 155 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर सबसे ज्यादा 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कोनेन हैदर।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर

0: होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे शदीद गर्मी के दौरान महफूज रहना, एहतियात, तैयारी और हिफाजत के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से वाबस्ता डॉक्टर रूपाली मलिक के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 134वीं किस्त से खिताब करने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने मन की बात में समाजी खिदमत, तालीम और माहौलियात के मैदान में नुमाया काम करने वालों की सताइश की, साथ ही अवाम से अच्छे कामों से जुड़ने की अपील की। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन बने बहरिया के 27वें सरबराह, इस खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर शाई किया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। पीएम स्वनिधि स्कीम के 6 साल मुकम्मल, ये खबर भी तमाम उर्दू खबरों में नुमाया है। और अखबारात में शाये होने वाली अहम बैनुल अक्वामी खबर है कि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का मुश्तरका दिफाई प्लान, साल 2027 तक ज़ेर-आब ड्रोन्स तैयार करने का ऐलान।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिन आउलोंग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। 1 माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलुकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
7: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
6: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
7: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
8: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार के साथ। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य के मार्ग पर चलते रहें और मंजिल की परवाह ना करें, मंजिल अपने आप ही मिल जाएगी। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन मंजिल अवश्य मिलती है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सुविचार हमें भेजा है राम कुमार रेवाड़ जी ने राजस्थान से। विष्णु टेलर जी का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है, कहते हैं जो महादेव पर विश्वास रखता है वह परिस्थितियों से नहीं घबराता, क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे कितना भी कठिन समय, कितना भी कठिन क्यों ना हो, भोलेनाथ की कृपा से हर अंधेरा एक दिन उजाले में बदल जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है विष्णु टेलर जी। आपके नाम है ऋतिका, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता, आरोही, प्रियांशी, सोनी। दुर्गेश जी का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है, कहते हैं एक दिन एक नई शुरुआत है, इसलिए आज को बेहतर बनाओ, जो आज मेहनत करता है वही कल सफलता पाता है। अच्छे

विचार जीवन को बदल देते हैं और अच्छे कर्म सम्मान दिलाते हैं। उत्तम सिंह जंगेल का हमें सुविचार प्राप्त हुआ है। ज्येष्ठ का प्रखर सूर्य हमें सिखाता है कि आपकी परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, अपना प्रकाश और आत्मविश्वास कभी कम नहीं होने देना चाहिए। नीरा त्रिपाठी जी का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है। कहते हैं, लोग आपके रास्ते में गड्ढे करें तो परेशान मत होना, क्योंकि यही लोग वो हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। उम्र को हराना हो तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त चंद रखिए पर चुनिंदा रखिए। बहुत अच्छी बात नीरा त्रिपाठी जी ने हमें बताई है। बाधे राज खोरवाल जी का हमें सुविचार मिला है। अनमोल है कुछ चीज तो वो आपका समय है, इसे व्यर्थ में ना गंवाएं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतने प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे सुविचार भेजे हैं। श्रोताओं, अब आते हैं अपने विषय पर। आज का हमारा विषय है प्राकृतिक आपदाएं। पृथ्वी की प्राकृतिक शक्तियों के कारण होने वाली वे विनाशकारी घटनाएं जो इंसानी जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं घटनाओं का परिणाम है जो भौतिक क्षति और मानव जीवन एवं पूंजी को हानि का कारण बनती हैं। प्राकृतिक आपदाएं कुछ दशकों से बढ़ी हैं, जिनका मुख्य कारण मानव का प्राकृतिक से खिलवाड़ है। हमने जंगलों का विनाश किया है, पहाड़ों को नष्ट किया, खनन कर धरती को खोखला कर दिया है, प्रदूषण फैलाकर जमीन, जल, हवा को दूषित कर दिया है। इन कारणों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जिसका परिणाम प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें भुगतना पड़ रहा है।

श्रोताओं, हम लौटते हैं अपने कार्यक्रम में। ये आपदाएं समुदायों और व्यक्तियों के जीवन तथा प्रभावित क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बाधित करती हैं। श्रोताओं, प्राकृतिक आपदाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, वरन उससे निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक घटित हो सकती हैं, जैसे भूकंप, या धीरे धीरे विकसित हो सकते, जैसे सूखा। इन आपदाओं की तीव्रता और प्रभाव का स्तर इस पर निर्भर करता है कि प्रभावित क्षेत्र में मानव आबादी कितनी है। प्राकृतिक आपदा कोई धरती पर एक नहीं बल्कि अलग अलग रूप में विनाश करती है। धरती पर प्राकृतिक आपदाओं का आना सामान्य है, क्योंकि यह प्रकृति का एक हिस्सा है। कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं का आए दिन हमें सामना करना पड़ता है। जबकि अधिक वर्षा के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, तब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत में हर साल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसके प्रभाव से लोगों की जान तो बचाई जा सकती है, लेकिन फिर भी भारी मात्रा में बाढ़ के कारण लोगों को जान माल दोनों का नुकसान उठाना पड़ता है। कहीं कहीं बारिश ना होने की वजह से सूखे की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों को पानी और जल और फसल जैसे संकट का सामना करना पड़ता है।

श्रोताओं, इन आपदाओं से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी भूकंप आ रहा है तो हमें घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत मेज़ या फर्नीचर के नीचे छुप जाएं, खिड़कियों, भारी अलमारियों और कांच से दूर रहें। यदि खुले में हैं तो पेड़ों, इमारतों और बिजली के खंभों से दूर रहें, सुरक्षित स्थान पर रहें। बाढ़ के दौरान घर में पानी भरने लगे तो बिजली के मुख्य स्विच को बंद कर दें और सुरक्षित स्थान या छत पर चले जाएं। बहते पानी या जल

भराव वाले रास्तों से न गुजरें। आपातकालीन स्थिति के लिए हमेशा पीने का पानी और सूखा राशन तैयार रखें। चक्रवात या तूफान के दौरान खिड़कियों और दरवाजों को कसकर बंद रखें। अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित राहत शिविरों में चले जाएं। श्रोताओं, प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक योजना और जागरूकता के माध्यम से इनके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे मानव जीवन की सुरक्षा की जा सकती है।

श्रोताओं, प्रकृति से खिलवाड़ ना करें। पेड़ लगाकर ही हम आने वाली पीढ़ियों को जीवन दे सकते हैं। जो प्रकृति का सम्मान करता है, प्रकृति उसका पोषण करती है। छेड़छाड़ करने पर विनाश निश्चित है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, वनों की कटाई को रोकना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मिस सीमा
4: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों, लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 बन जाओगे।
4: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं।

0: होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए पैडमैन फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना पैडमैन फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ थी, संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने और रचना थी कौसर मुनीर की। लीजिए अब सुनिए पहचान फिल्म का ये गीत, मुकेश की आवाज़ में, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, रचना है नीरज की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चित्रकूट और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
2: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में आवासहीन एवं जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मार्च 2026 तक जनपद के समस्त नगर निकायों से कुल 13,835 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7,067 आवेदनों की जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जाँच उपरांत 4,663 आवेदक योजना हेतु पात्र पाए गए। पात्र लाभार्थियों में से 3,547 आवेदकों का DPR तैयार कर मुख्यालय प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जनपद में कुल 1,932 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें नगर पालिका परिषद चित्रकूट धामकर भी 935 आवास, नगर पंचायत राजापुर 553 आवास, नगर पंचायत मऊ 414 आवास, नगर पंचायत मानिकपुर 30 आवास शामिल हैं। स्वीकृत 1,932 आवासों में से 1,603 लाभार्थियों के खातों में प्रथम किस्त की धनराशि 1,00,000 प्रति लाभार्थी की दर से हस्तांतरित की जा चुकी है तथा लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत 7,911 आवासों में से 7,665 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जनपद प्रशासन द्वारा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि जनपद में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं, साथ ही ORS ग्लूकोज और जिंक टेबलेट का वितरण भी किया जा रहा है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हीट वेव प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु विशेष वार्ड भी आरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को हल्के एवं सूती कपड़े पहनाएं, पर्याप्त पानी पिलाएं और तेज धूप से बचाएं। जनपद वासियों से अपील की गई है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेते रहें तथा सिर ढककर ही घर के बाहर जाएं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं। भीषण गर्मी और बदलते मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को राहत देने और समय रहते अलर्ट करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जनपद में मौसम संबंधी रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराने के लिए 6 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 6 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन स्टेशनों के जरिए तापमान, वर्षा और

0: मौसम में होने वाले बदलावों की लगातार निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग का कहना है कि अब लोग घर बैठे मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उसी अनुसार बाहर निकलने या जरूरी कार्यों की योजना बना सकेंगे। यह व्यवस्था खासतौर पर भीषण गर्मी, लू और मौसम बदलने जैसी स्थितियों में काफी मददगार साबित होगी। जनपद में नवीन मंडी और मंडी परिसर, करवी, मऊ, राजापुर व मानीपुर तहसील परिसर समेत विभिन्न स्थानों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। वहीं खो पुलिस लाइन, सीतापुर माफी, पीजी कॉलेज, पहाड़ी ब्लॉक और बड़गर थाना सहित अन्य स्थानों पर ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए गए हैं। इनसे मिलने वाला रियल टाइम डाटा राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। बुंदेलखंड में जल संकट और जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं पर उठते सवालों के बीच सरकार ने निगरानी व्यवस्था को तकनीक से मजबूत कर दिया है। अब गांव में रोज कितना पानी सप्लाई हुआ, कितनी जरूरत थी और वास्तविक आपूर्ति कितनी हुई, इसकी जानकारी आम जन जन प्रतिनिधि और अधिकारी भी ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए जल जीवन मिशन का ऑटोमेशन पोर्टल शुरू किया गया है। जनपद की चांदी, बांगर, चिलौटा, मुस्तकिल और रईपुरा ग्राम समूह पेयजल योजनाओं को आधुनिक ऑटोमेशन प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इन योजनाओं के ओवरहेड टैंक, पंपिंग स्टेशन, अन्य महत्वपूर्ण उपकरण अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग से संचालित हो रहे हैं। इससे जलापूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने के साथ जवाबदेही भी तय होगी। अब किसी गांव में प्रतिदिन कितनी मात्रा में पानी पहुंचा, वहां अनुमानित जल मांग कितनी थी और उसके मुकाबले कितनी आपूर्ति दी गई, यह सब पोर्टल पर देखा जा सकेगा। इसके अलावा ओवरहेड टैंक में पानी का स्तर, पंप संचालन की स्थिति और उपकरणों की कार्यशीलता जैसी तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण आशीष कुमार भारती ने बताया कि ओवर की ऑटोमेशन व्यवस्था लागू होने से योजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी हुई है। किसी भी गांव में जलापूर्ति कम होने, तकनीकी खराबी आने या संचालन में बाधा की स्थिति में तत्काल जानकारी मिल जाएगी। इससे संबंधित एजेंसियां तेजी से सुधारात्मक कार्रवाई कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय से पानी सप्लाई को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। कई गांवों में लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि पानी कम क्यों पहुंचा। अब पोर्टल के जरिए पूरी व्यवस्था सार्वजनिक होने पर ग्रामीण खुद भी निगरानी कर सकेंगे। जल जीवन मिशन का डाटा देखने के लिए jjm.up.gov.in पोर्टल खोलना होगा। इसके बाद ऑटोमेशन डिटेल फेज 1 विकल्प चुनें, फिर डिस्ट्रिक्ट स्कीम नेम में योजना का चयन करें। इसके बाद OSD और व्यू डाटा पर क्लिक करते हुए गांववार जलापूर्ति, पानी की मांग, सप्लाई की मात्रा, ओवरहेड टैंक में जल स्तर और पंप संचालन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
1: अगर कोई विशेष कार्य हो तो ही आप इस समय बाहर निकले और जब भी खुले में निकले या कहीं भी जाए तो विशेषकर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना इसका ध्यान जरूर रखें।
2: चित्रकूट जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का।
3: मैनपुरी जिले में मिशन समाधान अभियान चल रहा है। यह अभियान प्रत्येक गुरुवार को जिले की सभी तहसीलों में चलाया जाता है। इस अभियान में राजस्व विभाग के शासनादेश के निर्देशों के तहत राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें गांवों में जाकर भूमि संबंधी विवादित मामलों का निपटारा करती हैं। विकास विभाग की टीम भी सहयोग के लिए गांव में तैनात रहती है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देशन में प्रत्येक गुरुवार को आयोजित होने वाले मिशन समाधान का असर अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। विगत 2 मिशन समाधान दिवसों में ग्राम सभा की सैकड़ों बीघा भूमि खाली कराई गई। मिशन समाधान में अधिकांश प्रकरण दोनों पक्षों की मौजूदगी में दोनों की सहमति के आधार पर निस्तारित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि मिशन समाधान का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में निस्तारण कराना है। मिशन समाधान में जो भी प्रकरण निस्तारित किए जाएं, उन प्रकरणों में दोनों पक्षों की उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित कराई जाए और कृत कार्रवाई पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराए जाएं। किसी प्रकार का पक्का निर्माण न हटाया जाए, उसे नियमानुसार ही हटाया जाए। स्पॉट मेमो पर दोनों पक्षों की नाप पर सहमति के हस्ताक्षर अवश्य कराए जाएं। पट्टेदारों को कब्जा दिलाने पर दखलनामा अवश्य बनाया जाए। जन सुनवाई के प्रकरण जो मिशन समाधान में लगाए गए हैं, उनमें यदि कोई प्रकरण न्यायालय में संचालित हो तो उसी अनुसार निर्णय लिया जाए। जिन प्रकरणों में सुलह समझौता संभव न हो, उनमें विधिक प्रक्रिया के तहत अपेक्षित कार्रवाई की जाए। मैनपुरी जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन ने सघन निगरानी की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि आम जन को समयबद्ध पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी समय से हो, ताकि उन्हें एजेंसियों के गोदाम कार्यालय के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलम्ब स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपभोक्ता विशेष परिस्थिति में स्वयं गोदाम से गैस सिलेंडर प्राप्त करता है तो नियमानुसार होम डिलीवरी शुल्क वापस किया जाए। उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक शोषण न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। गैस कंपनियों के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है, जिस पर उन्होंने गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों, गैस एजेंसी स्वामियों को निर्देश दिए कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कॉमर्शियल गैस कनेक्शन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए तथा घरेलू

0: घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जाए। मैनपुरी में जनगणना का कार्य समयबद्ध हो इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। जनगणना के कार्य में लगे प्रगणकों के कार्य की समीक्षा हो रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित जनगणना 2027 का प्रथम चरण 22 मई 2026 से प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत मकानों का सूचीकरण कार्य कराया जा रहा है। मैनपुरी में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों का एडमिशन न करने पर बच्चे जिलाधिकारी की जन सुनवाई में एडमिशन को फरियाद लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी ने बच्चों का स्कूल में प्रवेश न किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद के प्रत्येक पात्र बच्चे को विद्यालय में प्रवेश मिले तथा उन्हें शासन द्वारा संचालित सभी शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों का नामांकन कराया। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह ने 23 मई को टनिष्ठ हॉस्टल में आयोजित जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी विवादों का मौके पर जाकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और ऐसे मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि मिन जुमला नंबर से जुड़े मामलों में सभी खातेदारों की मौजूदगी में पैमाइश कराकर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमि उपलब्ध कराई जाए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि जनपद में भूमि विवादों के निस्तारण में तेजी आई है और राजस्व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से बेहतर काम कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, साथ ही गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव और कूड़ा उठान जैसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आज की उर्दू बज्म लेकर मैं आपका मेजबान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, मौजूदा दौर में जहाँ साइंसी तरक्की, जदीद टेक्नोलॉजी और मसरूफ तर्ज जिंदगी ने इंसानी जिंदगी को यकसर बदल दिया है, वहीं वालिदैन की जिम्मेदारियां भी पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। सामीन, आज का बच्चा सिर्फ घर और स्कूल तक महदूद नहीं, बल्कि मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के वसी असरात के दरमियान परवान चढ़ रहा है। ऐसे हालात में वालिदैन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी औलाद की न सिर्फ बेहतरीन तालीम व तरबियत करें, बल्कि उनकी अखलाकी, दीनी और समाजी रहनुमाई का भी खास ख्याल रखें। दोस्तों, बिलाशुबा वालिदैन बच्चों की शख्सियत साजी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। मोहब्बत, शफकत, एतमाद और अच्छे अखलाक के जरिए वो बच्चों को एक जिम्मेदार शहरी बना सकते हैं। लिहाजा मौजूदा दौर में जहां नौजवान नस्ल मुख्तलिफ फिक्री और अखलाकी चैलेंजेस का सामना कर रही है, वहां वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक कायम करें, उनकी जहनी कैफियत को समझें और सही और गलत में फ़र्क समझाएं। इन्हीं सब बातों के पेश नज़र आज हमने एहतमाम किया है एक मुबाहसे का। मौजू है मौजूदा दौर में वालिदैन की जिम्मेदारियां। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज की उर्दू बज़्म में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब मौलाना मोहम्मद खालिद बांदवी नदवी साहब, अरबी लेक्चरार, दारुलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ। मोहतरमा डॉक्टर परवीन शुजात साहिबा, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, मुमताज़ पीजी कॉलेज, लखनऊ। और नाचीज सैयद मोहम्मद उमैर। हम सबसे पहले अपने दोनों खुसूसी मेहमान का आज के उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब बगैर किसी तमहीद व ताखीर मौलाना मोहम्मद खालिद साहब से सवाल।

0: उनकी काबिलियत के मुताबिक आगे बढ़ाने का मौका फराहम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मुख्तसरन डॉक्टर साहिबा से करेंगे कि आज के प्रोग्राम के पेश नज़र हमारे सामीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
1: मुख्तसरन तो बस यही कह सकते हैं कि वो तवाज़ुन रखें, जैसे अभी मौलाना साहब ने कहा कि तवाज़ुन रखना चाहिए अपने काम में और बच्चों को अपनी तवज्जो देने में, और वालदैन घर का माहौल सही रखें।
0: तो बहुत अच्छा आप कह रहे हैं कि वालदैन एक अच्छे माहौल के साथ में जिंदगी गुजारें ताकि बच्चों पर उसके अच्छे असरात पड़े, और खुसूसी तवज्जो दे ताकि घर का माहौल भी अच्छा रहे और बच्चे जो है एक अच्छे शहरी बनकर दुनिया के सामने आए। बहुत अच्छा आपने कहा और बहुत ही उम्दा पैगाम भी आपने दिया। सामीन, आज के मुबाइसे का लुब्बे लुबाब निचोड़ यही है कि बिलाशुबा मौजूदा दौर में वालिदैन की जिम्मेदारियां सिर्फ बच्चों की परवरिश तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि उनकी बेहतर तालीम, अखलाकी तरबियत, जहनी रहनुमाई और मुस्बत शख्सियत साजी भी वालिदैन की अहम जिम्मेदारी है। अगर वालिदैन मोहब्बत, तवज्जो और शूर के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें तो एक साले बाकिरदार और कामयाब नस्ल की तामीर मुमकिन है। और अब हम अपने दोनों खुसूसी मेहमान जनाब मौलाना मोहम्मद खालिद बांदवी नदवी साहब और मोहतरमा डॉक्टर परवीन शुजात साहिबा के बे इंतहा ममनून और मशकूर हैं कि आप हजरात ने हमारे सामईन के लिए बहुत ही उम्दा मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाज़त। आदाब।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
6: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
5: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
6: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
7: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाए और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, आइए सुनते हैं अमृता मालवी के स्वर में भजन।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोक भवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था और इस विस्तार के साथ ही राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित

0: उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रही। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार तथा तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। श्रोताओं, अभिभावक दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2012 में इस दिन की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य बच्चों के प्रति सभी माता पिता के समर्पण बलिदान को याद करना और उन्हें सम्मानित करना है। श्रोताओं, आज है अभिभावक दिवस, वह विशेष अवसर जो बच्चों के पालन पोषण, उनके भविष्य निर्माण और निस्वार्थ प्रेम के लिए माता पिता और अभिभावकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन माता पिता द्वारा अपने बच्चों के लिए किए गए अनगिनत संघर्षों की सराहना करने का एक माध्यम है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। माता पिता केवल जन्मदाता नहीं बल्कि जीवन के पहले शिक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि एक बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए परिवार, प्यार और सुरक्षित माहौल कितना आवश्यक है। हमारे जीवन में हमारे माता पिता का होना बहुत आवश्यक है। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। वह अपना सारा प्यार हम पर बिना किसी स्वार्थ के लुटाते हैं।

कौशलों से परिपूर्ण बनाते हैं, उनके विकास को सुनिश्चित करते हैं। श्रोताओं, माता पिता हमारे लिए क्या है ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है वो हमारे संसार हैं, हमें उनके रहते कभी भी किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी होती है। माता पिता हमारे लिए वो होते हैं जिन पर हम बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के भरोसा कर सकते हैं।

माता पिता बनना एक सर्वव्यापी अनुभव है, लेकिन यह आसान नहीं। माता पिता बच्चे के जीवन में प्रकाश स्तंभ होते हैं। वे बच्चों की नींव रखते हैं और उन्हें जीवन भर आवश्यक

वैश्विक माता दिवस पर बच्चे अपने माता पिता के प्रति उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। वास्तव में माता पिता के साथ हमारा रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण और सच्चा बंधन होता है और इस दिन हम उनके समर्पण का सम्मान करते हैं, उन्हें संजोते हैं। विश्वास और सम्मान पर आधारित स्वस्थ रिश्ता

बनाए रखने में सक्षम हैं। वे भाग्यशाली हैं, वे माता पिता जिन्होंने हमें इस दुनिया में इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। माता पिता अपने बच्चों के प्रति प्राथमिक जिम्मेदारी और उनके विकास में अपनी भूमिका के महत्व को समझते हैं। वास्तव में एक आशीर्वाद है हमारे माता पिता। श्रोताओं, माता पिता का प्यार एक ऐसा बैंक है जहां अपनी हर भावना और हर दुख जमा कर सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो बैलेंस ना होने पर भी आपके सपने पूरे करने की कोशिश करता है। ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया। प्रेम वह अटूट बंधन है जो बच्चे को उसके अभिभावकों को हमेशा जोड़े रखता है। एक अच्छे माता पिता की सबसे बड़ी विरासत अपने बच्चों को दिए गए अच्छे संस्कार और आत्मविश्वास होता है। जी हाँ श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ और इस गीत के साथ सुनते रहिए कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज, और सभी माता पिता को अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: श्रोताओं, गाने के बीच में आए व्यवधान के लिए हमें खेद है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, माफ कीजिएगा, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन

हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को

0: जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
0: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न था मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
1: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुंचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
0: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 880

0: क्यों देता है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
0: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
0: यह कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
1: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
1: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
1: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
1: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
1: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
2: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं, हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं, सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
1: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब?

0: वही
1: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
0: जी
1: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
0: जी
1: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी,
0: जी
1: शिक्षक भी विशेष थे, और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ।
0: जी
1: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की, और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े, और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दें। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि
0: जी
1: एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
0: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
1: बिल्कुल
0: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
1: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया है।
0: जी
1: ठीक है, इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
0: जी
1: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से
0: जी
1: जुड़ी हुई है, या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
0: जी
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है।
0: जी
1: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको
0: जी
1: अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स।
0: ओके
1: तो इसमें पांच उपसमूह आते हैं।
0: जी
1: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं
0: जी
1: और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं।
0: जी
1: दूसरा जो हमारा उपसमूह है, वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है, या
0: जी
1: ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है,
0: जी
1: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है।
0: जी
1: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है।
0: जी
1: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं, या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं।
0: जी
1: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा
0: जी
1: आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है,
0: जी
1: ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है।
0: जी
1: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं।
0: जी

0: इसमें एनईपी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
1: जी,
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी,
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं।
1: जी,
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की।
1: जी,
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है।
1: जी,
0: अच्छा अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
1: जी,
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी,
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
1: जी,
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत।
1: जी,
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में।
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं।
1: जी,
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है।
1: जी, ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIET NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
1: जी,
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सब

0: आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये
1: जी
0: प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें।
1: जी
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी।
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी जी
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी प्रोफेसर भारती अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं।
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी।
0: आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है गूगल पर जाइए लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा
1: जी।
0: और आप वहाँ से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
1: जी।
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से NCERT ऑफिशियल YouTube से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है।
0: बिल्कुल आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
1: जी
0: उनकी कहानियां उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
1: जी
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी
0: है तो सबसे बड़ी बात तो यही है और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
1: जी
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्र

0: शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात
1: जी
0: की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन
1: जी
0: से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी
0: की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक
1: जी
0: और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी
1: जी
0: है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी। मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके। यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा। जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं, तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे उमंग, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये प्रायोजित आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वेलोसिटी क्योर एंड केयर फार्मास्यूटिकल्स प्रयागराज।
1: वेलोसिटी क्योर एंड केयर फार्मास्यूटिकल्स एक्सपर्ट इन ऑन्कोलॉजी सपोर्टिव केयर। वेलोसिटी क्योर एंड केयर फार्मास्यूटिकल्स एक्सपर्ट इन ऑन्कोलॉजी सपोर्टिव केयर। वेलोसिटी क्योर एंड केयर फार्मास्यूटिकल्स एक्सपर्ट इन ऑन्कोलॉजी सपोर्टिव केयर। Velocity Cure and Care Pharmaceuticals Expert in Oncology Supportive Care Velocity Cure and Care Pharmaceuticals Expert in Oncology Supportive Care Velocity Cure and Care Pharmaceuticals Expert in Oncology Supportive Care Velocity Cure and Care Pharmaceuticals Expert in Oncology Supportive Care Velocity Cure and Care Pharmaceuticals Expert in Oncology Supportive Care Velocity Cure and Care Pharmaceuticals Expert in Oncology Supportive Care Velocity Cure and Care Pharmaceuticals Expert in Oncology Supportive Care Velocity Cure and Care Pharmaceuticals Expert in Oncology Supportive Care Velocity Cure and Care Pharmaceuticals Expert in Oncology Supportive Care
0: हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विशेष भेंट वार्ता। तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियां, भ्रांतियां और समाधान विषय पर सुप्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ सोनिया तिवारी से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। विशेष इसलिए क्योंकि साल दर साल पिछले कई सालों से हम लगातार 31 मई को ये कार्यक्रम करते हैं और कमोबेश पिछले कई सालों से हमारे साथ जो अतिथि होती हैं इस बार भी वही हैं। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, और चूंकि वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़ी चिकित्सक हैं प्रयागराज की कैंसर की। लेकिन हमें खुशी होगी कि इस 31 मई को ये जो हम तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, कोई एक रोज ऐसा आएगा जिस दिन हमको ये मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत तसल्ली होगी कि जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे उनमें कमी आएगी और एक दिन ये खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, आइए सुनते हैं कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो।
3: हाँ सर नमस्ते
2: जी, नाम बताएं
3: सर। मैं विशाल बोल रहा हूँ सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से।
2: हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सोनिया तिवारी हैं जो कि प्रयागराज की प्रख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। आप अपना सवाल डॉक्टर सोनिया तिवारी से पूछ सकते हैं।
4: बताइए
3: मैम। एक्चुअली हमारे दोस्तों ने हमको लत पकड़ा ही दी, फिर हमें लगता है कि इस तरीके से कैसे छुटकारा पाए।
4: कितना सिगरेट पीते हैं आप एक दिन में?
3: मैम एक दिन में 2 से 3 होता है बस।
4: लोगों को लगता है कि 1 या 2 सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता है, कि

0: वो तो ऐसे ही, तो धीरे धीरे ये एक या दो करके ही लोग एक एक डब्बा दो दो डब्बा पैकेट पीने लग जाते हैं। तो आगे चल के आपके साथ भी यही हो सकता है। तो अभी तो आप एक या दो पीते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत लग जाएगी कि कम से कम आप 10 पीने लग जाएंगे, 20 पीने लग जाएंगे। तो ये दोस्तों के साथ ही होता है। तो जो दोस्त आपके सबसे पहले तो स्मोकिंग करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। या जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं कि हाँ मुझे स्मोक कर लेना चाहिए, जैसे फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं या फिर कुछ सोच रहे हैं लोग, अपना काम कर रहे हैं, होता है ना कि ट्रिगर हो जाता है कि हाँ देखते हैं दूसरे को करते हुए स्मोक करते हुए, तो मैं भी कर
1: जी
0: लूं,
1: मैम,
0: है ना। तो जो फैक्टर ऐसे हैं आपके कि जो ट्रिगर करते हैं आपको, उससे अपने आप को बचा के रखें। दूसरा, इच्छा शक्ति मजबूत रखें, बिना उसके आप उसको नहीं छोड़ सकते कि मुझे स्मोक नहीं करना है तो बस नहीं करना है। जब आपको ऐसा करने का मन भी करे तो दूसरी चीजों में मन लगाए, जैसे आप स्मोकिंग की जगह कुछ फ्रूट्स खा लें, गहरी गहरी सांस लें, प्राणायाम करें, कुछ एक्सरसाइज करें, दौड़ें भागें, अच्छा म्यूजिक सुनें, योगा करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको इन सब को छोड़ने में मदद करेंगी। क्योंकि अभी आपको बहुत दिन नहीं हुए हैं तो आप इसको आराम से छोड़ सकते हैं। एक तो उससे इतनी सारी बीमारियां होंगी, मुंह के बीमारियां होंगी, कैंसर सबसे ज़्यादा आजकल है, 30% कैंसर टोबैको की वजह से होते हैं, जिसमें मुंह के कैंसर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें फेफड़े का कैंसर, स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर सबसे कॉमन है। तो वो एक दिन में नहीं होता है, जब स्मोकिंग कॉन्टिन्यूसली 8 साल 10 साल आप करेंगे तब ये बीमारी हो सकती है। तो इसको छुटकारा पाने का यही तरीका है। दूसरा, अगर फिर भी दिक्कत होती है तो जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पर आप जाइए, डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपको बताएंगे। तो कुछ जो है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज होती हैं, उससे आपको इसको छोड़ने में मदद मिल सकती है। ठीक
1: तो
0: है,
1: विशाल, सुना आपने डॉक्टर साहब ने क्या कहा?
0: टोबैको को ना कहना है और अपनी हेल्थ को हाँ कहना है। तो ये अवेयरनेस यंगस्टर ही दूसरों को बता सकते हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है।
1: और आपकी जिम्मेदारी केवल आपके प्रति नहीं है, पूरे समाज के प्रति है विशाल, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें फोन करने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए
0: जी सर,
1: आकाशवाणी के
0: थैंक यू।
1: साथ। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, जो हमने भूमिका बनाई उसमें हमने ये कहा कि बहुत खुशी होगी हमें कि हमको इस दिन विशेष के ऊपर ये कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम करने की जरूरत भी ना पड़े।
0: यस
1: इस बार का जो 31 मई का तंबाकू निषेध दिवस है, इसकी
0: यस
1: थीम ही ये है कि हम अपने से शुरू करें,
0: यस
1: अपने से शुरू करें, फिर परिवार तक जाएं, फिर समाज तक जाएं, क्योंकि ये जो धूम्रपान है उससे केवल हम ही प्रभावित नहीं होते, हमारा परिवार, हमारा समाज भी प्रभावित होता
0: यस
1: है।
0: यस
1: औपचारिक शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज की प्रख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया तिवारी हैं, जो कि कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैं हूं अभिनव प्रज्ञ पांडे, और आज हम बात करेंगे कैंसर के ऊपर और तंबाकू निषेध के ऊपर, जो कि तंबाकू द्वारा दिया गया घृणितम उपहार है उनके लिए जिनको इसकी लत है। लत और आदत में एक छोटा सा फर्क ये होता है कि आदतें अच्छी भी हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं, लेकिन लतें सिर्फ खराब ही होती हैं। हम ये अपील करेंगे अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से और आगे जो हम आपको बताएंगे कि ये कितना भयावह हो सकता है। डॉक्टर सोनिया तिवारी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
0: थैंक यू।
1: आपको क्या लगता है, केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है कि इतनी जागरूकता के बाद भी, सबको पता है तंबाकू से
0: जी
1: कैंसर होता है,
0: जी
1: सबको पता है तंबाकू के कितने नुकसान होते हैं, सबको पता है कि तंबाकू एक दिन उनको मौत तक ले जा सकती है, फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं, इसके
0: तो
1: क्या
0: क्या
1: कारण
0: करें।
1: है? अब इस पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है।
0: जी,
1: हमें संक्षेप में बताएं हम क्या कर सकते हैं।
0: तंबाकू दिवस जैसे कि बताया कि 31 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इस बार की जो थीम है, पहले उसको समझ लेते हैं कि इस बार की थीम जो है अनमास्किंग द
1: डॉक्टर साहब, एक
0: अपील।
1: एक एक कॉलर हमारे साथ
0: यस
1: लाइन पर
0: यस
1: है।
0: यस
1: हेलो
0: हेलो,
1: जी, अपना नाम बताएं।
0: डॉक्टर कहकशा इस बार।
1: जी डॉक्टर कहकशा, बताएं।
0: मैं डॉक्टर साहब से ये बात करना चाह रही थी कि जो तंबाकू के सेवन से जो नुकसानात हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो बताएं।
1: तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में सबसे तो पहले हानिकारक है, और शरीर के हर अंग को इससे नुकसान पहुंचता है, हर सेल पे असर करता है। क्योंकि जब हम तंबाकू का सेवन चाहे स्मोकिंग की फॉर्म में करें या नॉन स्मोकिंग फॉर्म, जो कि गुटखा और पान के साथ में जो लोग खाते हैं, तो जो उसका जूस है और जो उसके कण हैं वो हर सेलुलर लेवल पे ब्लड के साथ पहुंच जाते हैं, तो हर सेल को इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले मुंह पे असर करता है, वो मुंह में ही दांतों की बीमारियां होती हैं, मुंह के कैंसर हो सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, छाले हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा एक अजीब सी स्मेल आती है जो लोग टोबैको यूज़ करते हैं, लोग उनके पास ज़्यादातर नहीं बैठना चाहते हैं, दूर ही रहना चाहते हैं।

0: मैंने देखा है वो लोग खाते हैं, उनका मुंह पूरा खुलता नहीं है।
1: यस, यही मैं बताने
0: और
1: जा रही हूँ कि जो
0: जी
1: लोग तंबाकू का सेवन लंबे समय से लगातार करते हैं, तो जो मुंह की जो अंदर की म्यूकोसा है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, तो उसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसमें मुंह खुलना कम हो जाता है, तो आगे चल के उसमें कैंसर पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मुंह में सफेद रंग के धब्बे भी हो जाते हैं या लाल रंग के धब्बे, जिसे ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, जो कि प्री कैंसरस अवस्था होती है, तो उसमें भी आगे चल के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा गले के कैंसर, खाने की नली के कैंसर जिसको कि ईसोफेगस कहते हैं, और पेट के कैंसर, वो भी तंबाकू की वजह से। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन लंग कैंसर है, फेफड़े का कैंसर, तो उसमें भी जो लोग बहुत शुरुआत से, जैसे 15 साल की उम्र, 20 साल की उम्र से लगातार स्मोकिंग सालों साल करते हैं, तो धीरे धीरे उसमें कैंसर पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वैसे भी सांस की कई तरह की बीमारियां ऐसे लोगों को होती हैं, जिसमें कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लगातार खांसी आती है, चलने फिरने में कमी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है ब्लड में, जो लोग तंबाकू लेते हैं, वो कम हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। और निकोटीन के अलावा ऐसे कम से कम 7,000 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं तंबाकू में, जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो है, जो महिलाओं में है उसमें जो है, और मेल्स में भी प्रजनन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को वो नुकसान पहुंचाता है, जिससे आगे चल के सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी हो जाती हैं।
2: थैंक यू डॉक्टर कशा,
1: थैंक यू
2: आकाशवाणी
1: सो
2: से
1: मच।
2: जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसी
1: हाँ
2: क्या
1: जी
2: कमी रह गई हम सबके प्रयासों में, कि उस तरह की एक जो बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत थी, वो
1: यस
2: हम पैदा
1: तो
2: नहीं कर पाए।
1: इतनी सारी अवेयरनेस के बावजूद जानते भी हैं कि तंबाकू नुकसान ही करता है, किसी भी तरीके से वो शरीर को फायदा
2: बिल्कुल
1: नहीं पहुंचाता। जैसे कि मैं कह रही थी कि इस बार की जो थीम है वो इसी पे है कि अनमास्किंग द अपील एंड काउंटरिंग द निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। इसका मतलब ये है कि अपील का पर्दाफाश और निकोटीन और टोबैको की लत का मुकाबला डटकर करना।
2: डॉक्टर साहब, पिछले कई सालों में आपने हर बार लक्षणों
1: जी
2: के बारे में बहुत बता दिया है, सबको पता
1: जी
2: है कि क्या
1: जी
2: लक्षण हो सकते
1: जी
2: हैं, कारण के बारे में सबको पता है कि
1: जी
2: किस कारण से कैंसर जैसी बीमारी होती है, तंबाकू सबसे
1: हाँ
2: बड़ा
1: जी
2: कारण है।
1: हाँ
2: आज हम अपने कार्यक्रम में जो केंद्रीय भाव हम रखेंगे, वो हम रखेंगे उपचार और भ्रांतियां और
1: जी
2: समाधान।
1: जी
2: ये एक भ्रांति है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब तक वो तंबाकू का प्रयोग नहीं करते हैं या सिगरेट नहीं पीते हैं, तो उनको
1: हाँ
2: मोशन खुलकर नहीं होता,
1: यस
2: तो ये भ्रांति है या
1: ये भी
2: कुछ?
1: एक आदत है और भ्रांति है, क्योंकि लोगों को इस चीज की, इंसान को आदत पड़ जाती है कि जब तक मैं स्मोक नहीं करूंगा, तंबाकू नहीं खाऊंगा, तब तक फ्रेश नहीं हो सकता मैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये एक आदत है क्योंकि इस तरह का उनका साइकिल बन चुका है। लेकिन जब वो इस बात को समझ लेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो शुरू में कुछ दिन इसको अपनाने में दिक्कत होती है, लेकिन उसकी जगह आप जो है सुबह को उठ के जैसे पानी पीजिए, मोशन की जो दिक्कत होती है, जैसे जैसे इस लत को छोड़ेंगे, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये आदत की वजह से और कुछ भी नहीं है।
2: डॉक्टर साहब, हम आपको रोकना चाहेंगे, फिर से एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो,
3: हेलो,
2: अपना नाम बताएं।
3: कुलदीप पाल नाम है जी,
2: कुलदीप जी कहाँ से बोल रहे हैं?
3: कौशाम्बी से। तो
2: हमारे सामने डॉक्टर सोनिया तिवारी बैठी हुई हैं, आप उनसे अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं।
1: हाँ बताइए।
3: पिता जी तम्बाकू का सेवन करते हैं तो
1: हाँ
3: छोड़ना चाह रहे हैं, तो लेकिन वो जैसे छोड़ते हैं तो उसके बाद दांत दर्द करने लगता है।
1: उनकी क्या उम्र है अभी?
3: उम्र तो अभी 50+ है।
1: तंबाकू किस रूप में लेते हैं वो, जैसे पान के साथ खाते हैं या सुपारी के साथ, कैसे खाते हैं?
3: केवल तंबाकू खाते हैं चूने के साथ रगड़ के।
1: हाँ, तो वो उनको आदत पड़ चुकी है, अब ऐसे एक दिन में तो ये लत नहीं छूटेगी, क्योंकि अगर तंबाकू लगातार इस तरीके से खाते रहेंगे तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले तो कैंसर की ही बात आ जाती है, तंबाकू की वजह से मुंह के कैंसर सबसे ज्यादा होते हैं। आप ही उनको थोड़ा एनकरेज करिए, तो इसके बारे में थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, तो उसके लिए आप उनको थोड़ा सा समझाइए कि तंबाकू से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, उसको धीरे धीरे छोड़ दीजिए, अगर एक साथ नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे तो इसमें छोड़ने में कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है, संकल्प लेना है बस मुझे छोड़ना है, तो अब छोड़ना है। उसकी जगह उनको बताइए कि वो दूसरी चीजें खाएं, जैसे कि तंबाकू की जगह इलायची खाएं, लौंग खाएं, थोड़ा बिजी रहें अपने काम में, तो इस तरीके से वो तंबाकू की लत को छोड़ सकते हैं। और दांत में दर्द जो है वो तंबाकू ना खाने की वजह से नहीं है, दांत खराब हो जाते हैं तंबाकू जो लोग खाते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, कैविटी बन जाती है, तो वो उनको ऐसा लगता है, तंबाकू छोड़ेंगे तो दांत इवन ठीक हो जाएंगे।

0: उनके, और दांत के डॉक्टर को दिखाइए एक बार, अगर दांत खराब है तो उसको निकलवाने की जरूरत भी पड़ सकती है।
1: जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद हमें फोन करने के लिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उपचारों से बहुत लोग डरते हैं, अव्वल तो हमको वो बीमारी हो ही ना, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश वो इतना अधिक प्रयोग कर ले कि वो कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ जाए, तो उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या ये बात सच है कि आम जनमानस में डर है कि एक बार डॉक्टर का कोई छुरा या कुछ उसमें लग गया, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं आम भाषा में, तो वो और तेजी से फैलता है, क्या ऐसा है?
0: कैंसर का तो स्वभाव ही है कि अगर किसी को ये बीमारी है तो कैंसर बिना हाथ लगाए भी फैलेगा। अगर किसी को मुंह में घाव है और वो भर नहीं रहा है, तो जब तक हम उसकी जांच नहीं करेंगे, जिसको कि बायोप्सी कहते हैं, तब तक हमें ये नहीं पता चल सकता कि वो कैंसर है कि नहीं। और अगर हमें लग भी जाए तो उसका इलाज ठीक नहीं हो सकता। तो सही इलाज करने के लिए पहले बीमारी को जानना पड़ेगा। कैंसर में ये बहुत जरूरी है। कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। 90% से ज्यादा संभावना होती है कि कैंसर ठीक हो जाता है अगर अर्ली स्टेज में, मतलब स्टेज 1 और 2। लेकिन अगर स्टेज बढ़ जाती है तो संभावना कम हो जाती है, 50-60% हो जाती है। अगर और बढ़ जाए, दूसरे ऑर्गन में फैल जाए, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं, तो फिर ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। हाँ, लाइफ उसकी बढ़ सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम अच्छा कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा, लेकिन पूरी तरीके से ठीक होना मुश्किल हो जाता है।
2: बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम गुटखा खाते तो है, लेकिन हम दिन में 2 से 3 बार ब्रश कर लेते हैं, दांत साफ कर लेते हैं, तो उसका उतना खतरा उनको नहीं महसूस होता।
0: नहीं, ऐसा नहीं है। दांत तो आपने साफ कर लिए, लेकिन जो उसके केमिकल्स अंदर चले गए हैं, तंबाकू जो निकोटीन अंदर जा रहा है और उसके साथ में जो और भी हानिकारक प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके शरीर में लगातार जा रहे हैं, वो ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में फैल रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही शरीर पर।
2: ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही धूम्रपान अधिक करते हैं या तंबाकू का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी महिलाएं भी करती हैं। अगर वो ऐसा करती हैं और अगर संभवतः वो गर्भावस्था में है या कुछ उस प्रकार के दौर से गुजर रही हैं, तो क्या ये उनके और उनके होने वाले बच्चे की सेहत पर भी दुष्प्रभाव डाल सकता है?
0: जी, अगर वो स्मोक कर रही है तो स्पेशली यंगस्टर को ये ध्यान देने की जरूरत है, जो यंग फीमेल्स है, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर वो धूम्रपान कर रही है तो उनकी सेहत के साथ बच्चे की सेहत पे भी बुरा असर पड़ता है, जिससे कि उसमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। मतलब जिस वक्त वो प्रेगनेंट स्टेट में है, उसी टाइम पे जब बच्चों के ऑर्गन बनते हैं, तो कोई भी डिफेक्ट हो सकता है, उसके ब्रेन पे प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है, या प्री टर्म यानी कि समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, जिसकी वजह से उसको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं उस बच्चे को, तो महिलाओं में और ज्यादा हानिकारक है। इसके अलावा जो महिलाएं नहीं भी करती हैं, उनके हस्बैंड घर में अगर वो स्मोक कर रहे हैं तो वो धुआं वो महिला भी ले रही है, तो वो भी उसको उतना ही हानिकारक है जितना कि वो पुरुष स्वयं स्मोकिंग कर

0: जो चीज़ें हैं ये बहुत ही कम पैसे पे उपलब्ध हैं, तो बहुत
1: हम्म,
0: आसानी से एक आम आदमी उसको खरीद लेता है 1 रुपए में 2 रुपए में। लेकिन जब वो लगातार इसको खाता है तो जिस तरह की बीमारियां हैं उसमें जान को इतना खतरा होता है कि जान ही बचना मुश्किल हो जाती है। एक तो ये सारी बीमारियां लोग ध्यान नहीं देते हैं तो ज्यादातर लेट स्टेज में ही हमारे पास आते हैं। मुंह के कैंसर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। फिर इलाज के लिए उसमें पैसा लगता है, तो जो लोग गरीब हैं तुरंत इलाज उनके लिए संभव नहीं हो पाता है।
1: सरकार की
0: वैसे
1: तरफ
0: तो
1: से
0: सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें एक आयुष्मान योजना है प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो चलाई गई है, उसके अलावा सीएम फंड पीएम फंड से भी पैसा आता है। बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो कैंसर रोगियों को सपोर्ट करते हैं। तो जरूरत है कि इलाज कराने की और सही समय पर हॉस्पिटल में आने की और डॉक्टर की सलाह को मान के इलाज करें।
1: डॉक्टर साहब, फिर से एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो
2: हेलो,
1: जी, अपना नाम बताएं।
2: मैं रामचंद्र माखीजा काफिर भाई बोल रहा हूँ सर, बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से। मेरा ये प्रश्न था डॉक्टर सोनिया तिवारी जी से, तंबाकू खाने से पाचन तंत्र प्रक्रिया में कोई प्रभाव होता है और मस्तिष्क में क्या असर होता है तंबाकू खाने से?
0: तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में किया जाए, जैसे खाने
2: जी
0: के रूप में जो लोग खैनी गुटखा जिसमें भी तंबाकू है, या फिर धूम्रपान यानी कि सिगरेट बीड़ी के रूप में, किसी भी रूप में किया जाए, वो शरीर पे हानिकारक ही असर डालता है। और शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो उससे प्रभावित ना हो, हर अंग प्रभावित होता है। तो पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, जो लोग पान तंबाकू खाते हैं उनकी भूख कम हो जाती है तो उन्हें ऐसा फील होता है कि मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ। वो पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे लेकिन तंबाकू खा के पूरा दिन रह लेते हैं। जैसे गैस्ट्राइटिस हो गई जो कि गैस की बीमारी होती है, या फिर जो पित्ताशय पे असर पड़ता है, तो जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं तो गैस्ट्राइटिस ज्यादा होती है ऐसे लोगों को। और तंबाकू की वजह से मस्तिष्क पे भी असर पड़ता है, तो कई बार लोग तंबाकू का उपयोग इसलिए करते हैं कि जो हमारी चिंता है तनावग्रस्त है तो वो जो तंबाकू की वजह से जो उसमें जो निकोटीन होता है उससे थोड़ी देर के लिए हमें ये एहसास होता है या उसको व्यक्ति को अच्छा लगता है कि जिससे कि मेरी जो स्ट्रेस है वो कम हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए होता है। तो मस्तिष्क पे भी प्रभाव डालता है, मस्तिष्क पे प्रभाव इस तरीके से भी पड़ता है। और जो खून की नलियां होती हैं जैसे हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होती है या फिर मस्तिष्क की जो ब्लड सप्लाई होती है वो संकरी हो जाती है, तो कई बार आपने देखा होगा कि स्ट्रोक हो गया, सेरिब्रोवास्कुलर अटैक कहते हैं उसको, जिसमें आधा अंग पैरालाइज हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियां आगे चल के हो सकती हैं, डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट की बीमारियां और दिमागी बीमारियां, कई तरह की बीमारियां धूम्रपान से और तंबाकू से होती हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि उससे दूर रहें और जो दूसरे तरीके हैं स्वस्थ रहने के उसको अपनाएं। और उसके अलावा कैंसर की बीमारी का तो खतरा होता ही है, पाचन तंत्र पे जब असर पड़ेगा और धूम्रपान से और तंबाकू से, तो पेट के कैंसर, गले के कैंसर और खाने की नली के कैंसर ज्यादातर तंबाकू की वजह से और धूम्रपान की वजह से होते हैं।
1: रामचंद्र जी, और भी कुछ पूछना है आपको?
2: हाँ, थोड़ा वही पूछना था सीओपीडी के बारे में, क्या है ये?
0: सीओपीडी जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस उसको बोलते हैं। जो लोग लंबे समय से धूम्रपान करते हैं तो उसको सांस की बीमारी हो जाती है। बहुत लंबे समय से जो तंबाकू का उपयोग करते हैं, स्पेशली जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनको लगातार खांसी आती रहती है। और जब बहुत दिनों से वो करते रहते हैं, जिनको कई साल हो जाते हैं, तो फेफड़े की जो फैलने की क्षमता है वो कम हो जाती है, उनको तरह तरह के इन्फेक्शन लगते हैं। तो ये जो सांस की बीमारी उसी को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं और सीओपीडी कहते हैं। तो उसमें व्यक्ति खांसता रहता है, सांस में दिक्कत होती है, थोड़ी दूर चलने पे सांस फूलने लगता है, और इसमें ज्यादा दवाइयां भी फिर काम नहीं करती हैं, क्योंकि फेफड़े की जो फैलने की शक्ति है, जो अंदर ऑक्सीजन जाती है, वो बहुत कम हो जाती है। तो यही सीओपीडी है।
2: जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी हमें कॉल करने के लिए, आप आगे भी हमसे जुड़े रहिएगा। डॉक्टर साहब, युवाओं के मामले में ये बहुत ज्यादा है, ये जो लत है सिगरेट की हो चाहे टोबैको की हो, कई बार उनको ये कहते सुना गया है कि उनका जो फला पसंदीदा एक्टर है या कोई ऐसा रोल मॉडल मानते हैं वो प्रयोग करता है, और इस बाजारवाद के दौर में जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, जो टैक्टिक्स है, वो भी बदली है। अब अलग रूप में उसको दिखाया जाता है, वो इलायची है।
0: हाँ जी,
1: आप इस पर क्या कहेंगे?
0: यही टोबैको इंडस्ट्रीज की डिफरेंट टैक्टिक्स हैं लुभाने के लिए लोगों को। और उसमें भी जब ये सारी चीजों को एडवर्टाइज जो सेलिब्रिटीज हैं हमारे वो करते हैं, तो उसका यंगस्टर पे और ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि जो हीरो है वो स्मोकिंग कर रहा है और बड़ा कूल अपने आप को दिखाता है।

0: इसका यंगस्टर पे प्रभाव पड़ता है कि जैसे वो स्मार्ट दिख रहे हैं, वो इतना फैशन के चलते ये कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें, और लेकिन वो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में फर्क होता है। तो इस चीज को समझना होगा कि वो वहां पे एक्टिंग कर रहे हैं, और अगर आप इसको असलियत में करेंगे तो वो कितना नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज हैं जो पान मसाले की एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसको कि इसमें बहुत कम मात्रा में होता है ये बताया जाता है टोबैको इंडस्ट्री द्वारा, तो ऐसा नहीं है। तंबाकू की मात्रा कितनी भी कम हो वो भी शरीर के लिए हानिकारक है। तो इस चीज को जो पब्लिक है उसको समझना होगा, उसके बारे में अवेयर होना होगा। दूसरी जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं जिसमें ये सब चीजें एडवर्टाइजिंग की जाती हैं, उसको वहां ना लगाएं, ये सब रुकनी चाहिए। आसपास जो स्कूल कॉलेज हैं उसके आसपास के एरिया में कम से कम 1 किलोमीटर तक ये सब चीजें उपलब्ध नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स को, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा कॉलेज स्कूल में जाके टीचर्स को इसके बारे में अवेयर करें, जिससे वो स्कूल्स में बच्चों को लगातार ये सारी चीजों के बारे में जानकारी दें। इसके अलावा जो घर में पेरेंट्स इन चीजों को यूज करते हैं, जैसे जिनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनको भी बच्चे देखते हैं, तो वो भी इस चीज को समझें जिससे बच्चे इस लत में ना पड़ पाए। आपने देखा होगा शादी में और डिफरेंट पार्टीज में आजकल एल्कोहल का, स्मोकिंग का, टोबैको का चलन होता है, जिसको कि एक सोशल कस्टम माना जाता है कि उसको उसमें रखना ही है। तो ये सारी चीजें भी जो सोसाइटी में है एक कस्टम के तौर पे, वो भी बंद होना चाहिए, तो जिससे लोगों को इस चीज से दूर रहने में मदद मिल सके।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, पहले तो अव्वल हम कोशिश करें कि हम उसका प्रयोग ही ना करें
0: जी।
1: अगर प्रयोग कर रहे हैं तो कैसे भी करके इच्छा शक्ति से उसको खत्म करें धीरे धीरे करके। अगर खत्म नहीं कर पा रहे हैं, दुर्भाग्यवश हम चपेट में आ गए, उसके बाद का जो जीवन होता है वो व्यक्ति तो खुद अपनी बीमारी से परेशान रहता ही रहता है। आपने इतने सारे केसेस में देखा होगा कि आदमी बीमारी से कम परेशान होता है उसके आसपास के दोस्तों का, परिवार वालों का जो रवैया होता है। अगर मुंह का कैंसर हो गया तो अजीब सा डरावना सा मुंह हो जाता है, उससे आदमी कहीं अधिक दुखी, मतलब बहुत पेनफुल महसूस करता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी, एक रवैया क्या होना चाहिए अगर उसको ठीक करना है तो?
0: अगर किसी को ये बीमारी हो गई है दुर्भाग्यवश, तो सबसे पहले परिवार के सदस्यों का कोऑपरेटिव होना बहुत जरूरी है कि वो उसको हॉस्पिटल लेके जाएं और उसका सही इलाज कराएं। इसके अलावा जो आसपास के लोग हैं समाज में, उनकी भी ये जिम्मेदारी पड़ती है कि उस फैमिली को सपोर्ट करें। कि कैंसर के रोगी को वैसे ही काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है, साइकोलॉजिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं उसके साथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, आर्थिक रूप से भी लोग टूट जाते हैं और मानसिक रूप से भी। तो उसको सपोर्ट करें कि नहीं, आप ठीक हो जाएंगे अगर आप इलाज करेंगे, कुछ भी आप ना कर सकते हो तो कम से कम उसको हॉस्पिटल लेके जाइए, उसकी बात को, उसकी जो तकलीफ है उसको एक मॉरल सपोर्ट दें कि नहीं आप धीरे धीरे इलाज करके ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से समाज की भी ये जिम्मेदारी पड़ती है, और दूसरे लोगों को भी अवेयर करें कि जिस तरीके से इसको बीमारी इस वजह से हो गई है, नशे की लत की वजह से हो गई है या तंबाकू से हो गई है, तो दूसरे लोग कम से कम उसको ना प्रयोग में करें। इवन अगर व्यक्ति कैंसर से जब ठीक हो जाता है तो उसको भी समाज में आके दूसरों के लिए एक प्रेरणा के रूप में वो सामने आए कि जिस तरीके से इस खतरनाक बीमारी से वो ठीक हो गया इलाज के द्वारा, और वो भी एक संदेश दे सकता है कि आप इन सारी चीजों से दूर रहें, तंबाकू की लत से दूर रहें, जैसे उसने इतनी तकलीफों का सामना किया, दूसरों को ना करना पड़े।
1: डॉक्टर साहब, निकट भविष्य में कैंसर के टीके या वैक्सीनेशन का कुछ उम्मीद है, कुछ चांसेस है इस पर कुछ काम?
0: अभी तक तो ऐसा नहीं है कि सारे कैंसर के लिए कोई वैक्सीन आ गई है, ऐसा नहीं है। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कैंसर से बचने का, कि जानकारी, अवेयरनेस और अपने शरीर का ध्यान रखना, समय समय पे अपनी जांच कराना, और अगर शरीर में कोई भी बदलाव है उसको तुरंत जाके अगर आप नोटिस करते हैं कोई आपके शरीर में कोई बदलाव है, कोई भी एबनॉर्मल लक्षण है, तो एक बार जाके डॉक्टर को दिखाएं, नशे की आदतों से दूर रहें, तंबाकू से, अल्कोहल से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, खान पान का ध्यान रखें, खान पान से मतलब है फल सब्जी अपने खाने में शामिल करें, पानी ज़्यादा पिए, स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, और जो है खुश रहें। तो ये ही है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें।
1: बिल्कुल, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसके साथ साथ दूसरों का, अपने परिवार का, अपने समाज का भी ध्यान रखें, क्योंकि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। सबसे अधिक युवा भारत में रहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि भारत जैसे देश को युवा दिखना भी चाहिए,
0: कम बीमारियां हो। इवन युवाओं का ही ये फर्ज बनता है, जिन लोगों का अब उम्र

0: ज़्यादा है, या जो लोग इसकी ऑलरेडी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं उनको अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दूसरों को संदेश दें
1: बिल्कुल
0: यंगस्टर कि वो इन सारी चीज़ों से दूर
1: दूर
0: रहें,
1: रहें।
0: क्योंकि उन्हें ही एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आगे आना है और आगे चल के उन्हें ही इस देश को, सोसाइटी को संभालना है।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, ये थी डॉक्टर सोनिया तिवारी, जो कि प्रयागराज की प्रख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। और सुना आपने कि किस तरह से इन्होंने तंबाकू की भयावहता के बारे में बताया, उससे होने वाले रोगों की भयावहता के बारे में बताया। तो कोशिश हम ये करें कि अव्वल तो हम लती बने ही ना, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कोशिश ये करें कि हमको लत ही ना हो। मान लीजिए कहीं से थोड़ी बहुत हो जाती है, तो अपने अंदर इतना आत्मानुशासन, इतनी इच्छा शक्ति पैदा करें कि नहीं, कोई भी लत हमसे बड़ी नहीं हो सकती। जो हम चाहेंगे वो होगा, कोई लत हमको नहीं चला सकती। और जैसा कि कहा भी जाता है कि तंबाकू की जो खुद की फसल है, वो जहां पर बोई जाती है, वो उस मिट्टी को भी एक तरह से बंजर बना जाती है। ना सिर्फ मिट्टी को बंजर बनाती है श्रोताओं, वो एक पूरी की पूरी हवा को बंजर बनाती है,
0: हाँ
1: एक
0: जी,
1: पूरी नस्ल को बंजर बनाती है, और एक पूरे समाज को बंजर बना देती है।
0: हाँ
1: कोशिश कीजिए कि तंबाकू से दूर रहिए, खुद तो दूर
0: बिल्कुल, ये
1: रहिए ही।
0: प्रण लीजिए
1: बिल्कुल
0: कि हम तंबाकू का प्रयोग नहीं करेंगे, और जो ये तंबाकू की इंडस्ट्री का भ्रम जाल है समाज में, उसमें फंसने से बचें। और अपने युवाओं को भी, यंगस्टर को ये बताएं कि जो ये इतना सुंदर सुंदर आकर्षक लगता है, जो इनकी लुभावनी टेक्निक है, टेक्टिक्स हैं, उसमें ना फंसे हमारा युवा वर्ग,
1: बिल्कुल।
0: जिससे कि इस आदत में ना पड़ के अपने जीवन को खराब ना करें।
1: अपना दिमाग लगाएं, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें कि कौन सी चीज़ आपके फायदे के लिए है,
0: जी
1: कौन सी चीज़ आपके और आपके समाज के नुकसान के लिए है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे ये आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर सोनिया तिवारी को कि वो इस अवसर पर हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं के फोन कॉल्स और हमारे सवालों का जवाब दिया। अगली बार फिर किसी विशेष हस्ती के साथ, आपके साथ, आपकी सेवा में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञ पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वेलोसिटी क्योर एंड केयर फार्मास्यूटिकल्स प्रयागराज। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में अभी आप विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे, तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियां, भ्रांतियां और समाधान विषय पर सुप्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ सोनिया तिवारी से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। फिल्म संगीत। श्रोताओं, कल यानी 31 मई 2026 को भारत की सम्मानित पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रहीं। आकाशवाणी प्रयागराज की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

श्रोताओं, गंभीरता और चंचलता दोनों ही भावों को अपनी आवाज से बखूबी पिरोने वाली सुमन जी ने फिल्म शगुन के लिए खयाम साहब के संगीत निर्देशन में गाया ये गीत आज भी धड़कनों को एक अनूठा सुकून देता है। आइए सुनते हैं।

सुमन कल्याणपुर के पार्श्व गायन की शुरुआत वर्ष 1954 में फिल्म मंगू से हुई। 1960 और 1970 के दशक में वो हिंदी फिल्म जगत का एक प्रमुख चेहरा बनी। उनकी आवाज में इतनी मधुरता और गहराई थी कि लोग उनकी तुलना अक्सर स्वर कोकिला लता मंगेशकर से करते हैं।

सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को अविभाजित भारत के ढाका यानी वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। उनका असली नाम सुमन हेमाडी था। उन्होंने मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उनका झुकाव संगीत की ओर अधिक था।

सुमन कल्याणपुर ने हिंदी में गीतों में तो गाए गाए, साथ में मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ और उड़िया जैसी भाषाओं में भी गीत गाए। हिंदी के साथ साथ उन्होंने मराठी संगीत में भी भारी लोकप्रियता हासिल की।

सुमन कल्याणपुर जी को भारतीय संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कई सम्मानों से नवाजा गया। सन 2023 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला लता मंगेशकर पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया।

श्रोताओं, इस सुरीली महफिल को विदा देने का वक्त हो चला है और विदाई के लिए इससे बेहतर नगमा भला और क्या हो सकता है, जहां खामोशी भी दास्तान सुनाने लगती है।

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: वाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमा और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमा भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमा के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरों और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया।

गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: In the other under-17 Asian Wrestling Championships, India's women grapplers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze in Da Nang, Vietnam. Leading the charge, Deeksha in the 43-kilogram category and Garima in 73-kilogram category clinched gold medals. And with that, we end this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 पर आज सुनिएगा पंडित अनंतलाल का शहनाई वादन और रात में 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित उमा शंकर का सितार वादन। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद होगा दिन में 12:30 पर। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी गृहलक्ष्मी कार्यक्रम और बच्चे नन्ही दुनिया कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:00। दिन में 2:30 पर पहले सुनिएगा रामकृपाल यादव और साथियों के गाय लोकगीत, उसके बाद आप विनीता तिवारी के गाय लोकगीत सुनेंगे और कार्यक्रम के अंत में राम सिंह पटेल और साथियों के गाय लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई रामकृपाल यादव और साथियों के गाय लोकगीत सुनेंगे और लोकभाषा कविता पाठ सुनाएंगे राधेश्याम पांडे। हिंदी कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। इस कार्यक्रम में आज आप डॉ. मिथिलेश तिवारी की वार्ता सुनेंगे महात्मा गांधी का प्रकृत दर्शन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर कलाकार होंगे भूपेंद्र कुमार। कानून और हम इस कार्यक्रम में रात में 8:30 पर अधिवक्ता रमेश कुमार से की गई बातचीत प्रसारित की जाएगी कैसे कराएं जमीन की रजिस्ट्री। रात में 9:30 पर गजलों पर आधारित प्रोग्राम सुनिएगा कहकशां। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

हमें ये नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। आइए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रण लें।

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित अनंतलाल का शहनाई वादन। पहले सुनिए राग शुद्ध सारंग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित अनंत लाल से राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। और अब पंडित अनंत लाल से ही शहनाई पर सुनिए राग मुल्तानी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित अनंत लाल का शहनाई वादन सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। अर्ज किया है कि ठहरे तालाब में कंकड़ फेंकना जरूरी था क्या? किसी की हदों को आजमाना जरूरी था क्या? शीशे सा दिल रखते हैं जो बिखर कर वो जुड़ते नहीं, शीशे सा दिल रखते हैं जो बिखर कर फिर वो जुड़ते नहीं, किसी के दिल से यूं खेलना जरूरी था क्या? तो देखिए, इसी से मिलता जुलता एक गाना आ गया जिसकी फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। पहले ये सुन लीजिए गाना कौन सा है। गाना है शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर की आवाज़ में। आशा फिल्म का ये गीत है और फरमाइश की है हमारे इन श्रोताओं ने। महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, दुर्गेश्री देवी जायसवाल। छत्तीसगढ़ से चुन्नू लाल श्रीनिवास, अनीता पुष्पा श्रीनिवास, अंजू योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मेंद्र वाधवानी और इनके परिवार के अन्य सदस्य।

कार्यक्रम का अगला गीत आ रहा है, फिल्म का नाम है आ गले लग जा और आवाज़ है किशोर कुमार की, और इस गीत की फरमाइश की है महाराष्ट्र से संतोष खड़ से, विनोद खड़ से, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिना नूर, गोविंदपुरा राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके परिवार के अन्य सदस्य, ततरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, ललिता देवी, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। हम आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद का ये गाना, लेकिन उससे पहले ये पंक्तियाँ। दूसरों की थाली में अगर आप झांकते रहेंगे तो आपके हिस्से की रोटी भी ठंडी हो जाएगी, इसलिए जो आपके पास है उसी में संतुष्ट होकर स्वाद लीजिए। जो मिला है उसे कम मत समझिए, क्योंकि कई लोग उसके लिए भी तरसते हैं। अपनी मेहनत की सूखी रोटी भी मीठी लगती है जब दिल में लालच नहीं मन में शांति होती है। तो चलिए चलते हैं आपकी पसंद के इस गीत की तरफ, फिल्म का नाम है आ गले लग जा, लीजिए सुनिए।

गुलजार साहब ने क्या खूब बात लिखी है कि काश तुम चाहो मुझे मेरी तरह, मुझे भी एहसास हो सब कुछ तेरी तरह, तुझे भी तकलीफ हो मेरी तरह, जब मैं नज़रअंदाज करूं तुझे तेरी तरह, तू भी तरसे और जागे मेरी तरह, और मैं सो जाऊं बेपरवाह तेरी तरह। भाई क्या बात लिखी है, और इसी बात पर आ गया है ये खूबसूरत सा गीत। फिल्म का नाम है अनामिका और आवाज़ है किशोर कुमार की, और इस गीत की फरमाइश की है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबेराय, दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

दोस्तों कहा गया है कि जो लोग दिल से बात ना करें उनसे कभी दिल की बात मत करिए। जिंदगी में डबल रोल करने वाले लोग एक दिन एक रोल करने के भी काबिल नहीं होते। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि दिल की बातों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग दरवाजे खोल जाते हैं या तो दिल के या दिमाग के। तो चलिए चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ, और फिल्म का नाम है एयरलिफ्ट, और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। अंबाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरु कीरत, गुरु शब्द सिंह। हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमरा नसरीन, आसमा परी, राबिया और आशु अहमद। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का एयरलिफ्ट फिल्म का ये गाना।

इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में संदेश भेजने के लिए हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। फ़ोन नंबर है 8004926250। और अब अगला गीत आ गया है, फिल्म का नाम है बागी, और इस गीत की फरमाइश की है जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, सीमा काजल, तन्वी मानवी, सोनी लक्ष्य, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, बटिंडा रोड से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और इनके परिवार के अन्य सदस्य। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का बागी फिल्म का ये गाना।

अभी आप आपकी पसंद प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच

0: नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रूपए से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Hlaing are holding bilateral talks in

0: तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं पूरे नतीजे को देख रहा हूं, खास तौर पर आज यहां मुनक्किद तकरीब में जहां 223 तलबा को इजाज़त से नवाजा जा रहा है, जिनमें से 85 लड़के और 138 लड़कियां हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा लड़कियों ने मेरिट हासिल किए जबकि लड़कों ने कम मेरिट हासिल की है। ये नंबर बताते हैं कि लड़कियां ज्यादा मेहनत करती हैं और मेहनत के जरिए अच्छे नंबर हासिल करने की सलाहियत रखती हैं। ये लड़कियों के लिए भी एक तहरीक होना चाहिए कि लड़कियां घर में अपने खानदान की किफालत करते हुए भी अच्छे नंबर हासिल कर रही हैं।
1: ये समारोह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम, सार्थक दिशा में किए जाने वाले परिश्रम का परिणाम अवश्य प्राप्त होता है और परिणाम हमेशा सुखद होता है और सुखद होने की अनुभूति आज आपको यहाँ पर इस सम्मान समारोह के माध्यम से प्राप्त हो रहा होगा, जिसमें 223 छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। उन 223 में छात्रों की संख्या 85 है और छात्राओं की संख्या 138 है। बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और देश और समाज को भी आगे बढ़ाएगी। इस रिजल्ट के माध्यम से एक संदेश हम सबके सामने है।
0: कई अजला में तूफान, बारिश और खराब मौसम के वाकयात के पेश नज़र उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ज़िला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर, मुतालिका महकमों को मुसलसल चौकसी बरकरार रखने और किसी भी आफत की सूरत में फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ महकमे शहरी दिफा के काम का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाए, स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: दरियस्त उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स डिपार्टमेंट की एक और मीटिंग में वजीर आला ने कहा कि होमगार्ड्स तंजीम रियासत के दाखिली, सलामती, अमनो अमान, डिजास्टर मैनेजमेंट और अवामी खिदमात का एक अहम सतून है। बदलते वक्त और नए चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इस तंजीम को ज्यादा काबिल, तरबियत याफ्ता, तकनीकी तौर पर माहिर और जदीद बनाया जाना चाहिए। 1991 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर राजीव कृष्णा को रियासत का परमानेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर किया गया है। जनाब कृष्णा पहले कारगुजार डीजीपी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से मंजूरी के बाद महकमे दाखिला ने मिस्टर कृष्णा को तकरीरी का हुक्म जारी किया। वो जून 2029 तक इस ओहदे पर फायज रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर राजीव कृष्णा ने कल वक्ती पुलिस कमिश्नर के तौर पर तकरीरी पर कहा कि वजीर आला की रहनुमाई में उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी और हुकूमत की तरजीहात को पूरा करने के लिए अथक मेहनत कर रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार उत्तर प्रदेश में समाजी तरक्की की बदलती हुई तस्वीर को जाहिर करते हैं। 2015-16 और 2023-24 के दरमियान आदाद व शुमार का मवाजना जाहिर करता है कि रियासत ने सेहत, तालीम, खवातीन को बाख्तियार बनाने, खानदानी मनसूबा बंदी, माँ और बच्चे की सेहत और बुनियादी ढांचे में नुमाया पेश रफ्त की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क्यादत में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान सेहत खदमात की तौसी, समाजी तहफ़ की स्कीमों के वसी पैमाने पर नफाज, खवातीन के बहबूद के प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे की तरक्की का असर अब कौमी सतह के सर्वे में भी नजर आ रहा है। मरकजी हुकूमत ने आज से नाफिजुल अम्ल पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी का ऐलान किया है। हुकूमत ने पेट्रोल के बरामदात पर विंडफॉल गेन टैक्स को आधा करके 1.50 रुपये फी लीटर कर दिया है। डीजल पर टैक्स कम करके 13.50 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत में चंद मकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अलग थलग मकामात पर आसमानी बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। दरियास्ता वजीर आला ने रियासत के कई अजला के लिए वार्निंग जारी की है। उन्होंने अजला को हिदायत की है कि वो तूफान, बारिश, झालाबारी और आसमानी बिजली गिरने के मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए और शहरियों की हिफाजत उसकी अव्वलियन तरजीह है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

0: नमस्कार
1: नमस्कार श्रोताओं,
0: आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। मैं हूँ आपकी सखी हेम
1: और मैं तनु।
0: तो भाई तनु,
1: हाँ?
0: देखो हर दिन की तरह
1: आज भी हम लेकर आ गए हैं क्या ज्ञान, जागरूकता, स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी उपयोगी बातों का सुंदर संगम।
0: बिल्कुल, और तभी खुशहाल बनता है घर हमारा जब उसमें प्रेम, समझदारी, स्वास्थ्य और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता हो।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं भावनाओं के साथ आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है
1: वैश्विक अभिभावक दिवस पर। इसके साथ ही हम बात करेंगे हीट वेव के बारे में, जो है आज की डेट में बहुत बड़ी प्रकृति की चेतावनी।
0: बिल्कुल,
1: सेहत ज्ञान में होगा फ्रिज में आटा रखना कितना खतरनाक, और भोर के साथ गृह लक्ष्मी टिप्स के आपके सामने हम पेश करेंगे। इसमें हम बताएंगे आपको गर्मियों में घर को कैसे रखें ठंडा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले विषय से।
0: बिल्कुल,
1: देखो हेम, हर वर्ष 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। ये दिवस माता पिता और अभिभावकों के सम्मान और उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि माता पिता बच्चों के जीवन की पहली पाठशाला होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वे केवल बच्चों का पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार, अनुशासन, प्रेम और जीवन जीने की सही दिशा, या सही शब्दों में कहें तो जीवन जीने की कला सिखाते हैं।
0: सही कहा तनु कि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं।
1: हाँ।
0: और माता पिता उन्हें सुंदर आकार देने वाले कुम्हार।
1: बिल्कुल,
0: एक बच्चे का व्यक्तित्व, उसका व्यवहार और उसके विचार काफी हद तक उसके परिवार और अभिभावकों पर निर्भर करता है। भाई माता पिता अपने बच्चों की खुशियों के लिए अनेक त्याग करते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ भी देते हैं, है ना?
1: और देखो हेम, आज के परिपेक्ष में अगर बात करें तो आज के आधुनिक समय में जीवन बहुत व्यस्त हो गया
0: बहुत,
1: है।
0: बहुत ज्यादा।
1: कई बार माता पिता और बच्चों के बीच संवाद कम हो पाता है, और विशेषकर उन घरों में जहाँ पे दोनों ही वर्किंग होते हैं, है ना? ऐसे में हमें ये दिवस ये याद दिलाता है कि परिवार के साथ समय बिताना, बच्चों की भावनाओं को समझना, उन्हें सही मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपको विभिन्न स्रोतों से मिल सकती हैं।
0: लेकिन
1: ये जो हमारी डीप रूट्स होती हैं, जो एक मेंटल डेवलपमेंट होता है सही दिशा में, सही सोचने का तरीका, सही जीवन जीने का तरीका, वो एक अभिभावक ही
0: दे सकता है,
1: समझा सकता है,
0: है
1: ना? बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं चाहिए बल्कि प्यार चाहिए, विश्वास चाहिए, नैतिक मूल्यों को भी आवश्यकता होती है इन सब चीजों की।
0: बिल्कुल,
1: है ना? वैश्विक अभिभावक दिवस का उद्देश्य समाज में परिवार के महत्व को बढ़ावा देना और अभिभावकों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना है।
0: बिल्कुल तनु, भाई देखो इस दिन एक दिन हम क्यों मनाते हैं, वो एक दिन जो कोई भी ऐसा पर्व है, ये तो हम पर्व ही मानते हैं।
1: बिल्कुल, इसलिए क्योंकि हम अपने रूटीन लाइफ में ना कभी कभी कोई चीज छूटती चली जाती है, फिर वो दिमाग से उतर जाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक तरीके का अलार्म होता है कि बहुत पीछे छूट गया भाई, वापस उसको याद करो, शुरू करो।
0: तो भाई इस दिन को सामाजिक संस्थाओं, विभिन्न संगठनों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो ये तो बात है कि सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन हम घर में भी ये कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना? और जिनके माध्यम से माता पिता के योगदान को हम सराहे जा सकते हैं, क्योंकि हम जो है उनको एक थैंक्स छोटा सा बोल सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: है? और ये महत्व जो है समाज में, परिवार में तब दिखाई देगा जब हम सब मिलकर ये काम करेंगे, वो एक दिन को सच्ची भावना से मनाएंगे और हमेशा वो उस त्याग प्रेम के प्रति जो है हमेशा कृतज्ञ रहेंगे माता पिता।
1: बिल्कुल, वास्तव में देखो माता पिता हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा और प्रेरणा होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों की बात छोड़ो हिम, हम तो आज इतने बड़े हो चुके हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन कोई भी समस्या अगर आती है सामने, तो अगर हम उनसे बात कर सकते हैं तो बात करके राय लेना चाहते हैं, नहीं बात कर सकते हैं तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये आता है कि अच्छा ऐसी परिस्थिति एक बार आई थी तो हमारे पेरेंट्स ने क्या किया था,
0: है ना?
1: तो वो जो एक

0: बचपन में पड़ जाती है ना, वो पूरे जीवन हमारा हाथ पकड़ के रखती है।
1: बिल्कुल। तनु अभी तो देखो, जब माता पिता की बात हो रही है तो अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, अभी मुश्किल से जनवरी से मार्च तक में मेरे दोनों पेरेंट्स चले गए, लेकिन उनकी बातों को हमेशा हम सब याद रखते हैं, जब भी जब तक वो थे, और वो थे नहीं आज भी हैं हम लोगों के विचारों में, हम लोगों के संस्कारों में। हम लोग जो इतने ऊपर, जैसा तुमने कहा कि इतना हम लोग बढ़ कर आए हैं, सारी बातें हम करते हैं, तो उसको फील जो हम करते हैं, उस फीलिंग को हम अपने बच्चों के अंदर अगर डालें, तो उनकी भावनाओं को अगर हम अपने बच्चों के अंदर डालें, तो हमारे जो माता पिता ने हमें ये संस्कार दिए हैं, हमें ये प्यार दिया है, ये संवेदना दी है, ये भावना दी है, तो हमारे बच्चे भी वो करेंगे।
0: और सबसे बड़ी बात, हमें वो शक्ति दी है कि हर परिस्थिति से निकल पाने के लिए हम सही निर्णय ले पाते हैं, सही कदम उठा पाते हैं।
1: बिल्कुल सही,
0: है ना। देखो, माता पिता का प्रेम जीवन का वो अनमोल उपहार है जो हर कठिनाई में हमें शक्ति और साहस देता है।
1: बिल्कुल, जैसा कि तुमने अभी कहा।
0: बिल्कुल, जिससे हम हर कठिन परिस्थिति का सामना दृढ़ता पूर्वक करते हैं। तो इस मौके पर हम अपनी श्रोताओं से सिर्फ यही कह सकते हैं

0: वाह है, बहुत ही खूबसूरत बोल थे इस गीत के,
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: एकदम भाव विभोर हो गए हम सब ना।
0: बिल्कुल।
1: हाँ
0: और इस गीत के बाद अब देखो, बहुत ही जो आजकल एकदम ज्वलंत विषय
1: हाँ
0: है
1: विषय है
0: वो है हीट वेव,
1: हीट
0: है
1: वेव,
0: ना?
1: बिल्कुल। यह
0: तो
1: इस
0: भाई बीच
1: गर्मी
0: बीच में
1: में
0: मौसम बदल तो
1: हाँ,
0: जाता है,
1: लेकिन
0: लेकिन बहुत थोड़ी ही देर की राहत के बाद ऐसा जोर का थप्पड़ पड़ता
1: कि थोड़ा
0: है। बिल्कुल। तो
1: जब लगता
0: भाई
1: है कि राहत है
0: हाँ,
1: और उसके
0: जो
1: बाद
0: थोड़ी मोड़ी लुका छिपी हो रही है उसमें हमें बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना है
1: हाँ
0: और प्रिपेयर्ड रहना
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भाई देखो हम जब बाहर निकलते हैं, तो आज जब मैं आ रही थी है ना, तो ऐसा नहीं था कि बाहर निकलने पे अरे हम ऐसे ही निकल जाएंगे, लग रहा था कि धूप अपनी चरम सीमा पे है ना, और गर्मी भी लग रही थी। तो
0: बिल्कुल।
1: भाई कवर्ड करके निकले आप, लापरवाही, जैसा तनु ने कहा कि लापरवाही बिल्कुल ना करें, तो लापरवाही नहीं करनी है ना। दूसरी, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतना जो हम लोग झेल रहे हैं सारी चीज़ें,
0: सही बात
1: है
0: है।
1: ना, देखो पानी के कारण जल भी ऐसी है कि हाँ जल बचत नहीं हो रही है, तो उससे भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर दूर करना आप चाहेंगे तो इसके लिए आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, है
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: और
1: हाँ
0: अचानक से तो कोई चीज़ें बदल नहीं
1: बदल नहीं
0: जाएंगी, तो फिर
1: जाएंगी।
0: हमें क्या करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है
1: हाँ
0: ना?
1: हाँ बिल्कुल
0: और इसमें बहुत नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो सबको पता होती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं इसलिए हम बार बार आपको याद दिलाते
1: हाँ
0: रहते हैं,
1: हाँ
0: बहुत सारा पानी पिएं। क्योंकि इस गर्मी में ना बॉडी से जो स्वेटिंग होती है
1: हाँ
0: या वैसे भी अजीब सा डिहाइड्रेशन होता है, और आजकल जैसे सब लोग एयर कंडीशन रूम्स में रहते हैं
1: हाँ
0: उसमें भी बॉडी का मॉइस्चर बहुत
1: बिल्कुल
0: खराब
1: बिल्कुल
0: ख़त्म
1: बिल्कुल
0: होता है,
1: हाँ
0: तो इसलिए हमें पानी पीना बहुत बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यास लगे ना लगे,
1: तो भी
0: नहीं ठंडा पानी मिल पा रहा है, गर्म नहीं अच्छा लग रहा है, तो भी आप पानी पीजिए, एटलीस्ट बॉडी हाइड्रेटेड तो रहेगी,
1: बिल्कुल।
0: है
1: और
0: ना?
1: क्या, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि देखिए आप सोचते हैं कि ठंडा पानी पीने से प्यास बुझ जाएगी, नहीं, आप एक
0: नहीं,
1: घड़ा रखिए
0: हाँ
1: और घड़े में पानी रखिए, वो तृप्त कर देती है आत्मा,
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: उससे
1: आप
0: प्यास भी
1: बिल्कुल
0: बुझती
1: प्यास
0: है।
1: बुझ जाती है और आपका जो शरीर है वो रूखा नहीं रहेगा और डिहाइड्रेट नहीं रहेगा,
0: बिल्कुल। और जो
1: ना।
0: ठंडे पानी के नुकसान है, जो गले में दिक्कतें
1: हाँ
0: होती हैं, वो
1: हाँ
0: नहीं
1: नहीं
0: होंगी,
1: होंगी।
0: है ना? इसके अलावा जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक दोपहर में ना निकलें, अगर कहीं जाना भी है तो सुबह जल्दी चले जाएं, कहीं से लौटना है तो थोड़ा शाम होने के
1: हाँ
0: बाद

0: लौटे,
1: है ना। लेकिन अगर आपको निकलना ही है तो प्रिकॉशन तो करना पड़ेगा,
0: प्रिकॉशन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सूती कपड़े से अपना मुंह बांध के निकलना होगा, सूती कपड़े के हैंड ग्लव्स पहनने होंगे, मतलब शरीर कहीं भी खुला ना रहे, वो धूप के एक्सपोजर में ना आए। उससे बहुत ज्यादा स्किन मतलब जल सी जाती है, और जो पानी सोखती है सो तो अलग,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: और जब भी बाहर आप निकलें, ये कोशिश करें कि पेट आपका पानी से भरा रहना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: ना? और कुछ खा के निकलें, खाली पेट बिल्कुल ना।
0: हाँ, खाली पेट में लू लग जाती है,
1: लग जाती है। और आजकल जो है बेल देखो कितना अच्छा मिलता है,
0: बहुत सारी चीजें हैं,
1: तरबूज है,
0: हाँ,
1: और खीरा है बहुत सारी मात्रा में।
0: भगवान ने दवाइयां साथ में देके ये मौसम भेजा है,
1: हर मौसम में वो मौसम के अनुसार जो फल और सब्जियां हैं उन्हें जरूर यूज कीजिए। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये नहीं खाने का मन है।
0: बिल्कुल नेचुरल चीजों से आप खुद को जितना प्रोटेक्टेड और हेल्दी रख सकते हैं ना, जैसे सत्तू है, सत्तू का शरबत आप पीजिए, कभी लू नहीं लगेगी, कभी डिहाइड्रेशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करें, बेल का शरबत है, शिकंजी है, तरबूज का जूस है, नहीं तो ऐसे ही तरबूज खा सकते हैं।
1: पना जरूर ले,
0: पना है आम, कच्चे आम का पना है, है ना। तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल
1: लिक्विड फॉर्म में जो भी आप ले पाए, लिक्विड फॉर्म में आप जैसे कि घर में पहुंचते हैं तो आप डायरेक्ट ठंडा पानी ना लें, थोड़ी देर वेट कर लें, उसमें नॉर्मल पानी मिला के आप चाहे नींबू डाल के हल्का सा चीनी नमक डाल के आप पी लें तो ये शिकंजी बन जाती है, इससे आपको थोड़ी राहत मिलती है। या आप घर में पहुंचे तो पना बना के रखे,
0: बिल्कुल
1: सबको दें, अपने भी लें और सबको भी दें। ये सारी चीजें आप करेंगे तो आप इस हीट वेव से जरूर बच पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और सबसे विशेष बात यह है कि अगर आपके घर में कच्ची जमीन नहीं है, कोई बात नहीं है, आप गमलों में प्लांट लगाएं, है ना, पेड़ पौधे लगाएं। अगर जिनके घर में जमीन है, कच्ची जमीन है, तो वो पेड़ पौधे जरूर लगाएं।
0: बिल्कुल, वो ग्रीनरी से एक अलग सी कूलनेस और बहुत मतलब जरा से भी हवा चलेगी या थोड़ा सा भी आपको शाम के टाइम पे वो एक ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है, आसपास का माहौल अच्छा रखता है, हाइड्रेटेड रखता है, ठंडा रखता है। तो ये सारी चीजें तो आप बिल्कुल अपने आसपास मेंटेन करके रखें।
1: क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम किसी प्रकृति को छेड़ेंगे तो हमें अवसर एक बार देती है, बार बार अवसर
0: बार बार नहीं देती है,
1: तो इसलिए सुधरिए
0: सुधरना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा।
1: और समझिए प्रकृति की चेतावनी को,
0: बिल्कुल। और घर से निकलें तो किसी भी हाल में सर को खुला ना छोड़ें, टोपी लगाएं, दुपट्टा ओढ़ें, छतरी लेके चलें, एनी हाउ सर पे अगर गर्मी लगती है तो वो लू लगने का बहुत बड़ा कारण बनता है। और आप तो बड़े हो, समझदार हो, लेकिन हमें किसका ख्याल रखना है, घर के बच्चों का और बुजुर्गों का। उनका हमें विशेष ध्यान रखना है और उनको डांट डांट के पानी पिलाना है और अच्छी चीजें खिलानी है।
1: बिल्कुल, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। तो अपना भी विशेष ध्यान रखें और अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी ध्यान रखिए। अब भाई ध्यान रखना है तो हमको भी ध्यान तो रखना है ना तनु,
0: अपने श्रोताओं का, कि अब वो एक गीत का इंतजार
1: कर रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं।

0: भाई ये समा, हम लोग तो समा में ही खो गए तनु। लग रहा था कि बस ये गीत बजता जाए और हम
1: हाँ
0: सुनते जाएं।
1: सुनते
0: हाँ लेकिन भाई
1: रहे।
0: क्योंकि इतनी सारी जानकारियां हमारे पास हैं तो उसमें नहीं खो जाना है, फिर वापस आ जाना है और
1: बिल्कुल,
0: अपनी सखियों से बातचीत भी करनी है।
1: आगे और भी चेतावनियां देनी है जिससे उन्हें
0: बिल्कुल
1: कोई नुकसान ना हो,
0: हाँ।
1: है ना।
0: तो भाई देखो तनु, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में या व्यस्त जीवन में कई लोग अपनी सुविधा के लिए कुछ ऐसी गलती कर लेते हैं जो बाद में बहुत सारी जो है हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां उनको हो जाती है। अब बहुत है कि सब्जी कट करके भी फ्रिज में रख देते हैं, है ना।
1: हाँ
0: बहुत से लोग हैं कि चलो हम जो है आटा गूंथ के रख देते हैं। तो अगर आपने आटा गूंथ के रख दिया या सब्जी काट के ऐसे ही रख दिया तो उसमें क्या होता है ना कि अंदर अंदर जो एक फंगस जो है
1: अच्छा
0: हाँ वो आ जाता है।
1: हाँ
0: तो अब सुविधा तो आपको हो गई कि मॉर्निंग में आप उठे और फटाफट आपने, या सुबह आपने गूंथ के रख दिया तो शाम को आपने बनाया, लेकिन लंबा टाइम है फ्रिज में भी आप खतरनाक है वो रखना, उससे बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं।
1: अच्छा
0: हाँ गूथा आटा तो बिल्कुल फ्रिज में ना रखें और
1: अच्छा
0: सब्जियों को भी कट करके ना रखें। थोड़ा जल्दी उठें भाई, जल्दी उठें
1: दो
0: आप,
1: मिनट का
0: दो
1: काम
0: मिनट
1: है,
0: का
1: थोड़ा
0: काम
1: सा
0: है,
1: एफर्ट कर
0: हाँ
1: लें,
0: एफर्ट कर लें उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर आपको अपने हेल्थ के लिए जो है आपको अपना हेल्थ अच्छा रखना है तो आपको ये बात तो मानी ही पड़ेगी। इससे जानते हो अगर आपने नहीं बात मानी या नहीं समझ, सबको मालूम होगा हमारी जो सखियां बहुत जानकार हैं और उनको सब पता है, लेकिन जानते हो जरा सी लापरवाही कर देती हैं और किस छोटी सी सहूलियत के लिए कि चलो इतना टाइम जो बच जाएगा, अरे सारा टाइम इसी में बचाना है आपको, क्योंकि हम जब कमाते हैं तो अच्छा खाने के लिए, है
1: बिल्कुल
0: ना, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे इसके लिए
1: बिल्कुल,
0: कमाते हैं।
1: थोड़े से टाइम के
0: हाँ
1: लिए सेहत से समझौता नहीं होना
0: बिल्कुल नहीं
1: चाहिए,
0: करना
1: है ना।
0: चाहिए। तो आप जो है पहले हमने बताया आपको कि गूथा आटा जो है बैक्टीरिया और फंगस पैदा कर देता है, तो इससे पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पेट में जैसे कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है,
1: अच्छा
0: हाँ पेट में अंदर अंदर क्या होता है कि अंदर आपको पेट दर्द तो होगा लेकिन पता नहीं चलता, वो आटा जो है जमने लगता है आंतों में, तो इससे भी दिक्कत होती है। डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि आप जो है हमेशा ताज़ा खाना खाएं, कभी
1: बिल्कुल
0: भी आप बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। तो ये
1: बिल्कुल, वही
0: वाली
1: देखो आटे
0: हाँ
1: का सही तरीका क्या है कि जब आप आटा गूंथिए तो उसको आप 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि उसका जो ग्लूटलाइन और वो है आपस में
0: हाँ
1: अच्छे से मिक्स हो जाए।
0: हाँ
1: 15 मिनट बाद दोबारा उसको आप अच्छे से एक बार मैश कर लीजिए और फिर आप उसको ताज़ा ताज़ा बना के
0: बिल्कुल
1: ख़त्म कर
0: खत्म
1: दीजिए।
0: कर दीजिए।
1: और 2 घंटे से ज़्यादा का गुथा हुआ आटा तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना
0: और
1: चाहिए।
0: तनु अब तो देखो हर जगह, मैं तो नहीं देखती कहीं ज्वाइंट फैमिली इतनी है ना,
1: हाँ छोटे
0: हर
1: परिवार
0: छोटे छोटे
1: हैं,
0: परिवार
1: बिल्कुल
0: हैं, तो छोटे परिवार में अरे मुश्किल से आपको 6 रोटी 5 रोटी इतनी बनानी
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल
0: उतना आटा तो फटाफट एक हाथ मारो गूंथ जाता है। तो इतना भी आलस करने की जरूरत नहीं है सखियों, क्योंकि भाई
1: एक्चुअली तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पता है जितनी देर भी फ्रिज से आटा निकालो, उसको नॉर्मल
0: हाँ
1: करो, ठीक करो, उतनी देर में तो आप नया आटा गूंथ लो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखो ये चीज़ बिल्कुल ना करें क्योंकि जानते हो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है ना। अब
1: बिल्कुल,
0: हाँ
1: और ताज़ा आटा गूंथ कर ही हम यूज़ करें,
0: हाँ
1: और अगर रखना पड़ता भी है, जैसे
0: हाँ
1: कुछ लोगों की आदत होती है कि नहीं हम बना के नहीं रख रहे रोटी,
0: हाँ
1: जब
0: हाँ
1: इंसान खाने वाला आएगा तो गरम
0: तब
1: गरम
0: कर देंगे,
1: खिलाएंगे,
0: हाँ तब कर
1: तो थोड़ी देर पहले गूंथ लें जब खाना खाना शुरू होने वाला हो कि कोई आगे पीछे आ रहा है, थोड़े टाइम में वो यूज़ हो जाए।
0: वो भी गर्मियों में,
1: हाँ
0: गर्मियों में,
1: बिल्कुल
0: सर्दी में तो अपने आप ही वो आटा आपने गूंथ के रख दिया तो वो
1: हाँ
0: एकदम वैसे ही सेट रहता है। गर्मी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अगर 1 घंटे बाद लोगों को खाना है तो आप गूंथ के और उठा के रख दीजिए।

0: ये कि वो खराब ना होने पाए, और जैसे कोई आए फटाफट आप रोटियां पका के दे दीजिए।
1: बिल्कुल, और जब भी आटे को रख रहे हैं उसको अच्छे से ढक के और एयर टाइट कंटेनर में ही रखें।
0: बिल्कुल,
1: और अगर जरा सा भी आपको ऐसा आभास होता है कि उसमें कुछ स्मेल है या उसका कलर कुछ बदल गया है तो तुरंत उसको हटा दें, उसको बिल्कुल भी यूज ना करें। और भाई ये बात तो सब लोग जानते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है कि ताजा भोजन जो होता है वो सबसे ज्यादा लाभदायक होता है, इसलिए ताजा ही खाएं और स्वस्थ रहें।
0: बिल्कुल, और भाई देखो स्वास्थ्य छोटी छोटी आदतों से ही सुरक्षित रहता है, है ना। याद रखिए सुविधा अच्छी है लेकिन स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति यानी धन है हमारा।
1: बिल्कुल,
0: और अब क्या करें, हम आगे बढ़े अपने अगले सेगमेंट की ओर।
1: हाँ बिल्कुल, हमारा
0: भोर की ओर,
1: भोर की तरफ।
0: तो भाई आज का विषय है भोजन ग्रहण करने का सही तरीका, जिसके विषय में हम लोग बातचीत कर रहे हैं।
1: हाँ।
0: और नेहा गुप्ता जी और तनु आर्य ने ये बातचीत की है, तो चलो जानते हैं।

0: तनु,
1: हम्म,
0: मेरी दादी कहा करती थी मुझसे हमेशा कि बिटिया जब भी खाओ बड़े मन से खाओ, बड़े प्यार से खाओ और इस तरह से खाओ कि ये जो भोजन है ना तुम्हारे शरीर में लगे, पूरा पचे, एक बढ़िया खून तैयार हो जिसे तुम खूब सुंदर काम करो।
1: बिल्कुल। और ये चीज़ तो भाई छोटे क्लास से पढ़ाई भी जाती है। बच्चों से कहा जाता है कि खाते वक्त टीवी नहीं देखें, खाते
0: हाँ
1: वक्त बात नहीं करें, तो वही संस्कार हम बच्चों को देना चाहते हैं जो उनके लिए फलित हों।
0: हाँ अब जैसे देखिए ना, कई कई बार आपने कहा कि खाते वक्त टीवी ना देखें, बातें ना करें, लेकिन कई बार हम ये उल्टी होती हुई चीज़ देखते हैं ना, जैसे कि खाना खा रहे हैं तो ऐसा लगता है बोर ना हो जाएं खाते खाते, इसलिए टीवी देखते हैं,
1: हाँ,
0: इसलिए मोबाइल देखते हैं।
1: तो उसका भी तरीका ये होता है कि अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आप टीवी में कुछ पॉजिटिव चीज़ देखें। आप कोई धार्मिक चैनल लगा के देखें, आप उस समय पे क्राइम से रिलेटेड कोई चीज़ देख रहे हैं या कुछ नेगेटिव देख रहे हैं, तो वो जो तरंगे हमारे मस्तिष्क में चलती हैं वो हमारे खाने में शामिल हो जाती।
0: पता है तनु, ये जो मैं दादी जी वाली बात बता रही हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है। दादी कहती थी कि बेटा ये जो टीवी देखने वाली बात है ना कि लोग खाते वक्त बोर हो रहे हैं, असल में वो अपने खाने को नहीं देखते। आप जैसे मुंह में जब आप एक निवाला डालते हैं तो महसूस करिए कि वो पूरी तरह से चबा लिया कि नहीं।
1: अब देखिए, इस चीज़ को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि कोई भी लेडी, क्योंकि समय की आजकल हर किसी के पास कमी है, वो ये सोचती है कि मैं टीवी चला के बच्चे को जल्दी से खाना खिला दूं। तो अगर उसने जल्दी से खा लिया या जो चीज़ उसे नहीं भी पसंद है वो उसने खा ली, तो इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि उसने उस भोजन पे ध्यान नहीं दिया।
0: और जब हम ध्यान भोजन पर नहीं देते हैं और उम्मीद करते हैं भोजन से कि ये
1: वो
0: भोजन
1: हम पे ध्यान दे।
0: शरीर में जाए और अच्छे से पचे और हमें ताकत, स्फूर्ति, सुंदर मन प्रदान करे, तो ऐसा नहीं
1: नहीं
0: होता।
1: हो सकता है।
0: अच्छा, कभी आपने ये तनु देखा है, कुछ लोग कम खाते हैं लेकिन कभी बीमार नहीं पड़ते हैं।
1: हाँ
0: वो मतलब रोज मेवा नहीं खाते,
1: हाँ
0: रोज दूध नहीं पीते, रोज बहुत महंगे फल नहीं खाते, वही रोटी सब्जी कुछ
1: हाँ
0: सलाद रख लिया
1: हाँ
0: लेकिन बड़े प्रसन्नचित रहते हैं।
1: बिल्कुल। ये कहते हैं ना कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, वो चीज़ उतनी ज़्यादा नहीं आपके ऊपर असर करती है, बल्कि ये असर करता है कि हम उसे खाते कैसे हैं। जैसे आप देखिए, कुछ लोगों की डाइट, एक इंसान की प्लेट और दूसरे इंसान की प्लेट में बहुत अंतर होगा, लेकिन शायद आपको वो कम डाइट वाला इंसान, जो पूरे दिन भर में भी एवरी टाइट डाइट में वैसा ही रहता है, वो ज़्यादा स्वस्थ रहता होगा उस इंसान से, क्योंकि उसका बॉडी सिस्टम जो है वो उस खाने को उस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है।
0: हाँ, जैसे हमारी जो धारणा होती है भोजन ग्रहण करने वक्त, जब हम बड़ी खुशी से खाते हैं और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस पहर आपने हमें रोटी का ये टुकड़ा नसीब किया, बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया, तो हमारे अंदर वो शुक्राना वाली फीलिंग्स आ जाती हैं। और ये भी
0: हाँ
1: कहा जाता है कि भोजन परिवार साथ में बैठ के करे,
0: हाँ
1: क्योंकि असली खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अपनों के साथ होते हैं। तो जब हम सबके साथ मिलके

0: भोजन करेंगे ना, तो जो कोई किसी को कुछ पसंद भी नहीं होगा वो भी खा लेगा, थोड़ा अपनी डाइट से ज़्यादा भी खा लेगा, और
1: हाँ
0: जब उस खाने को हम ग्रहण कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, तो एक बड़ी संतुष्टि होगी।
1: बिल्कुल, ये जो बात है कि भोजन से आपका रिश्ता जो है आपको ही मजबूत बनाना है, भोजन से आपका रिश्ता मजबूत हो और जो आपके रिश्ते हैं वो भोजन के ज़रिए मजबूत हो,
0: मजबूत हो।
1: ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम खाते हैं तो हम बहुत सुंदर सोच करके खाएं कि ये भोजन हमारे अंदर प्राण वायु का काम करेगी, एक नया प्राण का संचार करेगी। आपने कभी देखा है किसी योगी को या किसी संत को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि वो कुछ फल ही खाते हैं और पूरे दिन भर ऊर्जा से भरे रहते हैं या भरी रहती
0: और वो
1: हैं।
0: नींद भी कम लेते हैं, उन्हें खुद
1: हाँ,
0: को एनर्जाइज करने के लिए उतने घंटों की नींद की जरूरत नहीं होती है।
1: और पता है तनु, मजे की बात, वो लोग एक और स्पेशल बात करते हैं अपने साथ। भोजन ग्रहण किया, फर्ज करिए 15-20 मिनट जो भी उनको लगे, उसके बाद वो एक और नियम का पालन करते हैं। उनको लगता है कि भोजन अच्छे से पचे, उस देर में वो बिल्कुल तनाव नहीं लेते।
0: बिल्कुल तनाव नहीं लेते हैं, और इसीलिए कहा गया है ना कि भोजन का भोग लगाओ, वो प्रसाद बन जाता है, क्योंकि जब हम उस मानसिकता के साथ उस भोजन को बनाते हैं कि ये हमें इसका भोग लगाना है, और भोग लगा के जब हम उसको खाते हैं, तो अपने आप हमारा जो मन मस्तिष्क है वो दूसरी तरीके से सोचने लगता है।
1: तभी शायद जिंदगी में लोग सफलता के दूसरे पहलू से, दूसरे आयाम से परिचित होने लगते हैं।
0: बिल्कुल।

0: सखियों आपने जाना ना क्योंकि हम सब आज भर भर कर जानकारियां आपको दे रहे हैं, आपको रिकॉल करवा रहे हैं
1: हाँ
0: क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो कि जो भूल जाओगे, है ना, सबको पता होता है ये चीज, लेकिन हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं कि आप भूलने नहीं पाएंगे, आपको हमेशा याद रहेगा,
1: लापरवाही नहीं करने देंगे,
0: ठीक है। तो भाई अभी आपने सुना भोर कार्यक्रम और इसमें था कि भोजन करने का जो सही सलीका सही तरीका है उसके बारे में आपने जाना, और नेहा गुप्ता जी और तनु आर्य ने इतनी अच्छी जानकारी दी, तो इसे भी आप अमल में ले आइए, और एक जो है छोटी सी प्रतिक्रिया आप लिखकर पत्रों के माध्यम से या आप व्हाट्सएप नंबर पर हमारे ज़रूर भेज दीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और तनु अब क्या है,
1: अब भाई भाई वही बात है जो अभी तुमने कहा कि अच्छा लगेगा हम यही बातें कर रहे हैं ना कि ये करेंगे तो अच्छा लगेगा, ये करेंगे तो अच्छा लगेगा, ये करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो अब अगला सेगमेंट भी वही है कि हम गर्मियों में घर को कैसा रखेंगे कि हमें अच्छा लगेगा
0: है ना? तो जो है हम आपको सबसे पहले टिप्स बता देते हैं, है ना, कि हम गृह लक्ष्मियां हैं, प्राउड फील करना चाहिए हमें ना है कि हम गृह लक्ष्मियां हैं और हमारे बगैर घर नहीं चल सकता,
1: बिल्कुल नहीं चल सकता,
0: कल्पना नहीं कर सकते हैं है? तो सबसे पहले है कि भाई देखो गर्मियों में घर को ठंडा रखना जो है एक कला है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसके कुछ जो है आसान तरीके हम बता दें आपको कि सुबह और शाम जो है आप खिड़कियां खोल कर रखें जिससे ऑक्सीजन आपको मिलता रहे, ताजी हवा आती रहे आपके पास, और खिड़कियों में हल्के रंग के पर्दे लगाएं,
1: बहुत जरूरी है भाई। देखो हेम जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना तो अंदर से एक बड़ी इंटेंस फीलिंग होती है कि जल्दी से अपने ठंडे ठंडे घर में पहुंच जाएं, है ना। तो घर को पहले से वैसा हमें प्रिपेयर तो रखना ही पड़ेगा,
0: बिल्कुल,
1: कूल कूल लुक वाला, कूल कूल फील वाला, है ना।
0: और दूसरी बात जैसा कि हम लोग हमेशा अभी यही कह रहे हैं देखो कि पेड़ पौधे लगाना जरूरी है, तो घर में तुलसी एलोवेरा और मनी प्लांट जैसे पौधे जरूर रखें, और ये जो है ना बहुत ही सुकून देने वाला पौधा है, जब आप घर में पहुंचे आप पास में ही लगा के रखें। मनी प्लांट तो लोग अपने जो है ड्राइंग रूम में भी लगाते हैं,
1: हाँ, इंडोर प्लांट है उसको, उससे आप कहीं पर भी घर के अंदर हरियाली कर सकते हैं, किचन में एक छोटा सा पॉट रख सकते हैं, और लाइट कलर के पर्दे, लाइट कलर की फर्निशिंग, ये सब चीजों से घर बहुत कूल, जैसे पिंक कलर है, लाइट ब्लू कलर है, सी ग्रीन कलर है, ये सब चीजें तो होती है ना। हालांकि जो विंडोज सनलाइट की तरफ होती हैं वहां पे डार्क लगाते हैं ताकि वो हमारे गर्मी को अंदर ना आने दें और कमरा ठंडा रहे।
0: आजकल तो ट्रेंड है देखो एकदम जो ग्रीन

0: कलर का वो पर्दा आता है ना, कर्टन बाहर लगा लेते
1: हैं, मैश जो आती है। एक और तरीका होता है हेम, जैसे मैंने कहा कि डार्क कलर का पर्दा लगाना है कि बाहर की गर्मी अंदर नहीं आए, और अंदर से हम लुक चाहते हैं बिल्कुल लाइट लाइट मौसम के हिसाब से, तो हम डबल प्लाई के पर्दे लगा सकते हैं। जैसे आता है ना, पीछे सैटन का डार्क कलर ले लिया और आगे हमने लाइट कलर की नेट ले ली,
0: तो जो डार्क कलर है वो बाहर जो गर्मी है ना वो अंदर नहीं वो करने लगा, और अंदर से हम जो जो लाइट कलर का पर्दा है वो आंखों को बड़ा सुकून देगा। तो दोनों देखो, दो तरीके से हमने काम कर लिया। और दूसरी बात ये है, घर में घर आप बंद करके रखें, और जैसे खिड़की, और मैंने कहा मॉर्निंग में जरूर आप खिड़कियां खोलें,
1: क्योंकि एसी कूलर्स की वजह से हम लोग ऑलरेडी सब जगह से बंद करके रखते हैं कि गर्म हवा कहीं से ना आए, ठंडी हवा कहीं से ना निकले, उसको भी रास्ता नहीं देते निकलने का। तो ये बहुत जरूरी है कि रात को, शाम को, या जब कभी आपको लगे कि अच्छी हवा चल रही है, अब फटाफट सारे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए,
0: कमरों में वाइब जरूर कर दे। जैसे अब आप पूरा तो हो गया काम, तो हो गया, लेकिन आप जब भी फ्री हो गए और घर में कमरे में जा रहे हैं थोड़ा लेटने के लिए, आराम करने के लिए, तो एक बार जरूर वाइब कर दीजिए, उससे भी कमरा ठंडा बना रहता है। और दूसरी बात भाई, जो घड़े का पानी है, वाह उसमें सोने पे सुहागा हो जाता है। तो भाई ये अगर ये सब काम आप करेंगे तो आपका घर जो है एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल रहेगा।
1: एक टिप मैं और बताऊं है, जो मैंने इस बार अपने घर में आजमाई। क्या होता है कि एसी रूम में हम लोग दरवाजा बंद करके रखते हैं, जैसे ही एसी रूम से निकले एकदम बहुत तेज गर्मी लगी,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो इस बार मैंने क्या किया कि जैसे मेरे एक रूम में मैंने कूलर लगा दिया,
0: अच्छा,
1: और उसको बिल्कुल कम स्पीड पे चला के पूरे टाइम के लिए छोड़ दिया। उससे ना पूरे घर का, इवन हमारा किचन, हमारा लॉबी एरिया जो भी है, पूरा एकदम ठंडा ठंडा रहता है। तो वो आपको अचानक से गर्मी और सर्दी, जो एसी वाला नुकसान होता है, वो नहीं होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो बिल्कुल आप ऐसा ना करें कि हर जगह एसी ही एसी लगा ले रहे हैं, कूलर को भी अपने घर में जगह दें, उसकी ठंडक ही अलग होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल है, सही ना? कह रही हो। और दूसरी बात ये है कि देखो, अब बार बार सूचना जो आती है हमारे पास कि इस गर्मियों में आप ध्यान रखें क्योंकि हीट वेव बहुत ज्यादा है ना, परेशानी हो सकती है, तो इसके लिए भी एक छोटी छोटी बातों को हम जरूर बताना चाहेंगे, है ना। कि जैसे आजकल देखो, जब हम बाहर निकलते हैं, है ना, अचानक जैसे तुमने कहा कि एयर कंडीशनर से हम बाहर निकलते हैं तो हमें जो है प्रॉब्लम हो जाती है, तो यही सब चीज लेके हमारे पास ये जो है सूचना है कि जब आंधी तूफान और वज्रपात आता है तो उसे बचाव करने के लिए हम क्या क्या सावधानी रखें। तो भाई देखिए, टिन की छत, होर्डिंग, क्षतिग्रस्त मकान, पेड़, बिजली के खंभे और मोबाइल टावर से दूर रहें।
1: बिल्कुल।
0: घर के बाहर या छत पर रखी हुई भारी वस्तुएं उड़ सकती है, इसलिए उन्हें बांध कर रख दें।
1: बिल्कुल, है ना? पेड़ के नीचे कभी भी शरण ना लें, क्योंकि पेड़ गिर जाता है, डाल से भी बहुत चोट लग जाती है, और बिजली को भी अट्रैक्ट करता है, अर्थिंग देता है। दीवार के सहारे टेक ना लगाएं, धातु युक्त नल एवं फ्रिज को ना छुएं, धातु से बने छाते का प्रयोग ना करें क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होता है, वो तुरंत बिजली को खींचता है। घरों में चलने वाले भारी जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको सबको अनप्लग कर दें। खुले वाहनों में सवारी ना करें, बचाव के लिए जमीन पर ना लेटें, और तैराकी या नौकायान तो बिल्कुल भी ना करें जब तेज हवा चल रही हो।
0: बिल्कुल, तो ये सारी सूचनाएं जरूर ध्यान में रखें, है ना। और अब क्या सोचे
1: अपने को स्वस्थ रखें, खुश रहें, और बढ़िया बढ़िया म्यूजिक का आनंद लेते रहें। तो सुनते हैं ये गीत।

0: तो भाई आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये गीत, और आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, आपके जीवन में उपयोगी साबित होगा। और अब समय हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का। मैं हेम
1: और मैं तनु, बहनों से कहते हैं नमस्कार,
0: करते हैं और कहते हैं नमस्कार।

0: जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज, अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफिन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा, मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की

0: वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपए होगी। मुंबई में 43.50 रुपए की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपए होगी। कोलकाता में 53.50 रुपए की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपए होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा

0: है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लोकगीतों के आज के इस कार्यक्रम में लीजिए पहले सुनिए रामकृपाल यादव और साथियों के स्वर में खेमटा।

और अब कहरवा सुनिए, कलाकार हैं राम कृपाल यादव और साथी।

कार्यक्रम के अंत में दादरा सुनिए, कलाकार हैं राम सिंह पटेल और साथी।

इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। सभा के आरंभ में सुनिए नन्हे मन ने सुने अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद।
1: तनु दीदी,
0: हाँ?
1: आज के इस नन्ही दुनिया कार्यक्रम में
0: हुँ?
1: मैं बच्चों से एक शिकायत लेकर आई हूँ।
0: अरे दीदी, ऐसा क्या हो गया? कौन सी बात हो गई? बच्चों ने क्या गलती कर दी?
1: भाई, गलती ये है उनकी कि जब से समर वेकेशन हुई है ना,
0: हाँ?
1: बच्चे सिर्फ खेल कूद मौज मस्ती में ही लगे हुए हैं। उन्हें होमवर्क करने की तो याद ही नहीं है, बात बात पर जिद करते हैं और बाहर भाग जाते हैं, है ना, वो साइकिलिंग करने के लिए। तो मुझे बहुत शिकायत है।
0: ये बात तो आप सही कह रही हैं दीदी, लेकिन सारे बच्चे ऐसा नहीं करते। हाँ, कुछ बच्चे बदमाशी कर सकते हैं,
1: लेकिन उनके
0: तो
1: साथ जो सारे बच्चों की बात
0: उनको भी मन
1: कर
0: करता है देखने का, देखकर ये सब करने का, है ना। तो भाई, आज हम बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि देखो, 24 आवर्स ना बहुत होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप खूब खेलो, खूब सो, खूब आराम करो, खूब अच्छे से अपनी छुट्टियां मनाओ, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम बनाओ कि इस टाइम पे हम पढ़ेंगे,
1: हाँ,
0: है ना।
1: और क्या,
0: उस टाइम पे अपना होमवर्क करो, एक्स्ट्रा स्टडीज करो, और आगे जो आपका नया क्लास आया है उसके लिए प्रिपरेशन करो। उससे क्या होगा, जब स्कूल खुलने वाले होंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी कि
1: हाँ,
0: अरे अभी तक तो मेरा काम ही नहीं हुआ है।
1: हाँ, और फिर
0: है
1: परेशान
0: ना?
1: आप होगे, और फिर इसके बाद अपने मम्मी पापा को आप परेशान करोगे, है
0: और
1: ना?
0: इसके अलावा अगर आप गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने जा रहे हो तो उतने दिन आप नहीं पढ़ पाओगे, तो उसकी एक्स्ट्रा स्टडी और होमवर्क जो है आप पहले से करके रख लो।
1: बिल्कुल,
0: पता चला कि अभी आप खेलते रहे, फिर आप कहीं घूमने चले गए, फिर स्कूल खुलने का टाइम आ गया, लो हो गया सब काम खराब।
1: और क्या, तो कहने का मतलब ये है कि सभी काम जो है टाइमली कर लीजिए, जिससे आप मौज मस्ती भी कर पाओ।
0: बिल्कुल
1: भाई, साथ में जब आप काम अपना

0: वर्क कंप्लीट कर लोगे तो घर में जितने भी लोग हैं सबको पता होगा कि बच्चे ने काम पूरा कर लिया है, अब इसको खेलने की भी जरूरत है,
1: और
0: तो
1: दीदी
0: का टोकी नहीं होगी।
1: एक
0: है ना?
1: बहुत अच्छा आइडिया मैं बताऊं।
0: वो क्या?
1: देखिए समर वेकेशंस हैं,
0: हाँ
1: दोपहर में इतनी गर्मी होती है, मम्मी पापा कहीं भी निकलने नहीं देते
0: हाँ
1: हैं, मना करते हैं, वो वाला टाइम आप पढ़ाई के लिए फिक्स कर लो।
0: बिल्कुल
1: सुबह
0: बिल्कुल
1: जल्दी उठो, बाहर खेलने जाओ, पार्क में आउटडोर गेम्स खेलो, अपना आ गए, नहाया धोया, ब्रेकफास्ट किया, पढ़ाई करी,
0: हाँ
1: है ना, दोपहर
0: हाँ
1: में थोड़ा रेस्ट किया, फिर शाम को खेले।
0: बिल्कुल
1: आपको करना क्या है कि जो
0: हाँ
1: दोपहर का टाइम जब आपको घर से निकलने को नहीं मिलता है, तो जो आप मोबाइल और टीवी में काट देते हो ना,
0: हाँ
1: वो आपको नहीं करना है।
0: हाँ
1: मोबाइल का तो कोई भी यूज़ नहीं है, सिर्फ आंखें खराब होती हैं और टाइम खराब होता है, मोबाइल तो बिल्कुल छोड़
0: अब
1: दीजिए।
0: जैसे दीदी ना कब, अब ये है बहुत से स्कूल्स में देखिए व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, ठीक है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है,
1: वो
0: वो
1: मम्मी
0: मम्मी
1: पापा
0: पापा
1: बता
0: देखेंगे
1: देंगे।
0: और आपको देखकर बता देंगे कि
1: हाँ
0: इसके लिए आपके लिए क्या मैसेज है ना,
1: हाँ
0: तब आप उसमें देखकर और करिए जो भी
1: बिल्कुल।
0: वर्क है
1: और अगर
0: आपका,
1: कुछ मैटर
0: है ना।
1: चाहिए तो
0: हाँ
1: वो आप अपने मम्मी पापा से प्रिंट आउट निकलवाने को कह
0: बिल्कुल।
1: सकते हो,
0: और
1: है ना।
0: देखो एक बात और भी हमने दीदी नोटिस किया है कि जब दोपहर का समय कितना अच्छा समय होता है, उसमें भी टाइम वो वेस्ट कर देते हैं, और जब शाम का समय होता है तब उनको या तो खेलने का मन करने लगता है या तो सोने लगते हैं, दो में से एक काम करते हैं।
1: क्योंकि थक जाते हैं ना, अगर वो
0: हाँ
1: ये सोचें कि दिन भर हम खेलेंगे और हम रात को पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि रात तक वो इतना थक जाएंगे कि पढ़ ही नहीं पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: इसलिए दोपहर में ही आप पढ़ लो, सुबह थोड़ा सा खेले, दोपहर में सारा पढ़ लिए,
0: हाँ
1: शाम को जितना खेलने का मन किया खेले, नहीं तो घर आ गए, थोड़ा बहुत टीवी देखे, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया, और जब सोने का मन किया सो गए।
0: हाँ तो देखिए दीदी कितनी अच्छी बात इस विषय में हम लोगों ने छोटी छोटी बातों को बच्चों को बताई। अब एक बात और भी है,
1: क्या दीदी?
0: वो बात ये है कि आज हम बच्चों को कुछ कुछ ऐसा ऐसी चीज बताने वाले हैं जो वो जाने, जिस चीज के वो बहुत ही कि हम ले लेके भागते हैं, आप समझ लें वो गेस कर लें वो है साइकिल। तो साइकिल तो बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए भी, और जो सरलता पूर्वक आप उस पे जो है ना अपनी यात्रा भी पूरी कर सकते
1: बिल्कुल,
0: हैं
1: बिना खर्चे के।
0: बिना
1: हाँ,
0: खर्चे के। तो भाई
1: हेल्थ के लिए भी अच्छी,
0: हाँ,
1: पैसे के लिए भी अच्छी,
0: और स्वास्थ्य के लिए
1: बढ़िया
0: भी अच्छी,
1: बढ़िया
0: तो
1: गेम्स।
0: गेम्स के लिए भी अच्छी कि आप साइकिलिंग जब कर सीख लेते हैं साइकिल कर चलाना, तो आप उसमें छोटे छोटे स्टेप भी देख लेते हैं, है ना। आजकल तरह तरह की साइकिल आ गई है
1: हाँ, गियर
0: दीदी।
1: वाली साइकिल भी आ
0: हाँ
1: गई
0: बिल्कुल।
1: है ना।
0: तो आज हम जो है साइकिल के विकास की बात बच्चों से कुछ शेयर कर लें, है ना।
1: पहले गाना सुन लें,
0: हाँ तो सुन लो, पहले गाना ही सुन
1: पहले
0: लेते हैं।
1: गीत सुनते
0: हाँ
1: हैं।
0: ठीक।

0: मैंने कहा
1: बहुत
0: फूलों
1: बढ़िया
0: से, है ना,
1: था।
0: तो भाई हमारे जो नन्हे मुन्ने फूल की तरह तो हैं, जरा देर में रूठ जाते हैं और फिर थोड़े थोड़ी देर में मरना भी लेते हैं हम
1: खिल
0: लोग,
1: जाते
0: खिल जाते
1: हैं।
0: हैं। तो भाई आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहा करिए और खेलते और दौड़ते रहा करिए। आपका जो रूठना, आपका रोना मन को बहुत आहत कर देता है, बहुत अंदर से तकलीफ होने लगती है ना, कि आप खुश रहिए, है ना।
1: और दीदी
0: हाँ
1: बताइए, अब आप साइकिल के बारे में क्या बता रही थी, साइकिल की
0: बिल्कुल,
1: कहानी।
0: हाँ भाई, साइकिल आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय और पर्यावरण अनुकूल यातायात साधनों में से एक है बच्चों। साइकिल का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है।
1: अच्छा।
0: सन 1817 में, यानी 1817 में, जर्मनी के आविष्कारक कार्ल वॉन ड्राइस ने 2 महीने पहियों वाले एक वाहन का निर्माण किया था,
1: अच्छा
0: हाँ, जिसे ड्राइसिन कहा गया।
1: अच्छा
0: हाँ, इसमें पैडल नहीं थे और इसे पैरों से धक्का देकर चलाया जाता था।
1: मतलब उन्होंने ये सोचा होगा कि हम
0: हाँ,
1: कोई ऐसी चीज बनाएं जिससे हम पैदल की अपेक्षा तेजी से कहीं पहुंच
0: तेजी
1: सकें,
0: से कहीं
1: है
0: पहुंच
1: ना।
0: पाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1860 के आसपास फ्रांस में पहली बार पैडल वाली साइकिल बनाई गई। इस साइकिल में पैडल आगे के पहिए से जुड़े होते थे,
1: अच्छा।
0: और आगे चलकर बड़े आगे के पहिए जो बड़े होते थे ना, आगे के पहिए बड़े होते थे और छोटे पीछे के पहिए होते थे, जिसमें,
1: अच्छा,
0: हाँ, जिसमें साइकिल वो जो है काली एक रबर टाइप की लगी होती थी,
1: जैसे चेन लगी
0: हाँ, चेन
1: रहती
0: टाइप
1: है।
0: की वैसे, तो वो लगी होती थी। इससे क्या होता था कि चलाते तो थे, लेकिन ये बहुत प्रचार में नहीं आई, बहुत प्रचलित नहीं हुई, और ये बाद में असुरक्षित भी हुई, क्योंकि जब बहुत खींचो तो वो जो तार उसमें लगा होता था रबर टाइप का, वो प्रॉब्लम करता था, तो इसलिए फिर ये
1: अच्छा
0: सक्सेस नहीं हुई।
1: अच्छा
0: हाँ, फिर उसके बाद 1885 यानी 1885 में अंग्रेज आविष्कारक जॉन केप स्टार्ली ने आधुनिक साइकिल के समान सेफ्टी साइकिल का निर्माण किया।

0: इसमें दोनों पहियों का आकार लगभग समान था,
1: जैसे आजकल होता है,
0: जैसे था, इसे चेन की सहायता से पहिया चलाया जाता था, जैसे कि आजकल है चेन लगाते हैं ना, लगा के चलते। इसके बाद रबर की टायर, गियर, ब्रेक और अन्य सुविधाएं इसके विकास के कारण हुए।
1: मतलब कि हाँ, जो आज साइकिल है वो 1885 में उसका स्ट्रक्चर बन गया था।
0: और फिर इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए, क्योंकि जो परिवर्तन जो होता है ना वो अच्छा ही होता है, कभी अगर उसे अच्छे वे में लोगे तो अच्छा आएगा, अगर उसका गलत उपयोग करोगे तो गलत हो जाएगा,
1: बिल्कुल, है ना? हाँ, जैसे किसी भी चीज के नए नए बेटर मॉडल्स आते रहते हैं, वैसे साइकिल के भी आते रहे। और आज के टाइम में कितनी सुंदर सुंदर स्मार्ट गियर वाली हर तरीके की साइकिलें, सपोर्टर वाली, है ना?
0: आज साइकिल के बहुत प्रकार हो गए हैं, रोड साइकिल, माउंटेन साइकिल, रेसिंग साइकिल और इलेक्ट्रिक साइकिल। आधुनिक तकनीक ने साइकिल को और अधिक उपयोगी और आकर्षक बना दिया। बच्चों, जो आप साइकिल के पीछे पीछे भागते रहते हो ना, तो यही कारण है कि साइकिल सबसे अच्छी सवारी है। हम लोगों ने पढ़ा था साइकिल की सवारी हम लोगों के हिंदी के उसमें था साइकिल की सवारी, तो वो साइकिल की सवारी बहुत अच्छी सवारी थी। हम लोगों ने भी साइकिल चलाई है बच्चों, और आप तो अभी चलाने की उसमें है ही है, आपको तो एक ललक अंदर से रहती है,
1: लेकिन दीदी
0: रहता है।
1: यहाँ पर बच्चों को एक प्रिकॉशन बताना है,
0: वो क्या,
1: सवारी करिए लेकिन सावधानी के साथ, ऐसे कि आपको भी चोट नहीं लगे और आपकी वजह से किसी और को भी चोट नहीं लगे।
0: मैं समझ गई, जैसे कि
1: क्या करते हैं बच्चे, इतनी तेज चलाते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि सड़क का मोड़ आ रहा है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है या कोई आंटी पैदल चलती हुई आ रही है, और वो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना? तो सवारी कोई भी हमें चलानी है, उसमें हमें पूरा सेफ्टी का ध्यान रखना है, है ना?
0: बिल्कुल। तो भाई ये सब ध्यान में आप रखेंगे और फिर अगले कार्यक्रम की आप जो प्रतीक्षा कीजिए, हम अगले कार्यक्रम में फिर आपको मिलेंगे। हमारी घड़ी कह रही कि आपको टाटा बाय बाय कर ले। तो बच्चों, जय
1: जय हिंद।

0: अभी नन्हे मुन्ने सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
5: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
4: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
5: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
6: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। घड़ी में बज चुके हैं शाम के, जैसा रोज बजता है पर हो चुकी है शाम, और आपके दिलों की धड़कन हम बढ़ाने आ गए हैं आपका अपना सबसे कूल, सबसे एनर्जेटिक प्रोग्राम युवानी को लेकर।
1: और मैं हूं आपके साथ, आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति। और मेरे साथ हैं
0: सुधांशु। दोस्तों आ...

0: आज हम अकेले नहीं आए हैं, आज हम लेकर आए हैं एक पूरा समंदर सेहत और स्वाद का।
1: बिल्कुल सुधांशु, आज का जो ये जोश है ना, वो अलग सा लग रहा है। तुम्हारी जो आवाज में भी झलक रहा है और तुम्हारी
0: हाँ
1: एनर्जी लेवल को भी मतलब मुझे दिखाई दे रहा है।
0: बिल्कुल ज्योति, क्योंकि आज का दिन ही इतना क्रीमी और सॉलिड है ना, क्योंकि जब
1: मिल्क डे, बिल्कुल वही दूध जिसे देखकर बचपन में हम सब दूर भागते थे, पर बड़ा ही जो होता है ना, ये हमारी फिटनेस हो गई, हमारी कॉफी हो गई, हमारी चल लाइफ का सबसे बड़ा पार्टनर बन चुका है।
0: वैसे ज्योति, जब हम दूध के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है?
1: सच कहूँ तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहले मेरी मम्मी की आवाज आती है, दूध का ग्लास खत्म हुआ कि नहीं, अभी फोन छीन लूंगी।
0: लेकिन दोस्तों, लेट लेट बी ऑनेस्ट, आज का यूथ फिटनेस को लेके बहुत दीवाना है। जिम जाना है, महंगे प्रोटीन के शेक पीने हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हमारी असली देसी और सबसे बड़ा प्रोटीन पार्टनर तो हमारे फ्रिज में बैठा है भाई, द अल्टीमेट ओजी ड्रिंक, दूध।
1: बिल्कुल, दूध बोरिंग नहीं है। सोचो अगर दूध ना होता तो हमारी फेवरेट कोल्ड कॉफी का क्या होता, हमारी पोस्ट और वर्कआउट स्मूदीज का क्या होता, और वो रात को देर तक पढ़ते वक्त जब हम थक जाते हैं ना, तो जो मम्मी हमें हल्दी वाला दूध देती हैं, वो तो हमारा एकदम अल्टीमेट स्ट्रेस बस्टर होता है ना।
0: वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया पूरी दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहें अगर, तो बुरा नहीं है। ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 24% दूध अकेले हमारा भारत प्रोड्यूस करता है। इसके लिए एक जोरदार चेयर तो बनता ही है।
1: बिल्कुल सुधांशु, मुझे पता है एक बचपन की याद जो है वो याद आ गई है।
0: हाँ
1: याद है
0: हाँ
1: जब हम स्कूल से आते थे और दादी या
0: हाँ
1: नानी हमें दूध रोटी या फिर दूध मखाना देती थी,
0: हाँ
1: तब लगता था क्या टॉर्चर है, पर आज वही सबसे कंफर्ट फूड लगता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हमारी रोजमर्रा के जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। इतना खास है कि इसके सम्मान में पूरी दुनिया एक विशेष दिन मनाती है। जी हाँ दोस्तों, हर वर्ष 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी मिल्क डे के रूप में नामित किया। इसका उद्देश्य था लोगों को दूध के पोषण मूल्य और हमारे जीवन में उसकी महत्ता के बारे में जागरूक करना।
0: दोस्तों, दूध सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य, पोषण और विकास का एक मजबूत आधार भी है। बच्चों की बढ़ती उम्र हो, युवाओं की ऊर्जा हो, या बुजुर्गों की सेहत, दूध हर आयु के वर्ग के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। हमें ये जो दिन है, वर्ल्ड मिल्क डे, याद दिलाता है कि मिल्क इंडस्ट्री लाखों लोगों की आजीविका का एक स्रोत है और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यही कारण है कि इस दिवस से जुड़ने वाले देशों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रम, जैसे कि जागरूकता अभियान, संगोष्ठियां और विशेष गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, ताकि लोगों को संतुलित आहार में दूध के महत्व के बारे में जानकारी मिल सके।
1: बिल्कुल दोस्तों, चाहे आप 16 के हों या फिर 60 के, आपकी हड्डियों को कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत हमेशा होती है। अगर कैल्शियम कम हुआ तो वही जिम में हैवी वेट्स कैसे उठाएंगे हम लोग। और एक और क्रेजी फैक्ट बताऊं आपको, जब आपको बहुत ज़्यादा तीखा लगता है ना, जब आप मिर्ची खा लेते हैं और आपको
0: हाँ
1: तीखा लगने लगता है, तो पानी पीने से ज़्यादा जो चीज़ कारगर होती है वो होती है एक घूंट ठंडा दूध। आपकी ये जो तीखीपन का जो होता है ना, वो उसका इलाज कर देता है, क्योंकि दूध में होता है कैसिन नाम का एक प्रोटीन जो मिर्ची के इफेक्ट को कम कर देता है।
0: एक बहुत ज़रूरी बात, आज वर्ल्ड मिल्क डे पर हमें उन लाखों किसानों और डेयरी वर्कर्स को थैंक यू कहना चाहिए जो सुबह 4 बजे उठकर मेहनत करते हैं, ताकि हमारी सुबह की चाय और कॉफ़ी तो कम से कम परफेक्ट हो ही जाए।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों आज के दिन एक प्लेज लेते हैं, अगर जंक फूड को थोड़ा साइड रखेंगे और अपनी डाइट में रोज 1 ग्लास दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स जरूर शामिल करेंगे, स्वस्थ रहेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है ज्योति, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही एनर्जेटिक गाने के साथ जो आपको थिरकने पर मजबूर कर देगा। चिल करिए और सुनिए ये सुंदर सा ट्रैक।

0: ज्योति एक बात बताओ, तुम्हें वो बचपन का दिन याद है जब पापा के नए स्कूटर पर स्क्रैच लगाने के बाद हम घर में चुपके से धीरे से दरवाजे के पीछे खड़े हो जाते थे?
1: अरे बिल्कुल सदाजू, और वो दिल की धड़कनें कितनी तेज चलती थी ना, जैसे कोई बुलेट ट्रेन हो। लेकिन मजेदार बात तो देखो ना, डांट के बाद भी मम्मी चुपके से हाथ में पराठा भी थमा देती थी। हाँ। कि लो खा लो, भूखे मत रहो।
0: आज का दिन बेहद बेहद बेहद खास है, क्योंकि आज है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, यानी हमारे सुपर हीरोज, हमारे माता पिता का दिन। माता पिता जिनके होने से हमारे घर की दीवारें घर होती हैं। ज्योति, तुम्हें नहीं लगता कि हम बड़े होने की जल्दी में इतने मसरूफ हो गए हैं कि उनके सफेद होती हुई जुल्फों पर हम ध्यान भी नहीं दे पाते?
1: बिल्कुल एकदम, तुमने मेरे दिल की बात कह दी सुधांशु। वो कहते हैं ना, पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप का दिल ना जीता तो वो जीत हार के बराबर होती है।
0: हाँ।
1: सुधांशु, माँ का प्यार ना सबको दिखता है, मतलब वो एक्सप्रेसिव होती हैं, वो रो भी देती हैं, हमें गले भी लगा लेती हैं। लेकिन जो पापा होते हैं ना, उनका प्यार इतना सीक्रेट एजेंट जैसा क्यों होता है?
0: अरे ज्योति, पापा लोग तो एकदम नारियल होते हैं भाई, ऊपर से सख्त, अंदर से एकदम पानी जैसे। तुम्हें याद है जब हम लेट नाइट घर आते थे या आते हैं, तो पापा अगर जग भी रहे होते हैं तो हमें देखते ही अपना मुंह कंबल से ढक लेते हैं, जैसे लगता है कि वो जग ही नहीं रहे हैं, सो रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये तो हर घर की कहानी है, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें वो याद है जब पैसे मांगने होते हैं तो पैसे हमें माँ के जरिए मिलते हैं, जब
0: अपनी,
1: हाँ, पापा हमसे कहते हैं जाओ अपनी माँ से ले लो, लेकिन असल में बजट तो पापा ही पास करते हैं।
0: बिल्कुल, माँ अगर हमारी ढाल है तो पापा उस ढाल को थामने वाली ताकत भी तो है। वो खुद फटे जूते पहन लेंगे लेकिन हमारे पैर में ब्रांडेड शूज देखना चाहते हैं।
1: बिल्कुल, आज का दिन सिर्फ विश करने का नहीं है दोस्तों, आज घर जाकर या फिर फोन करके उन्हें थैंक यू भी बोलना है, उस हर एक डांट के लिए जिसने हमें सुधारा और हर उस एक दुलार के लिए जिसने हमें संभाला।
0: ज्योति, आजकल डिजिटल जमाने में एक बहुत ट्रेंड देखने में आ रहा है, तुम्हें पता है कौन सा है?
1: कौन सा ट्रेंड?
0: अरे वही रोज रिवर्सल, मतलब रोल रिवर्सल। हाँ, वाला। बचपन उन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया और आज हम उन्हें सिखाते हैं मम्मी सोशल मीडिया पर स्टेटस ऐसे नहीं, ऐसे लगाते हैं। फिर वहीं बगल में अगर पापा खड़े हैं, किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें बताना होता है कि पापा पहले ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं तब ऐसे होता है।
1: बिल्कुल, ये बहुत क्यूट भी लगता है ना। पता है तुम्हें, मेरी मम्मी तो कोई रील या फिर कोई शॉर्ट वीडियो देख रही होती हैं तो मेरे से पूछें, अरे बेटा ये लड़की गायब कैसे हो गई और ये डॉगी बोल कैसे रहा है, मतलब फिर मुझे बताना होता है उनको, अरे मम्मी ये तो AI है।
0: यही तो खूबसूरती है, वक्त बदल गया है लेकिन उनका हमारे ऊपर भरोसा नहीं बदला है। वो आज भी जब कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी सिखा देंगे।
1: सच में सुधांशु। लेकिन दोस्तों, इस भागदौड़ में कहीं हम चिड़चिड़े तो नहीं हो जाते जब वो एक ही बात तीन बार पूछते हैं तो? हमारा पारा एकदम चढ़ जाता है। जरा सोचिए, जब हम बचपन में एक ही चीज को कई बार पूछते थे, ये क्या है, वो क्या है, मतलब हम कई बार पूछते थे ना, 100 बार भी अगर हम पूछते थे तो वो चिढ़कर जवाब नहीं देते थे, वो शांति से हमें समझाते थे।
0: गहराई वाली बात है ज्योति। तो आज प्रॉमिस कीजिए ना, अपने पेरेंट्स को थोड़ा और वक्त देंगे और थोड़ा सब्र देंगे। दोस्तों, आज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि माता पिता भगवान का दिया हुआ वो अनमोल तोहफा है जिनकी जगह दुनिया में कोई दौलत नहीं ले सकती।
1: बिल्कुल, वो हमारे आसमान के वो सितारे हैं जो तब भी चमकते हैं जब हमारी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। अगर आज आप उनसे दूर हैं तो बस एक कॉल घुमाइए, आपकी एक हेलो उनकी उम्र बढ़ा देती है।
0: और अगर आप उनके पास हैं तो आज रात उनके थोड़ा सा पैर दबाएं या उन्हें एक जादू की झपकी देकर कहिए थैंक यू पापा या फिर थैंक यू मम्मी मेरे लाइफ में होने के लिए। तो चलिए इस खूबसूरत सफर को और आगे बढ़ाते हैं एक खूबसूरत कहानी के साथ।

0: क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। दोस्तों, हमें भी अपनी जीवन में इतनी सारी असफलताएं जी हैं कि न जाने क्यों हर हार हमें व्यक्तिगत रूप से बहुत ही दुख देती है। खैर, आरसीबी ने नया इतिहास रचा है, उसको बहुत बहुत बधाई।
1: लेकिन दोस्तों, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि आरसीबी ने 18 साल के बाद ये बड़ा नाम किया है और तीसरी टीम बनी है क्या कहते हैं आईपीएल में, कि उसने पहले नंबर पे चेन्नई है, फिर मुंबई इंडियंस है, उसके बाद आरसीबी ने लगातार बैक टू बैक ट्रॉफी उठाई है।
0: सुधांशु

0: बधाई।
1: लेकिन दोस्तों आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि आरसीबी ने 18 साल के बाद ये बड़ा नाम किया है और तीसरी टीम बनी है क्या कहते हैं आईपीएल में, कि उसने पहले नंबर पे चेन्नई है, फिर मुंबई इंडियंस है, उसके बाद आरसीबी ने लगातार बैक टू बैक ट्रॉफी उठाई है।
0: सुधांशु,
1: हाँ
0: हर खिलाड़ी अपनी आंखों में कितनी सारी उम्मीदें लेकर आता है ना,
1: सही बात है ज्योति, सही बात है।
0: लेकिन हमारे और ये जो सभी खिलाड़ी होते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक
1: छोड़ेंगे
0: छोड़ेंगे
1: नहीं,
0: नहीं।
1: सही बात है। लेकिन ज्योति अक्सर हम
0: हाँ।
1: देखते हैं कि जब दो टीम के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें से तो ये तय होता ही है कि एक ही टीम जीतेगी और एक टीम को हार का सामना करना ही पड़ेगा। वहाँ पर मायने बहुत सारी चीज़ें रखती हैं, है ना। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी जीतने वाली टीम, मतलब जैसे हम बहुत यूटोपिया बनाते हैं कि जो व्यक्ति सफल हो गया अपने जीवन में वो हमसे बहुत शानदार था, ऐसा नहीं होता है अक्सर। अगर हम अपने जीवन में इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखें तो बात ये होती है ना ज्योति कि जीतने वाली टीम या जीतने वाला व्यक्ति उतना भी शानदार नहीं होता जितना हम मान बैठते हैं,
0: बिल्कुल।
1: और हारने वाली टीम उतनी भी ख़राब नहीं होती है जितना हम कह देते हैं, कि बहुत हल्के में कहते हैं बात कि अरे इन तो खेल ही नहीं पाए, ये तो कुछ कर ही नहीं पाए, और कर लिए होते तो जीत ना जाते। दरअसल उस मैदान में उस जगह पर हो करके उस प्लेटफॉर्म पे हो करके चीज़ों को कैसे करना होता है, और एक कप्तान बतौर कप्तान अगर आप पूरी टीम को लीड कर रहे हैं तो फिर उसका प्रेशर कैसा होता है, चाहे वो फील्ड का मैदान हो, है ना, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे हॉकी का मैदान हो, चाहे अपने जीवन का ही मैदान क्यों ना हो, है ना। जीवन के मैदान में भी हम कभी हमें हर व्यक्ति को ये मौका मिलता है कि वो अपने जीवन का कप्तान होता है और वो अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को बहुत सारे लोगों को लेके चलता है, लीड करता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी ये कहना बहुत आसान होता है कि अरे ये तो खेल ही नहीं पाए, अरे ये तो झेल ही नहीं पाए, कहना आसान है। पर दोस्तों बात ये है ना कि हम जितनी खुशी से किसी की जीत का सम्मान करते हैं हमें उससे ज़्यादा सहृदय होकर के किसी की हार का भी सम्मान करना चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: है ना। क्योंकि नहीं तो यही बात बार बार सही होगी कि मुस्कुराइए मेरी नाकामयाबियों पर, हक है आपको मुस्कुराने का।
0: बहुत, कितनी अच्छी बात कही सुधांशु तुमने। लेकिन इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो हारने वाला व्यक्ति होता है ना,
1: हाँ
0: वो जब दोबारा आता है ना, तो वो और मजबूत बनकर वापस
1: सही
0: आता है,
1: बात है।
0: क्योंकि उसके अंदर वो एक चाह हो जाती है ना, कि जब वो एक किसी चीज़ को पाने वाला होता है और फिर वो उस चीज़ को नहीं पा पाते हैं, तो उसके मन में ये रह जाता है कि कहाँ मुझसे गलती हो गई, कहाँ मैंने कमी कर दी कि मैं उस चीज़ को नहीं ले पाया।
1: सही बात है। और ज्योति देखो ऐसा होता है ना कि हर टीम का हर व्यक्ति का अपना एक दौर होता है, और उस दौर के बाद हर सिचुएशन के बाद एक समय ऐसा आता है कि जो चीज़ें नहीं सही हो रही होती हैं एक समय के बाद सही होने लगती हैं, ठीक है। अब कोई भी टीम उठा के तुम देख लो, हर टीम ने संघर्ष किया है तब जाके इतिहास रचा है। तो वैसे ही हर व्यक्ति के लिए है, हर व्यक्ति के जीवन में पर्सनल लाइफ के लिए भी है, कि अगर आप लड़ेंगे, वही वाली बात जो थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब
0: तब
1: तक
0: तक
1: छोड़ेंगे
0: छोड़ेंगे
1: नहीं,
0: नहीं।
1: और अगर आपने छोड़ दिया
0: हाँ।
1: तो फिर ये मान लीजिए कि ठीक है वाली स्थिति रहेगी। पर अगर आपको कुछ करना है, नया करना है, जैसे कि आरसीबी कर रही है 18 साल बाद बैक टू बैक दो ट्रॉफी, तो उसके लिए तो भाई लड़ना पड़ेगा।
0: तो आइए इसी के साथ सुनते हैं अपने प्रोग्राम का ये नेक्स्ट ट्रैक।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुधांशु, अभी आते वक्त मैंने कटरा वाले चौराहे पर देखा, भाई साहब समोसे की दुकान पर ऐसी भीड़ लगी थी जैसे कोई मेला लगा हो। इस बदले हुए सुहाने मौसम में हमारे शहर के लोगों का मिजाज भी लगता है थोड़ा चटपटा सा हो गया है।
5: अरे ज्योति, तुम सिर्फ समोसे ही देखती आई हो लगता है। जरा यूनिवर्सिटी की रोड पर अगर तुम निकलो तो देखो कि टी स्टॉल पर कुल्हड़ खनक रहे होते हैं। रील्स बनाने वाले जो टोलियां होती हैं एकदम एक्टिव हो चुकी हैं, और मौसम ऐसा है कि जो लड़का रोज देर से सोकर उठता था, जैसे कि मैं ही हूँ, सुबह सुबह वो भी अब कंपनी बाग में घूमने के लिए परेशान होता है, ललायित होता है। शहर में हवा क्या बदली, हर नुक्कड़ पर एक नई महफिल जम गई है।
4: बिल्कुल, यही तो हमारे शहर की खासियत है, जिंदा दिली। वैसे आज इस महफिल में जहाँ हर तरफ इतनी रौनक और नयापन है, क्यों ना हमारे युवा दोस्तों को एक ऐसे इंसान की कहानी से रूबरू कराया जाए जिसकी ज़िंदगी सादगी और तेवर से लबरेज थी और बेफिक्री जैसी खनक भी थी।
5: वाह वाह वाह, क्या पॉइंट जोड़ा है ज्योति। दोस्तों, शहर के इस चुलबुले मिजाज के बीच वक्त है हमारे बेहद ख़ास सेगमेंट प्रेरणा पुंज का, और आज हम बात करेंगे भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी की। आज के दौर में जब कोई छोटी सी कुर्सी भी पा जाता है ना, तो उसका रौब देखिए फिर देखते ही बनता है। लेकिन संजीव रेड्डी देश के इतिहास के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें बिना किसी विरोध के, आप अपनी भाषा में कहिए तो निर्विरोध तरीके से उनको राष्ट्रपति चुना गया था।
4: सोचिए ना दोस्तों, आज एक छात्र संघ के चुनाव में या फिर मोहल्ले की प्रधानी में कितनी खींचतान होती है, और वहाँ देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए पूरा देश एक नाम पर राजी हो गया। लेकिन संजीव रेड्डी जी हमेशा ऐसे नहीं थे। उनके जीवन का एक ऐसा किस्सा जो हर उस युवा को सुनना चाहिए जो लाइफ में एक दो बार फेल होने पर उदास होकर बैठ जाता है।
5: बिल्कुल, यह साल 1969 की बात है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और बेहद बड़े मुकाबले में हार गए। अब राजनीति में ऐसी हार के बाद लोग अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं या दूसरों पर कीचड़ उछालने लगते हैं। ये हम अपने सामान्य जीवन में भी करते हैं ज्योति। लेकिन संजीव रेड्डी जी ने क्या किया, ये जानने लायक बात है। उन्होंने बड़ी शांति से अपनी हार मानी और अपना बोरिया बिस्तर समेटा और वापस अपने गाँव जाकर खेती किसानी करने लगे, एकदम कूल होकर।
4: यही तो असली स्वैग है। उन्होंने साबित किया कि पद छूटे तो छूटे, इंसान की अपनी ज़मीन और अपने सिद्धांतों से पैर नहीं हटना चाहिए। और नियति का खेल देखिए, जो कुर्सी उनसे 1969 में छूट गई थी, ठीक 8 साल बाद यानी 1977 में पूरा देश खुद चलकर उनके पास आया और उन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति बना दिया गया।
5: और

0: राष्ट्रपति बनने के बाद का किस्सा तो और भी मज़ेदार है। जब वे राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई, मुझे इतने बड़े महल की और ठाट बाट की तो आदत ही नहीं है। उन्होंने अपनी सैलरी में से सीधे 70% की कटौती कर दी और एक छोटे से मकान में रहने की जिद करने लगे।
1: बिल्कुल दोस्तों, अगर हम इनके जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालें तो इनका जन्म जो है वो 19 मई 1913 को हुआ था
0: और इनका जन्म स्थान था अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। अगर हम पहचान की बात करें कि इनकी भारत में आइडेंटिटी क्या है, तो भारत के छठे राष्ट्रपति थे और इसी के साथ ही आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके जीवन का मूल मंत्र ये था कि भाई देखो, जो जीवन है उसको जितना सादगी से जियोगे उतना ही आपको उसमें आनंद आएगा। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि आप ईमानदारी से कितना जीवन जी रहे हैं, आप अपने प्रति और अपने देश के प्रति कितने ईमानदार हैं। और सबसे आखिरी चीज़ वो ये है कि वो किसान के बेटे थे और किसान के बेटे होने के नाते मतलब इसका तो प्रभाव था ही, साथ ही साथ वो ज़मीन से बहुत जुड़े हुए व्यक्ति थे, है ना। अगर उनको, जैसा अभी हमने बात करी आगे ज्योति की, अगर उन्हें कोई हार मिल भी गई, बहुत बड़ी हार हो या बहुत छोटी हार हो, तो कभी मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, बहुत डिप्रेस्ड भी नहीं हुए कि अरे भाई ये तो हमसे होएगा ही नहीं, हमें नहीं करना ये सब। तो वो क्या करते थे, सीधे ज़मीन की तरफ लौटते थे,
1: अपनी हार को एक्सेप्ट करते थे और अपनी रूट्स की तरफ जाते थे, जहाँ उनकी उनका दिल लगता था
0: और जहाँ से उनको एक नए तरीके से काम करने की एनर्जी मिलती थी, अपने को बहुत एनर्जेटिक फील करते थे। और दोस्तों, अंत में हम अगर बताएं कि उनकी मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु आज ही के दिन यानी 1 जून 1996 को हुई थी।
1: तो दोस्तों, शहर के इस खुशनुमा मौसम का मजा लेते लेते नीलम रेड्डी जी के ये बात ज़रूर सीखें इनसे कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। जब वक्त ख़राब हो तो गांव जाकर खेती करने का हौसला होना चाहिए, और जब वक्त बुलंद हो तो राष्ट्रपति बनकर भी ज़मीन पर रहने की सादगी होनी चाहिए।

0: तो दोस्तों, हम हर रोज़ अपने कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं और हमारा कल का सवाल था कि भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार निजता के अधिकार की गारंटी देता है। तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान में निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना गया है।
1: दोस्तों, अगर हम आज के प्रश्न की बात करें तो आज का प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। आप हमें अपना उत्तर हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे। हमारा नंबर है 8004926250।

0: ज्योति, जैसा कि हम देख रहे हैं मौसम बहुत बदल रहा है, कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंडी हो रही है, कभी बरसात हो रही है, तो ऐसे में मौसम के भी मौसम विभाग की तरफ से हमें बहुत सारी एडवाइजरी दी जा रही है कि भाई अगर बहुत ज़्यादा कहीं बारिश हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ हवा चल रही है तो आप कैसे सुरक्षित स्थान पर रह सकते हैं, है ना? जैसे अब
1: खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं,
0: हाँ खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। और इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि जैसे हम गर्मी के समय में बहुत ट्रिप बनाते हैं कि हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, तो ट्रिप बनाने से पहले अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है, कोई एडवाइजरी है, तो उसको आप फॉलो करिए। और फॉलो करने के साथ साथ उसकी उसका सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि आप जो है आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे अपने परिवार के लिए। तो दोस्तों, चलते चलते अपने कार्यक्रम में ये आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा। इस छोटे से विचार को अपने साथ लेके जाइए कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। तो दोस्तों, इसी के साथ हमको यानी सुधांशु को
1: और मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
2: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को हैं, बाप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: Of our shared future.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त

0: भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। बीडीएम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। तो 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे राधे श्याम पांडे से लोक भाषा कविता पाठ, साथ ही रामकृपाल यादव और साथियों से लोकगीत। हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की वार्ता होगी महात्मा गांधी का प्रकृति दर्शन 7:31 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8 बजे और रात 10 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में भूपेंद्र कुमार से भजन और गीत सुनिएगा 7:45 पर और 8:30 पर कार्यक्रम कानून और हम, इसमें सुनिएगा अधिवक्ता रमेश कुमार से की गई बातचीत कैसे कराएं जमीन की रजिस्ट्री, और रात 9:30 पर कार्यक्रम कहकशा होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 10:30 पर पंडित उमा शंकर का सितार वादन। तो ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात 10 बजे खेल दर्पण, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर SD मैकार्टी से की गई बातचीत, विषय होगा दुधारू एवं गाभिन पशुओं की देखभाल। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर युगांतर पांडे की वार्ता होगी गर्मी के मौसम में शिशुओं की देखभाल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा सुबह 7:31 पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन, दोपहर 12:15 पर पंडित गोपाल दास का क्लेरिनेट वादन और रात 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज का समय होगा 8:45। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9 बजे, 11:30 पर और रात 8 बजे।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर सोनू निषाद और शाम 7:45 पर शिवानी केसरवानी से भजन और गीत सुनिएगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में 10:05 पर कलाकार होंगी वर्षा तिवारी और धीरज कुमार और साथी। दोपहर 2:30 पर कलाकार होंगे विनीता तिवारी, विकास श्रीवास्तव और वत्सला मनोहर देवधर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग, 10:30 पर फिल्म कार्यक्रम एक ही कलाकार।

लगातार से दिन में 11 बजे सुनिएगा। 12:30 पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुनिएगा। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल की बहनें सुनेंगी उमा दीक्षित की वार्ता, ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियां, साथ ही प्रतिमा श्रीवास्तव से लोकगीत। 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में जगदीश यादव और साथियों से लोकगीत सुनिएगा। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर होगा। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे बाबूलाल दिवाकर और साथियों से लोकगीत, साथ ही रामायण पाठ भी होगा। 7:30 पर संस्कृत कार्यक्रम और 8:30 पर कार्यक्रम सबरस होगा। तो ये थे हमारे कल के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। राधेश्याम हमें सूचित करते हैं कि सरिता देवी, जो कि 10 मार्च 2026 को शाम 3 बजे से गौसपुर थाना एयरपोर्ट से ये लापता हैं। इनकी उम्र जो है 32 वर्ष है, लंबाई 5 फीट 6 इंच है, रंग गोरा है। इनके बारे में कुछ भी पता चले तो कृपया इस पते पर सूचित करें, ग्राम कटहुला गौसपुर थाना एयरपोर्ट। एक दूसरी सूचना प्राप्त हुई है धर्मेंद्र पाल हमें सूचित करते हैं कि शिवानिका पाल 8 मार्च 2026 से शाम 7 बजे से ये लापता हैं, पीपल गांव थाना एयरपोर्ट से। इनके इनकी उम्र 21 वर्ष है, लंबाई 5 फीट 3 इंच है, इनका रंग गोरा है। इनके बारे में कुछ भी पता चले तो कृपया इस पते पर सूचित करें, आनंद नगर ग्राम पीपल गांव थाना एयरपोर्ट प्रयागराज। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। 6:20 होने को हैं। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी म्यांमायाः राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन च नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान् सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता संधिः CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। अनेन भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने प्रतिशतं 98% विपणौ शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षपूर्तौ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अनया योजनया पथव्यवसायिभ्यः प्रगतेः नूतनावसराः प्रदत्ताः। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं विधाय 35 नूतन मंत्रिभ्यः मंत्रिमंडले स्थानम् अयच्छत्। अपि च हांगकांग नगरे आयोजितायां 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्ण पदकानि समेत्य 19 पदकानि विजितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी म्यांमायाः राष्ट्रपतिः ऊ मिन आउ लाइन च अद्य नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमा भारत देशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः संबंधानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्य अनन्तरं विदेश सचिवः विक्रम निसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय सहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है। ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द
0: रीजन। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता संधिः CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं संधिः देशद्वयस्य आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। एकस्मिन् राष्ट्रीय दैनिक पत्रे प्रकाशिते लेखे श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं निधिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि

0: पञ्चचत्वारिंशत् सहस्र त्रिचत्वारिंशत्यधिक शतं कोटि रूप्यानि आसत्। एकीकृत वस्तु सेवा करस्य संग्रह एकपञ्चाशत् सहस्र नवत्यधिक नवशतं कोटि रूप्यकाणि आसीत्। सर्वोच्च न्यायालयेन पञ्च न्यायाधीशानां नियुक्तिः कृता। अनेन सहैव मुख्य न्यायाधीशं समेत्य न्यायाधीशानां संख्या सप्तत्रिंशत् संवृत्ता। विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सामाजिक संचार पटले अवोचत यत् राष्ट्रपतिना मुख्य न्यायाधीशस्य परामर्शानन्तरं सर्वोच्च न्यायालये पञ्च नूतन न्यायाधीशानां नियुक्तिः कृता। अवधेयं यत् केन्द्र प्रशासनेन विगते मासे एकम् अध्यादेशं प्रस्तूय विधो संशोधनं कृतमासीत्। हांगकांग नगरे आयोजितायां द्वाविंशतितमायां एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्ण पदकानि 5 रजत पदकानि 4 कांस्य पदकानि च समेत्य 19 पदकानि विजितानि। पदकतालिकायां भारतेन द्वितीयं स्थानं प्राप्तम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना द्वाविंशतितमायां एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां 10 स्वर्ण पदकानि समेत्य 19 पदकानि प्राप्तवद्भ्यः भारतीय दलेभ्यः वर्धापनानि प्रदत्तानि। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् इमे युवानः भारतस्य कीर्तिं विश्वस्तरे प्रापयितुं निरन्तरं प्रयत्नं कुर्वन्ति। एतेषाम् उज्ज्वल भविष्याय प्रधानमन्त्रिणा शुभकामनाः प्रदत्ताः इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम। आहो रानू भैया, का हाल चाल बाहो?
1: ठीक है वह हो बैजू भैया, खेती किसानी के तो हाल समाचार देखते हैं।
0: अरे भाई, गर्मी जवन पड़त बने,
1: हाँ हाँ
0: भाई खेती किसानी काम बात भाई वही करा कि जब का कहा थे ठंडाई जाए।
1: एकदम सही कहे भैया।
0: भाई मुड़े में अनौछा अनौछा बांधे रहा ना, घामे में निकरबत तबियत तलबे तल जरूर हो जाए भैया।
1: ये तो सही कहे हो।
0: हम कहीं देखा इस समय में न,
1: हाँ हाँ
0: खरीफ के जोन मुख्य फसल धान बा है,
1: हाँ हाँ हाँ
0: ओकर नर्सरी किसान भाई डालत बाटे, कुछ जने अपन तैयारी भी करत बाटे न,
1: हाँ हाँ
0: देखा
1: हाँ
0: जैसे पानी के सुविधा बा है।
1: ये तो एकदम सही कहे भैया। अच्छा कुछ जने डालो दिए हैं हो।
0: हाँ, जेकरे पानी के सुविधा भैया।
1: हाँ हाँ
0: अब भाई ना ही पानी के सुविधा बा तो देर से डाली ही, बारिश के भरोसे बा, मानसून के भरोसे बा।
1: हाँ हाँ
0: हाँ,
1: हाँ
0: वैसे भी काका दिन भाई पानी के बहुत, बिना धान पानो केरा पानी के चेरा, बिना पानी के तो होता ना है।
1: ये तो एकदम
0: तो
1: सही
0: भैया
1: कहे।
0: हो धान के नर्सरी की तैयारी करते हैं, तो भैया खेत जहाँ ना धान के नर्सरी डाले कि वह बेहन
1: हाँ हाँ
0: ओका
1: हाँ
0: भैया बढ़िया से तैयार करें। हाँ,
1: हाँ हाँ
0: अच्छे से
1: हाँ
0: तैयार करें, ओका शोधन कैलें जौन बाटे
1: हाँ हाँ
0: है।
1: हाँ
0: अब नर्सरी डाले तो जब ओकर जौन बिया बा ओका भी शोधन कैलें, जौने से कौनो भी रोग दोख बेरामी ना होए।
1: एकदम
0: कैसे
1: सही
0: जब
1: कहे।
0: बेहन ही रोग ही हो जाए
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: फसल कहाँ से बढ़िया होए
1: एकदम
0: भाई।
1: सही कहे हो बैजू भैया। एक बात और रहे हो, देखे जौन काम से बेहन बढ़िया होता, वो बेहन के जौन फसल होता वो भैया तई मजबूत होता,
0: सही कहे
1: रोग
0: भाई।
1: बियाद उमन कम लागत
0: अब
1: है
0: ये
1: भैया।
0: रोग भी कम लागत तबई होए जब नर्सरी से ही ओकर बढ़िया देखभाल होए,
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: अच्छे से तैयार होए, कि जब खेते में जाए तो समय से लगे, समय से ओकर पानी खाद पानी सब मिले, तबई भैया होए।
1: एकदम सही कहे भैया।
0: तो
1: अच्छा
0: ये
1: एक
0: काम।
1: बात और रहे हो बैजू भैया, तब तक किसान भैया बहनी अरे चाहते हैं अपन माटी की क्यों खेते की माटी है
0: हाँ हाँ
1: ओके
0: हाँ
1: भैया बला के भी ले जाए के भैया ओके चेक करा लें
0: हाँ
1: ओमन।
0: जांच
1: हाँ
0: कराए भाई।
1: हाँ ओमन जांच करा लें कौन गुण दोष है
0: पता
1: उसे भी
0: चल
1: पता
0: जाए।
1: चल जाए भैया। तो उसे ये है कि जब खाद उद डाले के समय रहे तो उही हिसाब से अपन डले हैं।
0: अब सही कहा भैया। साथे साथे अगर मान ला हरी खाद बनावे बरे ऐसा नई ढैंचा ये सब लेहे हुई
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: भाई देखे में आवा

0: लगावे के पहले ओकर जोताई के सड़ाई दे
1: हाँ हाँ हाँ
0: या
1: हाँ
0: मूंग मूंग बोए हुए वो तोड़ के सड़ाई सकत है,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: भैया
1: हाँ
0: बढ़िया खाद का काम करे जोन बा।
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: दूसर बात, धान के लिए पानी बहुत जरूरी बा, पानी तभी टिके भैया जब मेड़ दुरुस्त होए।
1: एकदम सही कहे। तो मतलब किसान भैया बहनी हरन के चाहे कि आपन मेड़ों को भाई देखभाल कर ले।
0: भाई मेड़ दुरुस्त न रहे ना, जितना
1: हाँ हाँ
0: कमाई माटी रहे उपजाऊ, पता चली बारिश भाई पानी बढ़ा तो बह गया दूसरे खेते में।
1: दूसरे खेते में दूसर के वो आनंद ले हो।
0: भाई वो नहु किया ना ही दुरुस्त बतो नहु को बढ़ गए। तो जरूरी बा कि सबके वो अपन मेड़बंदी बढ़िया से कैले भाई
1: हाँ हाँ
0: किसान
1: हाँ
0: भाई, तब भी फसल। और एकरे अलावा जायत के जौन फसल ले हुए,
1: हाँ
0: नेनुआ
1: हाँ
0: भिंडी करेला लौकी, हाँ अगर ये
1: हाँ
0: सब टूटत बा भाई तो का बाजार ले जाए, 2 पैसा का आमदनी करे के
1: करे
0: चाहे।
1: करे। अच्छा एक बात और रहे हो बैजू भैया, देखा बाजारे ले जाए तो भैया देखा छाहे छाहे लग जाए हूँ।
0: हाँ संझा सवेरे तोड़े
1: हाँ
0: होकर ताजा, तो भाई बाजार तो सवेरे लाई जाते मंडी पहुँचाई देते
1: हाँ
0: या खुद बेचता है, तो भाई ये संझा के
1: हाँ हाँ
0: भाई
1: हाँ
0: गर्मी से बचे के बा, पानी हमेशा कुछ न पियत रहे के बा,
1: एकदम सही कहे
0: पानी की
1: भैया।
0: कमी ना हो चाहे।
1: हाँ हाँ हाँ अच्छा साथे साथे भैया देखा है वक्त खेते में भैया काम से खीरा ककड़ी यह है हरी
0: हाँ
1: सब्जी यह है उहू के सेवन करत हैं तो वह
0: काहे
1: बहुत
0: ना कर
1: फायदेमंद
0: भाई,
1: है।
0: लेकिन हर चीज समय से। और दूसर
1: हाँ
0: बात भैया, हो बात चलत बा का कहते खेती किसानी के, तो अपन किसान भाई खेती किसानी के साथे साथे पशुपालन का भी काम करते
1: हाँ
0: ना।
1: हाँ हाँ
0: अब आजकल देखा हो दुग्ध व्यवसाय बहुत तेजी से फैलत बा, हम तो हमारे सबके गांव में ना हर
1: हाँ
0: किसान भाई एक दो गाय रखे हैं भैया, अब जगह जगह डेयरी खुल गई हैं, ले जाते हैं दूध बेच के भैया 2 पैसा का आमदनी भी हो जात
1: कह
0: बाटे।
1: गए हो बैजू भैया। तो अच्छा आज 1 जून है हो।
0: हाँ तो आज देखा विश्व दुग्ध दिवस है,
1: हाँ हाँ हाँ
0: ये विश्व दुग्ध दिवस जोन बा अपन जोन संयुक्त राष्ट्र संघ बाटे है
1: हाँ हाँ
0: ओकर
1: हाँ
0: एक शाखा है खाद्य और कृषि संगठन ना,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ हाँ
0: ओकरे तहत मनाए जाते है कि पूरी दुनिया में दूध के भोजन में का महत्व बाटे
1: हाँ
0: हाँ।
1: हाँ हाँ
0: और साथे साथे डेयरी डेयरी उत्पाद डेयरी उद्योग के बारे में जागरूकता होए
1: हाँ हाँ ओकर कैसे बढ़ावा
0: के
1: मिले वो किसान भैया बहनी हरे
0: हाँ
1: ओकर कैसे लाभ लेंगे हैं
0: लाभ ले हैं
1: इहू के काम से बारे में भैया बतावा
0: ई
1: जात
0: सब
1: हूँ।
0: के बारे में ई मनावा जात है 1 जून के।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ हाँ
0: किसान भाई भाई देखा आज सशक्त भी हो बाटे, दूध बेचत है ना।
1: हाँ
0: और तो
1: हाँ
0: भैया हो दूध का बड़ा महत्व तो भोजन में लड़कियन के तो बहुत जरूरी हो, तो मुने एक
1: हाँ
0: बात और रानू भैया के दूध शुद्ध हो चाहे तुम्हारे तो घरे को हो तो ज़्यादा निक बा,
1: एकदम
0: नहीं
1: सही कहे।
0: आजकल देखा नकली भी दूध मिल जात बा
1: हाँ हाँ
0: तो
1: भैया
0: भाई नुकसान भी कई जात है।
1: हाँ
0: तो ये जरूरी बा कि दूध शुद्ध हो विश्वसनीय हो,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: भैया हो दुग्ध के महत्व है ये बात है। विश्व दुग्ध मनावे दिवस मनावे के पीछे यही बात कि सबको भाई दूध के महत्व को समझें,
1: हाँ
0: और
1: हाँ हाँ
0: खुद अपन भाई गाय पालें भैंस पालें जौन हो
1: हाँ हाँ
0: जानवर,
1: हाँ
0: तो उसे दूध निकालें तो शुद्ध भी मिले।
1: एक बात और रहे हो बैजू भैया देखे अगर घरे में भैया जैसे गाय और पशु प्राणी हैं तो उसे ये है कि भैया कुछ खादों निकली आवत था वो
0: काहे ना
1: खेते में
0: कहे
1: भैया कर्म से होकर उपयोग हो जाता।
0: भाई हर चीज जरूरी बात है कहा
1: हाँ
0: कहा
1: हाँ
0: थे ना, अपन अपन किसान भाई के दलिए भाई देखा अब जरूरी बा घर से निकलता है जूठ मीठ हो तो कुछ भी खाए पिए वह कहाँ लेके
1: कहाँ
0: डलबे
1: लेके डली है।
0: भैया, और सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो तो अलग ही
1: हाँ
0: बात है
1: ये तो
0: भाई।
1: सही कह भैया। अच्छा आज एक
0: हाँ
1: बात और है आज भैया देखे बिना पंचायती भैया डोल मजीरा का आनंद ना आवत हो। तो आज लोकगीत है राम कृपाल यादव और संघाती भैया का हम सोचे थे कि विकास गीत है किसान भैया बहनी हरन के सुनवाई दिया जाए।
0: सुनवाओ भैया सुनवाओ।

0: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
0: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: रानू,
4: हाँ हो भैया,
3: देखा ये राम कृपाल यादव के संघातिन गौ नई किसान भाई सुने ना, उस सनेस भी सुने ना।
4: हाँ हाँ हाँ।
3: अब देखा हो आज सोमवार है तो अपने यहाँ सोमवार के किसान भाई इनके लोक भाषा कविता पाठ सुनवाए जाते
4: हैं। हाँ हाँ हाँ।
3: भैया हो खेती किसानी से माटी से जुड़ा कविता ही रहा था, मैं कुछ न कुछ ऐसा सनेस रहा था जैसे काफी सीख मिला था।
4: हाँ हाँ हाँ।
3: तो आज देखा लोक भाषा कविता पाठ है श्री राधे श्याम पांडे के, किसान भाई एक सुनाई
4: सुनवाए भैया।
5: पंचो भाई अगर बहन के पास नहीं जाते या बहन भाई के पास नहीं आते, भाई बहन का प्यार दुनिया का सबसे बड़ा प्यार होता। भाई बहुत दिन से अपनी बहनी के पास यहाँ नहीं जाता है, वो अपनी भौजाई से शिकायत करती है। ये कविता सुने। बीता फगुनवा समन नियराए, हे भौजी भैया हमार नहीं आए। बीता फगुनवा समन नियराए, हे भौजी भैया हमार नहीं आए। गीत का पहला चरण है कि बपई भयन जब से राम के प्यारा, तब से बिरनवा के रसता निहारा। अस निर मोहिया न पति पठाए, हे भौजी भैया हमार नहीं आए। दई के गवन जब से गए परदेसवा, पाई न खबर कौनो भेजे न संदेसवा। मनवा हमार नाही मानत मनाए, हे भौजी भैया हमार नाही आए। बीता फगुनवा समन नियराए, हे भौजी भैया हमार नहीं आए। अखिया के पुतरी करजवा के टुकड़ा, अखिया के पुतरी करजवा के टुकड़ा, भाई बिनु सुने के अभागिन के दुखड़ा। तनवा के बनवा न मनवा को भाए, हे भौजी भैया हमार नहीं आए। बीता फगुनवा समन नियराए, हे भौजी भैया हमार नहीं आए। हमका सोहाई न ननदिया के बतिया ऐसा मन कहे कि उतारी हुरमतिया। सान नहीं हरवा के अब ही बचाए, हे भौजी भैया हमार नहीं आए। बीता फगुनवा समन नियराए, हे भौजी भैया हमार नहीं आए। सोची रखिया के आवती रोआई सुनी होए आज मोरे भाई के कलाई, सुनी होए आज मोरे भाई के कलाई। केतनो भुलाई नहीं भूलत भुलाए, हे भौजी भैया हमार नहीं आए। बीता फगुनवा समन नियराए, हे भौजी भैया हमार नहीं। पंचो बहन जो ना अपने भाई के मंगल कामना के परे एक नहीं दू दू व्रत रहत है। बहुरा द्विज रही मंगल मनाई भैया मोर बाढ़ है गंगा जमुना किनाई। कवन कसूर नहीं हमका बताए, हे भौजी भैया हमार नहीं। गीत का अंतिम चरण आपकी सेवा में प्रसिद्ध है कि जौने दिन दीन के दरस हम पऊबे चंडिका।

0: घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?

भवानी तो है पियरी चढ़ई बै, जौने दिन दीन कै दरस हम पऊ बै। चंदिका भवानी तो है पियरी चढ़ई बै, तबै मोरे मनवा कै अगिया बुझाए, हे भौजी भैया हमार नहीं आए। बीता फगुनवा सवन नियर आए, हे भौजी भैया हमार नहीं आए। पंचो अब आपका विद्वान लोग कहा थे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामे तुल्यम श्री राम नाम बरान ने भगवान राम पर आपको एक अवधि में गजल सुनाई थी कि अंधरे का सर बस दर्शावे राम हमार, अंधरे का सर बस दर्शावे राम हमार, गूंगे का बाचाल बनावे राम हमार, अंधरे का सर बस दर्शावे राम हमार, गूंगे का बाचाल बनावे राम हमार। राजपाट सब छोड़ बाप की आज्ञा से, राजपाट सब छोड़ बाप की आज्ञा से, निश्चर मारे साध पचावे राम हमार, गूंगे का बाचाल बनावे राम हमार, अंधरे का सर्वस दर्शावे राम हमार। जीवन नैया पार लगैया केवट को, जीवन नैया पार लगैया केवट से, पार जाय के नाव मगावे राम हमार, गूंगे का बाचाल बनावे राम हमार, अंधरे का सब कुछ दर्शावे राम हमार। छोट बड़ा के साथे कस व्यवहार करे, छोट बड़ा के साथे कस व्यवहार करे, मर्यादा के पाठ पढ़ावे राम हमार, गूंगे का बाचाल बनावे राम हमार, अंधरे का सर्वस दर्शावे राम। जाति पाति मा भेदभाव कुछ माने बिन, जाति पाति मा भेदभाव कुछ माने बिन, शिवरी के घर भोग लगावे राम हमार, गूंगे का बाचाल बनावे राम हमार, अंधरे का सर्वस दर्शावे राम हमार। मान लिया जैसन बोव्या ओइसन कटव्या, मान लिया जैसन बोव्या उस वैसन कटव्या, हम सबका ई बात बतावे राम हमार, गूंगे का बाचाल बनावे राम हमार। घोर घमंडी त्रिया चोर रामन बध कै के, घोर घमंडी त्रिया चोर रामन बध कै के, नारी के सम्मान बढ़ावे राम हमार, अंधरे का सर बस दर्शावे राम हमार। गीत अंतिम चरण कि दीन जटायु का उठाई के को रामा, दीन जटायु का उठाई के को रामा, सीधे वे वैकुंठ पठावे राम हमार, गूंगे का बाचाल बनावे राम हमार, अंधरे का सर बस दर्शावे राम हमार। अब पंचो एक कविता है जने के शीर्षक है ऊ आदमी कि जिंदगी भजमन साथ निभावे ऊ आदमी, जिंदगी भजमन साथ निभावे ऊ आदमी, दुर्दिन मजवन कान लगावे ऊ आदमी, दुर्दिन मजवन कान लगावे ऊ आदमी। कौवन के काऊ काऊ से भिनसार न बहुरे, कौवन के काऊ काऊ से भिनसार न बहुरे, अन्हियार कैलंकाज जरावे ऊ आदमी, जिंदगी भजवन साथ निभावे ऊ आदमी। आदत से परेशान बा कुकुरन के मंडली, आदत से परेशान बा कुकुरन के मंडली, इनका जे सही राह पे लावे ऊ आदमी, दुर्दिन मजौन कान लगावे ऊ आदमी। अगला चरण है कि रावण तो मर के तर गया परिवार मूल अमर बा, रावण तो मर के तर गया परिवार मूल अमर बा, वही काज मारी मारी भगावे ऊ आदमी, वही काज मारी मारी भगावे ऊ आदमी, जिनकी भजौन साथ निभावे ऊ आदमी। माँ बाप से बड़ा के बाटे घरे के देवता, माँ बाप से बड़ा के बाटे घरे के देवता, उनके जे हाथ पाँव दबावे ऊ आदमी, दुर्दिन मजवन कान लगावे ऊ आदमी, जिंदगी भजवन साथ निभावे ऊ आदमी। धारा के साथ साथ तो मुर्दा बहा करत, धारा के साथ साथ

0: तो मुर्दा बहा करत जे स्वयं नई धारा बहावई उ आदमी, जिनकी भजौन साथ निभावई उ आदमी। मांगे मांगे कबो लहू जो अपने वतन के माटी, मांगे कबो लहू जो अपने वतन के माटी, वही के बरे जसीस कटावई उ आदमी। दुर्दिन मजौन कान लगावई उ आदमी, जिनकी भजौन साथ निभावई उ आदमी। अंतिम चरण है कि कह दीन यही धरा पे मतलब के सब साथी, कह दीन यही धरा पे मतलब के सब साथी, आपस मजे सद्भाव बढ़ावई उ आदमी। जिनकी भजौन साथ निभावई उ आदमी, दुर्दिन मजौन कान लगावई उ आदमी। अपंचो प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के।
1: हम कही रानू भैया।
2: हाँ हाँ हाँ,
1: हम कही देखा ही लोक भाषा कविता पाठ रहा श्री राधे श्याम पांडे के।
2: हाँ हाँ,
1: या भाई बहन के प्यार और आदमी के बारे में बहुत कुछ भाई सनेस देहन जौन बड़ किसान भाई सुनिन।
2: हाँ हाँ हाँ,
1: देखा हम सब बात बत कही करते रहे कि आज जौन विश्व दुग्ध दिवस आई है।
2: हाँ हाँ,
1: दूध के भोजन में बड़ा महत्व भी बा, ऐसे भाई दुई पैसा किसान भाई इनका आमदनी भी होत बाटे है।
2: हाँ हाँ,
1: सशक्तिकरण भी आवत बाटे है।
2: हाँ हाँ,
1: तो आज ऐसे एक ठी बात बत कही जौन हम कहे रहे है।
2: हाँ,
1: दुग्ध उत्पादन से सशक्त होते किसान डॉक्टर यामिनी यस से हम बतियान रहे थे। हम सोचत बाटे किसान भाई इनके अवसर पे आज सुनवाई दिया जाए, का महत्व बाटे डेयरी के बारे में, तो समझे तने
2: सुनवाई दे।
1: सुने सुने
3: किसान भाई, खेती किसानी में लगा बाटन है। खेती किसानी में चाहे साग सब्जी वाली फसल हो, चाहे अनाज वाली दाल दलहन तिलहन फसल हो, बाग बागवानी सबसे कुछ ना कुछ भाई फायदा लेत बाटन है। एक साथ साथ तमाम तरह के और भी काम करत बाटन, चाहे मछली पालन हो, मधुमक्खी पालन या बटेर पालन, साथे साथे पशुपालन का भी काम करते हैं। पशुपालन में इस समय जौन बा है दूध का काम काफ़ी अच्छा किसान भाई करत बाटन है। जौन की खा कुछ लोग तो डेयरी का भी काम शुरू के बाटन, डेयरी उद्योग खोले बाटन, जौने से काफ़ी मजबूती आवत बा किसान भाइन के। जौन आर्थिक स्थिति रही उनमें सुधार भी होत बाटे। अपन सरकार भी प्रयास करत बा किसान भाई कुछ न कुछ गाय भैंस ऐसा पालें जौने से दो पैसा का आमदनी होए दूध बेच के उनका। तो डेयरी उद्योग से किसान भाई कैसे सशक्त हुई मजबूत हुई है पे जानकारी दे खातिर आज कार्यक्रम में आए बटन डॉक्टर यामिनी यस जी, जवन की यह सबका जानकार बाटन। डॉक्टर यामिनी यस जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत बाटे है। आप मेरे किसान भाई बतावें कि अगर वो डेयरी उद्योग लगावत बाटन अपने सशक्तिकरण के लिए, तो सबसे पहले डेयरी उद्योग में का का आवत है, कैसे लगाई है, बारे में बतावें आप।
4: भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे किसान राष्ट्र की रीढ़ है
3: जी।
4: लेकिन आज के समय में केवल पारंपरिक खेती से ही किसानों की आर्थिक उन्नति संभव नहीं हो पा रही है
3: जी। जी,
4: ऐसे में डेयरी उद्योग यानी दूध उत्पादन एवं उससे जुड़े व्यवसाय एक वैकल्पिक एवं मजबूत स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं
3: जी। जी,
4: दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है और देश के भीतर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य बन चुका है
3: जी।
4: दूध उद्योग कृषि जीडीपी में लगभग 24-26% का योगदान करता है, जबकि राष्ट्रीय जीडीपी में इसका योगदान करीब 4-5% है।
3: अच्छा अच्छा,
4: भारत की लगभग 70% ग्रामीण आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डेयरी पर निर्भर है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 60% है।
3: यानी औरतें जो है ना 7% देखा जाए तो लगी बाटी डेयरी काम। और देखे में और गाय गांव में जितना भी लोग बाटे ना पशु अगर पाले, गाय भैंस बकरी जवन भी बाटे ना, औरतें ज्यादा काम करती
4: हैं। हाँ जी, सबसे अधिक मात्रा में उनका समय उसी उद्योग में जाते हैं
3: जी। जी, बताओ का महत्व डेयरी उद्योग का बताओ आप।
4: भारत आज विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जैसा कि मैंने कहा। ग्रामीण भारत के लाखों परिवारों की आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूध उत्पादन पर निर्भर करती है। गाय भैंस बकरी जैसे पशु न केवल दूध देते हैं, बल्कि उनके गोबर मूत्र और अन्य उत्पाद भी किसानों के लिए उपयोगी संसाधन बनते हैं। इससे जैविक खाद जैसे कि पंचगव्य, हम लोग इस सामग्री को इस्तेमाल करते हुए हम इसको बना सकते हैं। जैविक खेती पे हम अपना ध्यान लगा सकते हैं।
3: पंचगव्य

0: बताएं, बताएं तो।
1: जी, पंचगव्य ऐसे एक पदार्थ है जिसमें हम गौमूत्र को इस्तेमाल करते हुए उसमें गुड़ भी मिलाया जाता है, और थोड़ी मात्रा में हमारे गोबर जो भी बकरी से या कुक्कुट पालन से जो भी उसके घर से जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको हम अधिक मात्रा में जो है हम इसको बाहर इसको पानी के साथ इसको हम
0: मिला देते हैं
1: मिला देते हैं, तो
0: तो
1: जिस वजह से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ प्रदूषण पानी के वजह से प्रदूषण उत्पादन हो रही है, और इसको कम करने के लिए हम इसी सब मात्राओं जो जो भी गाय और भैंस के घरों से जो भी निकल रहा है जो वेस्ट पदार्थ है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे पंचगव्य को हम उत्पादन कर सकते हैं जो
0: बिना केमिकल के,
1: जी
0: मतलब कि
1: जी
0: रासायनिक पदार्थ का।
1: रासायनिक,
0: हाँ,
1: हाँ रासायनिक पदार्थ
0: फसल
1: को
0: पे छिड़क दें तो फायदा
1: हाँ
0: कैसे?
1: फायदेमंद है, और
0: जी
1: इसके जो है पौधा भी बहुत अच्छे तरीके से इसका फसल बहुत अच्छे तरीके से बिना कीड़े के बिना कोई रोग के ये
0: इस्तेमाल कैसे?
1: इस्तेमाल कर सकते
0: नहीं,
1: हैं।
0: आप कहे कि मतलब कि जौन भी रासायनिक दवाई के छिड़काव करते
1: जी
0: अपने फसलन के बचाव के लिए, रोग दोग के लिए,
1: जी
0: कीटाणु के लिए,
1: जी
0: उकरे जगह पे पंचगव्य बना लें,
1: जी
0: गोबर गोमूत्र आप जौन बताए ने सब
1: जी
0: मिला के, तो ओका छिड़के तो जौन बाटा, एक तो पैसा का भी बचत होए,
1: बचत
0: दूसरे
1: हुए।
0: फायदा भी होए,
1: जी,
0: फसल भी अच्छी रहे, हमें कोनो रासायनिक पदार्थ ना मिले।
1: ना मिलावट
0: जी
1: हो।
0: जी और
1: जी,
0: बताओ।
1: डेयरी उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह न्यूनतम भूमि पर कम लागत है और निरंतर आय का स्रोत बन सकता है,
0: आम का है
1: विशेषकर
0: मतलब कि बहुत कम जगह लागत है
1: जी
0: डेयरी उद्योग खोले
1: हाँ
0: के लिए
1: खोलने के लिए
0: और आमदनी बढ़िया होता है,
1: आमदनी बढ़िया होगा,
0: बताओ।
1: विशेषकर महिलाएं, वृद्ध जीवन और युवा भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में डेयरी का योगदान
0: आप
1: हमें
0: का है मतलब जो उन घर के औरतें हैं
1: जी
0: या वृद्ध जो लोग
1: हाँ
0: बुजुर्ग लोग हैं,
1: युवकों हैं जो
0: वो युवा
1: अपने
0: हैं, वो सब भी हमें शामिल हो
1: इसमें
0: सके।
1: शामिल हो सकते हैं
0: जी
1: जी, अपना अलग तरीके से इसमें अपना योजन भी
0: योग,
1: योगदान भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: जी
0: अब एक बात आवा था कि अगर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में हमारे डेयरी उद्योग का योगदान बाटे, का महत्व बताओ आप।
1: जब किसान खेती के साथ साथ डेयरी को अपनाते हैं तो उनकी आमदनी में स्थायित्व आता है, प्रतिदिन दूध का उत्पादन और बिक्री किसानों को नकद आय उपलब्ध कराता है, साथ ही दूध से बने उत्पाद जैसे घी, दही, मक्खन, पनीर, खोया, कुल्फी आदि का प्रसंस्करण एवं विपणन करके किसान मूल्य संवर्धन कर सकते हैं।
0: आप कहा है कि मतलब जितना भी आ चला जाए, खोआ हो,
1: जी
0: पनीर हो,
1: जी घर
0: दही,
1: बैठे
0: हाँ
1: बैठे
0: दही हो, मक्खन हो, या जो ना आजकल कुल्फी बनत बा,
1: जी
0: ये सब भी बनाए के ज़्यादा पैसा कमाए
1: कमाए
0: सके।
1: घर बैठे बैठे
0: जी
1: महिलाओं इस पे काम कर सकते हैं।
0: हाँ, घर में जो भी सदस्य
1: जी
0: बाटे ना
1: जी
0: करे
1: जी
0: चाहत
1: जी
0: हैं तो कही सकत
1: जी
0: हैं।
1: जो गाय अपना पाले होंगे तो उससे जो भी दूध निकल रहा है उसमें से जो घर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं
0: जी
1: वो
0: जी
1: लेकर के बाकी हम उससे घी बना सकते हैं, बेच सकते हैं
0: जी जी
1: आसपास की
0: जी
1: मंडी में, दुकानों में।
0: हाँ,
1: जी
0: ज़्यादा फायदा मिले
1: ज़्यादा
0: उससे
1: फायदेमंद हो
0: और
1: सकता है।
0: एक रोजगार भी मिला रहे, एक
1: जी
0: प्रकार से कहूँ जाए कि न पड़े।
1: जी आज तो सरकार एवं निजी क्षेत्र की सहायता से अनेक दूध सहकारी समितियां, डेयरी फार्म और परीक्षण केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। इससे किसानों को प्रशिक्षण, बाजार और तकनीक तीनों उपलब्ध हो रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नई तकनीकों के बारे में अगर बोला जाए तो कहा जाए तो आज डेयरी उद्योग केवल दूध निकालने तक सीमित नहीं है,
0: जी
1: वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर किसान उच्च दूध क्षमता वाली नस्लें का पालन कर रहे हैं।
0: सही कहा
1: जी,
0: बाटे ने। जी, आगे बताओ।
1: कुछ प्रमुख तकनीकी पहले, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको हम कृत्रिम गर्भाधान, साइलेज तकनीक द्वारा चारा संरक्षण करना, दूध शीतलन एवं पैकेजिंग तकनीक और डेयरी प्रसंस्करण इकाइयाँ
0: आप कहे कि मतलब तकनीकी क्षेत्र में काफी आगे निकल चुका है देश, और का अपनाए के ज्यादा सशक्तिकरण
1: हो सके,
0: चाहे गर्भाधान के विषय में हो,
1: जी
0: हाँ, चाहे का कहा थी ना उनका चारा
1: चारा
0: जोन
1: को
0: किया,
1: संरक्षण कर
0: साइलेज
1: सके,
0: बनाए
1: जी
0: के,
1: साइलेज बना
0: जी
1: के
0: जी
1: और लंबे समय तक के लिए
0: रखा
1: इसको
0: जाए
1: हरे
0: सर,
1: चारे को
0: रखा
1: हम लोग
0: जाए।
1: रख सकते हैं।
0: और
1: दूध शीतलन
0: यानी
1: जैसे
0: दूध का
1: कोल्ड,
0: जोन बाटे
1: जी
0: ठंडा
1: ठंडा
0: करके
1: करके,
0: खराब ना
1: हाँ
0: हो,
1: 4% डिग्री सेल्सियस में माइनस में
0: ऐसा।

0: मशीन बाटी नैसन
1: जी
0: व्यवस्था
1: हाँ,
0: रखल
1: जो
0: गेल है
1: लंबे समय के लिए इसको हम अगर एक जगह से दूसरे जगह ले
0: लाई
1: जाना
0: जाए के।
1: है हाँ, तो आसान पड़ेगी, खराबी ना होगी इसमें जी।
0: जैसे
1: और
0: दूध खराब होने की संभावना रहा था तो अगर ठंडा रखा जाए तो
1: हाँ
0: खराब ना हो।
1: जी, तो अभी जैसे कि घरों में हमारे हर किसान के घर में मटका से इसको रख करके हम लोग संरक्षण करते हैं जी। इसके साथ ही पशु चिकित्सा सेवाएं, नियमित टीकाकरण और संतुलित आहार जैसे उपाय पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता को बनाए रखते
0: यानी
1: हैं
0: आप कहे कि मतलब अगर पशु स्वस्थ रहे तो बढ़िया रहे,
1: जी
0: ओकरे लिए समय से जो टीका लगा तो ओका
1: जी
0: लगावें, एकरे अलावा उनका का खादिन खान पान आहार विहार सब कुछ
1: जी
0: अच्छा रखें
1: अच्छा रखें
0: तो बढ़िया
1: जी।
0: रहे जो
1: स्वास्थ्य अगर उसका
0: उनका संतुलित आहार
1: संतुलित
0: मिले।
1: आहार मिले
0: जैसे
1: तो
0: गर्मी अगर पड़त बा तो मैं दोनों टाइम नहावें ना
1: नहावे
0: तो
1: था
0: ज़्यादा बढ़िया
1: जी
0: रहे। जी
1: जी
0: जी
1: सरकारी योजनाएं और समर्थन के बारे में कुछ मैं कहना चाहती हूँ।
0: बतावें।
1: किसानों को डेयरी उद्योग में प्रेरित करने के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही हैं।
0: कौन कौन?
1: उसमें से एक ये है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इस मिशन में देसी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन किया जाता है
0: अच्छा,
1: जी
0: यानी जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यक्रम चलत बा सरकार के
1: जी
0: ओमें जो देसी नस्ल के गाय
1: जी
0: रहें,
1: उनको संरक्षण किया जाता
0: अच्छा
1: है और
0: उनका आगे बढ़ावे
1: जी
0: खातिर।
1: आगे बढ़ावे कि क्योंकि बाहरी जो हम लोग नस्लें इसको यहाँ पालन कर रहे हैं उस वजह से ये बाहरी नस्लें और हमारे में अंतर क्या है कि यहाँ के जो गर्मी या वातावरण का जो भी यहाँ पे
0: असर
1: बदल रहा
0: होता
1: है, असर हो रहा है, वो हमारे देसी नस्लें उनको सहने क्षमता ज़्यादा होती है
0: सही कहते
1: हाँ,
0: हैं।
1: बल्कि वो बाहर के जो भी विदेशी वाले होते हैं उनमें कुछ रोग ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा समय के लिए वो दूध नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से राष्ट्रीय गोकुल मिशन द्वारा हमारे देसी नस्लें हैं जैसे कि हमारे सहीवाल है, गिर है, इन लोगों को संरक्षण करने पर सारे हमारे सरकार अपना योजना अपना शुरू कर
0: चलाए
1: चुके हैं जी
0: आपका कहा है कि मतलब कि जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन चला था एकर उद्देश्य ये बा कि जो अपन देसी नस्ल के गाय हैं या भैंस हैं ओका कहा कहते ओकरे नस्ल के बढ़ावा दिया जाए, कहे से जो विदेशी नस्ल हैं अपने ही एक जलवायु में वो जोन बाटे उतना स्वस्थ नहीं रहते
1: जी
0: तो बड़ी
1: इस
0: ना।
1: मिशन में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि
0: जी
1: कामधेनु अवार्ड जैसे
0: जी जी
1: पुरस्कृति दिया जाता है
0: हाँ
1: जिसमें जो किसान एक वर्षीय में अगर देसी नस्ल का अच्छे से संरक्षण करके उससे अधिक मात्रा में अगर दूध का निकाला जा रहा है तो उस किसान को ये सरकार पहले उनको बुलाया जाता है और वार्षिक कार्यक्रम में और उनको कुछ पैसे दिया जाता है
0: पुरस्कार के
1: जी,
0: रूप। अच्छा
1: उनको
0: अच्छा
1: सम्मान किया जाता है जी,
0: अच्छा अच्छा
1: कामधेनु
0: कामधेनु योजना के।
1: जी।
0: अच्छा, और आगे बताओ।
1: डेयरी उद्यमीय विकास योजना जिसमें सारे युवकों को इसमें ये उद्योग दिया जाता है, जो भी 10वीं कक्षा पास या फेल बच्चे होंगे उनको कुछ तकनीकी सिखाया जाता है जैसे कि
0: प्रशिक्षण दे
1: जी
0: जाए।
1: प्रशिक्षण, दूध कैसे दूध का हम नापीकरण करते हैं, फैट परसेंटेज वगैरह जो भी दूध के जो भी हम उसमें मौजूद है सारे एक एक कण को हम वहाँ पढ़ सकते हैं
0: अच्छा
1: जी,
0: मशीन रहा था।
1: मशीन रहा था जी।
0: अच्छा, आगे बताओ।
1: ई नाबार्ड और नाबार्ड डेयरी सहकारिता ऋण योजना
0: अच्छा
1: जिसमें ई
0: अच्छा
1: नाबार्ड जो ऑनलाइन जैसे फ़ोन पे हम लोग के सारे यंत्र पे हम इसको बैठे बैठे एक घर से हम इसमें कोई भी दिक्कत है, बीमारी है, दूध में कुछ कमी है तो सारे इलाज वहाँ ई नाबार्ड में आपको मिल जाता है। और नाबार्ड जो है अगर डायरेक्टली आप उनके पास जाओगे तो वहाँ पे आपको सारे नस्लों के बारे में विवरण मिल जाएगा जी,
0: अच्छा।
1: किस जगह पे कौन सा नस्ल मौजूद है ये सारे बारे में, और गर्भदान करने के लिए भी वो थोड़ा सा मदद कर देंगे
0: अच्छा
1: जी।
0: अच्छा और
1: जैसे FSSAI करके एक योजना है और जिसमें हम अपने खाद्य पदार्थ को
0: जांच होता जा।
1: जी जांच
0: जी जी
1: होते
0: जी
1: हैं, ये सारे जो है हमारे तकनीक में
0: इनका
1: आते हैं जी
0: अच्छा मैंने नस्ल सुधार और का कहते हैं डेयरी उद्योग में भी काम करत।
1: जी
0: आगे बताऊं।
1: इन योजनाओं का उद्देश्य यही है कि किसान न केवल दूध उत्पादन करे बल्कि उसे एक उद्यम के रूप में अपनाए और
0: अच्छा,
1: रोजगार प्रदाता बने
0: यानी आप कहा है कि मतलब किसान खाली अपने घर के प्रयोग के लिए इतना इतना कम ना पालें, प्रयास करें कि इतना बड़े पैमाने पर काम करें, उनका पैसा भी मिले और रोजी
1: जी
0: रोजगार भी मिले।
1: जी जी
0: और
1: महिला सशक्तिकरण और डेयरी डेयरी उद्योग ने

0: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। गांवों में महिलाएं दूध उत्पादन, पशुपालन, चारा प्रबंधन और दूध संग्रहण में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।
1: अच्छा।
0: स्वयं सहायता समूहों जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। जी
1: अच्छा। डॉक्टर यामिनी यश जी, जैसे कि आप बतावे चाहते हैं कि क्या कहते हैं, जैसे समूह भी गांव में चलता है
0: जी
1: तो महिलाएं चाहें तो अपने समूह से पैसा लेके ये डेयरी उद्योग खोल
0: खोल
1: सकते हैं
0: सक
1: और सशक्तिकरण में काम आए
0: जी
1: जोन बाटे।
0: जी अंत में यही कहना चाहती हूँ कि डेयरी उद्योग सिर्फ दूध का कारोबार नहीं है, यह किसानों के जीवन में आत्मनिर्भरता, सम्मान और खुशहाली लाने का एक माध्यम है।
1: जी, कि अगर किसान भाई अगर एक दो पशु पाले, मान लो खाई भरे को हो जाए तो, लेकिन बड़े पैमाने पर डेयरी उद्योग काम करें, जिसमें कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी काम करत, अपन सरकार सहायता भी देत बाटे है, तो घर के जौन भी औरतें हैं, बुजुर्ग बाटे या युवा बाटे न, एक रोजी रोजगार के रूप में एक आगे ले जा सकते हैं, उनका आर्थिक स्थिति अच्छी हो, दो पैसा का आमदनी कर सकते हैं। डॉक्टर यामिनी यश जी, आप आए डेयरी उद्योग से किसान भाई कैसे सशक्त हो, यहाँ पे अच्छी जानकारी दें, आपको जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखो बैजू भैया,
2: हाँ रानू भैया।
1: बातचीत रहन हो दुग्ध उत्पादन से सशक्त होते किसान जो में डॉक्टर यामिनी यश से राकेश कुमार मौर्य भैया के बातचीत रहन,
2: हाँ
1: और देखे सब पहलू पे काम से राकेश भैया भैया फरिया फरिया पूछे न, और यामिनी बहनी काम से बढ़िया से बताई हैं।
2: भाई जानकारी से ही किसान भाई जब जागरूक हुए हैं अपन का कहथिन।
1: हाँ
2: हाँ
1: हाँ
2: भाई ये सब काम करी हैं तो जरूर उनका आमदनी हो जोन बाटे भाई। घरे में रह के भाई देश विदेश न जाए पर घरे में रह के ही अपन दो पैसा कमा सकथिन।
1: नहीं तो भैया देखो बैजू भैया सही कहता है, काहे के कि किसान के सशक्तिकरण में भैया महिला का बहुत बड़ा योगदान रहता है, काहे के
2: कहे
1: कि
2: नहीं
1: घरे
2: कहे।
1: से लेके बारी बगीचा तक,
2: हाँ
1: गोरू
2: खेती
1: चौवा तक,
2: किसानी तक
1: हाँ
2: सब जगह लगी
1: सब जगह का
2: रहते
1: हमसे
2: हैं।
1: साथे साथे भैया का नाम से साथ दिए रहते हैं किसान भैया बहनी है।
2: सही कहते
1: तो
2: भैया।
1: एक बात और रहे हो भैया, देखे गर्मी तो खूब पड़ता
2: हाँ
1: है,
2: हाँ हाँ हाँ
1: देखे हो बैजू भैया यह समय किसान भैया बहनी हरन के चाहे कि जौन अगले बगले के भैया ताल होए, पोखरा उखरा गढ़हा उढ़ा होए, जब भैया साफ सुफ रहे तो जौन रहे कि जौन बरसात का पानी है हो ओके भैया उमन संरक्षित करें, तो भैया जौन काम से जलस्तर काम से हर साल दिन पर दिन भैया नीचे चला जाता है, तो उसे बरसात के पानी के संरक्षण से कुछ बचाव हो सकत है।
2: भाई सही कहा। वो जरूरी बा कि बरसात होए के पहले हम जौन बताए ना पोखरा गढ़ा अगर मुँह
1: हाँ
2: कुछ जम गया बा माटी भय कचरा भय
1: हाँ
2: ओकर
1: हाँ हाँ
2: सफाई करवाई दें
1: हाँ
2: और
1: हाँ
2: का
1: हाँ
2: कहा थी बढ़िया से मेड़बान ओन दें तो भैया हो पानी रुके। पानी रोक कब बहुत जरूरी बा है और जल संरक्षण होए तो भाई का कहा थी अपन धरती भी बढ़िया रहे। जौन बताओ था ना कि जल स्तर नीचे चला जाए
1: नीचे
2: तो जल स्तर
1: हाँ
2: बढ़िया बना रहे, पेड़
1: हाँ
2: पौधा सब हरियर रही।
1: हाँ हाँ
2: एक बात बहुत भैया हो कि हम कहीं देखा अपने यहाँ जो मौसम की बात किया जाए अगर तो
1: हाँ
2: मौसम में देखा गर्मी भी होत बा, बीच बीच में आंधी तूफान कुछ बारिश भी हो जात बा है।
1: हाँ हाँ हाँ
2: तो ऐसन में किसान भाई सचेत रहें, आंधी तूफान में कोनो खतरा न हो, कोनो आपदा ना हो, करे लिए पहले सचेत रहे के चाहे।
1: एकदम सही कहे
2: अपन
1: भैया।
2: भैया छान छप्पर जवन भी बा पशुअन के टीन सेट वगैरह जवन बाटे ओका
1: हाँ हाँ
2: दुरुस्त
1: हाँ
2: रखे
1: हाँ
2: ना है तो उड़ जात भारी बड़ा नुकसान होत है।
1: हाँ
2: कहूँ
1: हाँ
2: कहूँ
1: हाँ
2: मौत पेड़ गिर जात भाई उससे भी नुकसान हो जात। आंधी अगर आंधी तूफान आवत बाद भैया लड़के के देलन प्रयास करें घरे में रखें बाहर न जाए के चाहे भाई,
1: हाँ
2: ऐसी भी काफ़ी दिक्कत आई जात है।
1: एकदम सही कह भैया। एक बात और रहे हो, देखा भैया जेकर घर कनम से यह बखत किसान भैया बहनी हरन के अगले बगले पोखरा तालाब है या तो नदी किनारे है, तो होत का है भैया गर्मी बहुत तेज बढ़त है, तो का है कि लड़किया बच्चा पढ़ के आवत हैं तो भैया झोला झंडी रख के चला जाता है नहाए, और
2: सही
1: जौने से
2: कहते
1: भैया कनम से दुर्घटना
2: होए
1: होए
2: की
1: के भैया
2: संभावना रहे।
1: संभावना रहत है,
2: सही
1: तो
2: कहते
1: किसान भैया बहनी हरन के भैया अपने लड़का के दिलन के भी बहुत ध्यान देवे के है कि भैया दोपहरिया में न निकलें, और अगर केव जात है तो भैया के हमसे साथे रहें,
2: सही
1: इससे
2: कहा भाई।
1: उनका
2: देखा
1: सुरक्षा
2: हम
1: रहे।
2: तो कहीं ना स्कूल तो इस समय बंद बा, छुट्टी मनाओ थे लड़कियन उन
1: हाँ
2: ज़्यादातर दोपहरिया में निकले की बा कि लोग आम भी नहीं चला जाता है,
1: हाँ हाँ हाँ
2: आमे के
1: हाँ
2: बगीचे में चला जाता है, ठीक से कपड़ा भी नहीं पहिरता है तो
1: हाँ
2: उसे भी गर्मी लागे के डर बाट रही है, पानी भी समय से नहीं पियत है। तो ये सब के देखभाल किसान भाई ने अपने लड़कियन करें, अपना भी देखें भाई दोपहरिया में निकर अगर निकर

0: जरूरी बात, मोटा कपड़ा सूती पहन रहे हैं, ऊपर
1: हाँ
0: गमछा
1: हाँ
0: बांधे रहे, पानी की कमी तो बिल्कुल ना हो दे
1: एकदम सही कहन भैया। अच्छा एक बात और रहे हो,
0: भैया, हो हम
1: साथ ही
0: कहीं
1: साथ भैया जानवरन कभी कनम से
0: सही
1: ध्यान
0: कहे।
1: दें कहीं के ये समय भैया उन्हें भी समय समय पे पानी
0: अरे
1: दे,
0: बहुते
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी है
0: बा, और
1: भैया।
0: संध्या सवेरे नहवाओ भी जरूरी बाटे
1: हाँ हाँ
0: है।
1: हाँ
0: एक बात और भैया, अपन किसान भाई कार्यक्रम सुना थे तो
1: हाँ
0: भैया हो एम उनका मन हो थे भाई कि हम कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करिए, कुछ सुझाव दी
1: हाँ अगर
0: तो
1: उन
0: हाँ,
1: बतावे चाहत हैं
0: तो एक ही
1: तो
0: नंबर बा देखा,
1: हाँ
0: व्हाट्सएप
1: अपन
0: नंबर।
1: व्हाट्सएप नंबर
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: 800-06-2650। हम एक बार फिर से नंबर बतावे चाहते ही 800-06-2650।
0: एक पे
1: देखो
0: अपन
1: भैया
0: हाँ संदेश लिखी दें,
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: का कहते ने तो भैया संदेश लिखी, एक अलावा अपन फेसबुक भा इंस्टाग्राम है, पर आकाशवाणी प्रयागराज के प्रोफाइल भी, वो हमें अपन पसंद कर सकते हैं, टिप्पणी लिख सकते हैं,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो देखा हो समय समय स्कूल नहीं लगता है, चले के भी बेला हो गए रानू भैया। हाँ तो
1: हाँ
0: पंचन
1: हाँ
0: से आज्ञा ले जाए, तो पंचो
1: पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज शाम 7:30 पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की वार्ता महात्मा गांधी का प्रकृत दर्शन। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8 बजे और रात 10 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में भूपेंद्र कुमार से भजन और गीत सुनिएगा 7:45 पर और रात 8:30 पर कार्यक्रम कानून हर और हम। इस कार्यक्रम में सुनिएगा अधिवक्ता रमेश कुमार से की गई बातचीत, कैसे कराएं जमीन की रजिस्ट्री, और रात 9:30 पर कार्यक्रम कहकशा होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर सुनिएगा पंडित उमा शंकर का सितार वादन। तो ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात 10 बजे खेल दर्पण, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर एस टी मैकार्टी से की गई बातचीत, विषय होगा दुधारू एवं गाभिन पशुओं की देखभाल। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर युगांतर पांडे की वार्ता होगी गर्मी के मौसम में शिशुओं की देखभाल। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर सुनिएगा पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन और दोपहर 12:15 पर पंडित गोपाल दास का क्लियरिनेट वादन। रात 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज का समय होगा 8:45। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:00, 11:30 पर और रात 8:00।

12:30 पर अपने फोन कॉल्स पर आधारित अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुनिएगा कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 12:15 पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल की महिलाएं सुनेंगी उमा दीक्षित की वार्ता, ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियां, साथ ही प्रतिमा श्रीवास्तव से लोकगीत। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में जगदीश यादव और साथियों से लोकगीत सुनिएगा। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर, 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम होगा जिसमें ग्रामीण भाई सुनेंगे बाबूलाल दिवाकर और साथियों से लोकगीत, साथ ही रामायण पाठ होगा। 7:30 पर संस्कृत कार्यक्रम होगा और रात 8:00

7:20 होने को हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकलविहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। इनमें प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1,00,000 रूपये, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। वहीं जनपद स्तर पर टॉप 10 में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रूपये, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दिशा से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए हैं। अटल टिकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: मुख्यमंत्री ने आज बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
2: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास, यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
0: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान

0: मुख्यमंत्री ने बीते दिनों आंधी बारिश के चलते जनपद में हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। 31 मई 2025 से कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्यरत राजीव कृष्ण को कल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के तौर पर नियुक्ति दी गई है, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्यौहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त किया जाए, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। इसके अलावा भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में फेरबदल करते हुए प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया है। वहीं प्रभारी निदेशक वैकल्पिक व साक्षरता शिक्षा उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। शासन के विशेष सचिव के गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से 7 जून तक गौशालाओं में विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य

0: करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं डेयरी गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही प्रदेश की सभी गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गो संवर्धन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पशुधन मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत राज्य सरकार मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत 4 निराश्रित गोवंश लेने वाले किसानों और पशुपालकों को 72,000 रूपये की सहायता भी प्रदान करेगी। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। हमीरपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जौनपुर में भी तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की वार्ता, महात्मा गांधी का प्रकृति दर्शन।
2: पर्यावरणीय संकट एवं जंगलों को बचाने का प्रश्न आज मानवीय अस्तित्व के लिए एक विकट चुनौती है। भारतीय दर्शन की अधिकांश धाराएं प्रकृति को अनुभवजन्य दुनिया से जोड़ती हैं। पर्यावरण को एक व्यापक शब्द मानते हुए भारतीय दर्शन प्रकृति को उन शक्तियों, परिस्थितियों एवं वस्तुओं का योग मानता है जो मानव जगत को परावृत करती हैं तथा उनके क्रियाकलापों को अनुशासित करती हैं। भारतीय परंपरा में प्रकृति को जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए वेदकालीन ऋषियों ने अदृश्य आकाश से लेकर पृथ्वी एवं उसके सभी घटकों तथा व्यक्ति तक समस्त परिवेश के लिए शांति की प्रार्थना की है। यजुर्वेद के शांति पाठ में ऋषि प्रार्थना करता है कि पूरे आकाश में, साथ ही विशाल अंतरिक्ष में, हर जगह शांति हो। इस पृथ्वी पर, जल में और सभी जड़ी बूटियों, पेड़ों और लताओं में शांति हो। पूरे ब्रह्मांड में शांति का प्रवाह हो। परमपिता ब्रह्म में शांति हो और केवल शांति और सभी प्राणियों के लिए हमेशा शांति हो। ये पाठ हमें बताता है कि प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा में मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य एवं सौहार्द की कामना की गई है। आज मैं जिस विषय पर पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बोल रहा हूँ, उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पर्यावरण दृष्टि पर बात है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पर्यावरण को लेकर अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए थे। आज जब हम महात्मा गांधी के प्रकृति दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे, तो ये देखना होगा कि उनका प्रकृति दर्शन वास्तविक जीवन प्रयोगों एवं आध्यात्म से प्रेरित था। उनका मानना था कि समस्त प्रकृति परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। गांधी प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे और लोगों को बराबर प्रकृति की ओर लौटो की शिक्षा देते थे। उनकी अहिंसा केवल जीवित प्राणियों के लिए नहीं थी, वरन निर्जीव भौतिक पदार्थों के लिए भी थी। उनका सर्वोदय दर्शन मनुष्य एवं जीवित प्राणियों सहित समस्त जगत के लिए अभिप्रेरित था। गांधी के चिंतन में समग्र जीवन एवं समग्र विश्व की चिंता है। उन्होंने केवल मनुष्य बल्कि जीव जंतु, पशु पक्षी आदि समस्त जीवन की समरसता एवं सामंजस्यता स्थापित करने वाली जीवन दृष्टि विकसित करने की बात की। अपनी कालजयी पुस्तक हिंद स्वराज में

उन्होंने जिस समाज व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की उसमें पर्यावरण संरक्षण और नैतिकता के तत्व भी मौजूद हैं। सभ्यता की तात्विक समालोचना करते हुए गांधी कहते हैं कि पर्यावरण संकट मुख्यतः मनुष्य के अनियंत्रित भोग विलास एवं अनैतिक जीवन पद्धति का ही परिणाम है। विकास की चकाचौंध में मनुष्य प्रकृति से अपना प्रेमपूर्ण संबंध बिगाड़ चुका है और अपनी तबाही की राह बना रहा है। गांधी का संपूर्ण जीवन और दर्शन एक ऐसे पर्यावरणीय नैतिकता का पोषक है जिसमें आवश्यकताओं में कटौती, लोभ लालच का त्याग, अपरिग्रह, ट्रस्टीशिप, कुटीर उद्योग, स्वावलंबन, सर्वोदय आदि के उनके विचार, प्रकृति के प्रति उनके असीम लगाव तथा उनकी सूक्ष्म पर्यावरणीय चेतना का स्पष्ट संकेत करते हैं। उनका दृढ़ विश्वास था कि आवश्यकताओं में कटौती करके श्रम द्वारा अर्जित धन से ही मनुष्य सुख, संतोष एवं शांति की प्राप्ति कर सकता है और एक सच्चा एवं जीवन जीने योग्य जीवन जी सकता है। उनका कहना कि प्रकृति के पास मनुष्य को देने के लिए बहुत कुछ है, वह प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता को पूरा कर सकती है लेकिन वह उसके लालच को कभी पूरा नहीं कर सकती, के गंभीर निहितार्थ हैं। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य की वृत्तियां चंचल है, उनका मन बेकार की दौड़ धूप किया करता है, उनका शरीर जैसे जैसे ज्यादा पाता है वैसे वैसे और ज्यादा मांगता है, ज्यादा लेकर भी वह सुखी नहीं होता, भोग भोगने से भोग की इच्छा बढ़ती है, इसलिए हमारे पुरखों ने भोग की हद बांधती थी। जाहिर है सादा जीवन और उच्च विचार की जो भारतीय जीवन दृष्टि है उसकी अपनी प्राकृतिक जीवन शैली है और वही जीवन शैली का सूत्र है जो जीवन को आपको राह आसान करती है। जैसा कि गांधी ने लिखा कि बहुत सोच समझ के हमारे पुरखों ने देखा कि सुख और दुख तो मन के कारण है। अमीर अपनी अमीरी के वजह से सुखी नहीं है, गरीब अपनी गरीबी के कारण दुखी नहीं है। अमीर दुखी देखने में आता है और गरीब सुखी देखने में आता है। करोड़ों लोग गरीबी रहेंगे ऐसा देखकर उन्होंने भोग की वासना छुड़वाई। आधुनिक सभ्यता भौतिक और शारीरिक सुख को जीवन का लक्ष्य मानती है, इसलिए आधुनिक सभ्यता की दार्शनिक आलोचना करते हुए गांधी ने लिखा कि शरीर को सुख कैसे मिले यही आज की सभ्यता ढूंढती है और यही देने की कोशिश करती है, परंतु वह सुख मिल नहीं पाता। यह सभ्यता अधर्म है क्योंकि यह एक ऐसे परिदृश्य को विकसित करती है जिसमें हम धीरज धरकर बैठे नहीं रह सकते। सभ्यता की चपेट में हम खुद की जलाई हुई आग में जल रहे हैं क्योंकि ये एक शैतानी सभ्यता है। हिंदू धर्म इसे निरा कलयुग कहता है, ये दूसरों का नाश करने वाली और खुद भी नाशवान सभ्यता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की आलोचना करते हुए कहा कि लोगों को बराबर इस बात से प्रेरित होना चाहिए कि वो अनावश्यक रूप से धन का संचय ना करें और यदि उनके पास आवश्यकता से अधिक धन हो तो वो उसके ट्रस्टी बन जाएं और समाज के निर्धन एवं अभावग्रस्त समुदाय के हित में इसे खर्च करें। अगर अपरिग्रह एवं ट्रस्टीशिप को हम अपने व्यवहार में लाएंगे तो प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन नहीं होगा। उपभोक्तावादी संस्कृति में अधिक से अधिक धन प्राप्त करने एवं उनका संचय करने की होड़ लगी रहती है, परंतु गांधी ने आवश्यकता से अधिक धन अर्जन एवं धन संचय को चोरी की संज्ञा दी। उन्होंने लिखा कि जो अर्थशास्त्र धन की पूजा करता सिखाता है और बलवानों को दुर्बल का शोषण करके धन संग्रह करने की सुविधा देता है उसे शास्त्र नहीं कहा जा सकता, वो तो एक झूठी चीज है जिसमें हमें कोई लाभ नहीं हो सकता, इसे अपनाकर हम मृत्यु को ही न्योता देंगे। गांधी प्रकृति के प्रति अपने दर्शन को स्पष्ट करते हुए बड़े बड़े कारखानों में विपुल मात्रा में माल पैदा करने के बजाय देश के विशाल जनसमुदायों द्वारा अपने घरों और झोपड़ों में माल का उत्पादन करने के हिमायत देखते हैं। गांधी ने कुटीर उद्योगों एवं स्वावलंबन पर जोर देते हुए हमेशा इस बात पर जोर दिया कि कुटीर उद्योग ही स्वावलंबन को बढ़ावा दे सकते हैं क्योंकि इसमें एक तरफ ना तो प्रदूषण पैदा होता है और जो होता भी है वो बहुत ही नाम मात्र का होता है। अगर हम कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन रुक जाएगा और इससे संसाधनों के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा। यह सर्वविदित है कि बड़े बड़े कल कारखाने और बृहद पैमाने पर उत्पादन आज समाज में कितना ज्यादा प्रदूषण पैदा कर रहा है और फैला रहा है। गांधी जी के शब्दों में बड़े पैमाने पर होने वाली सामूहिक उत्पादन ही दुनिया की मौजूदा संकटमय स्थिति के लिए जिम्मेदार है। एक क्षण के लिए यदि मान भी लिया जाए कि यंत्र मानव समाज की सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकती है तो भी उसका परिणाम बहुत सुखद नहीं होगा और वो सिर्फ कुछ क्षेत्रों में केंद्रित होते हुए वितरण की आवश्यकता को भी प्राप्त करेगा। दूसरी ओर यदि जिन क्षेत्रों में वस्तुओं की

आवश्यकता है, वहाँ अगर उसका उत्पादन और वितरण सही ढंग से किया जाए तो वो समाज में भुखमरी भी खत्म करेगा और समाज को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी देगा। इसी को भांपते हुए गांधी ने अंधाधुनिकृत औद्योगिकरण के खतरों को बहुत पहले ही भांप लिया था। औद्योगिक सभ्यता के मूलाधार बड़े कल कारखानों को गांधी मनुष्य प्रकृति के लिए अभिशाप मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह यंत्र आधुनिक सभ्यता की मुख्य निशानी है और वो एक महापाप है। यंत्र तो सांप का एक ऐसा बिल है जिसमें एक नहीं सैकड़ों सांप होते हैं, एक के पीछे दूसरा लगा ही रहता है। जहाँ यंत्र होंगे वहाँ बड़े शहर होंगे, जहाँ बड़े शहर होंगे वहाँ पे अनावश्यक रूप से परिवहन के साधन विकसित करने होंगे, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उत्पादन होगा और वहाँ अनावश्यक रूप से एक ऐसी सभ्यता विकसित होगी जो मनुष्य को सद्गुणों से दूर करते जाएगी। गांधी यंत्र को लोगों के शोषण और गुलामी के औजार के रूप में देखते हुए कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता और इसके द्वारा पोषित विज्ञान और तकनीक की कृपा से ही धरती पर एक ऐसा वैश्विक षड्यंत्र और महाजूट का प्रचार फैला है जिसमें मनुष्य वास्तविकता से दूर होता जा रहा है।

0: होगी जो मनुष्य को सद्गुणों से दूर करते जाएगी। गांधी यंत्र को लोगों के शोषण और गुलामी के औजार के रूप में देखते हुए कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता और इसके द्वारा पोषित विज्ञान और तकनीक की कृपा से ही धरती पर एक ऐसा वैश्विक षड्यंत्र और महाजूट का प्रचार फैला है जिसमें मनुष्य वास्तविकता से दूर होता जा रहा है। अपने जीवन जीने के तरीके और पर्यावरण के अंतर संबंध पर बात करते हुए गांधी की यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण लगती है, जिसमें वे कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट लक्षण है जरूरतों का अपरिमित बाहुल्य, जबकि प्राचीन सभ्यता में इस पर रोक लगाई गई थी और जरूरत को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया था। अस्वाभाविक उत्तेजना के साथ उन्होंने इस बात पर कहा कि इस पागल चाह से तहे दिल से नफरत करने की जरूरत है जो दूरी और समय को खत्म करने की लालसा में एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहा है जिसमें हम एक पैसाचिक भूख की तरफ बढ़ रहे हैं। पर्यावरणीय गांधीवादी कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि गांधी एक ऐसे रामराज्य की कल्पना करते हैं जिसकी चारित्रिक विशेषता में स्थानीय स्वावलंबन, साफ सुथरी पारिस्थितिकी, मनुष्य जीवन के लिए जरूरी साधन, पानी और चारागारों का सामुदायिक प्रबंधन एक ऐसी विशेषता के रूप में सामने आता है जो भारत को सपनों के देश में बनाता है। यही गांधी के सपनों का भारत भी है। अपने जीवन के आखिरी समय में उन्होंने कृषि के यंत्रीकरण के समर्थन करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि जमीन की उर्वरता को पैदावार बढ़ाने के लिए जिस तरह के आप यंत्रीकरण को जोर दे रहे हैं इससे जमीन खत्म हो जाएगी। प्राकृतिक खाद के पैरोकार के रूप में गांधी प्रदूषण और संसाधनों को खत्म किए बिना जमीन को उर्वर बनाए हेतु प्राकृतिक खेती की बात पर जोर देते हैं। उन्होंने इंदौर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री के अल्बर्ट हार्वर्ड के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्राकृतिक कृषि तरीकों पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने अपनी पत्रिका हरिजन में हार्वर्ड और उसके सहयोगियों द्वारा गोबर, कृषि अपशिष्ट, लकड़ी की राख और गोमूत्र को मिलाकर खाद के रूप में परिवर्तित करने की उनकी प्रौद्योगिकी की सराहना करते हुए कहा कि आज हमें स्वैच्छिक सादगी का जीवन ही जीना होगा, यही एक व्यवहारिक विकल्प है। उनका कथन कि सबकी जरूरतों के लिए दुनिया के पास काफ़ी है पर उनके लोभ के लिए नहीं, ये पर्यावरण नीति का सार है। इस नीति को उन्होंने खुद भी अपनाया और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। गांधी की पर्यावरणीय दृष्टि पर बात करते हुए हमें सज्जनंद सिन्हा की वो बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था और आधुनिक विकास दृष्टि को बदले बगैर पर्यावरण संकट का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इस संबंध में वो ये लिखते हैं कि गांधी युग के साथ अलग तरह की विश्व दृष्टि जुड़ी हुई है। इसमें मनुष्य की नियति प्रकृति या वनस्पति जगत सहित अन्य प्राणियों पर विजय प्राप्त करना नहीं बल्कि उनके साथ एक नई तरह का तादात्म्य स्थापित करना है। आज पर्यावरण की सुरक्षा जो अन्य जीवों और वनों की रक्षा से जुड़ा हुआ है मानव प्रजाति के स्वयं जीवित रहने की अनिवार्य शर्त दिखाई देने लगी है। ऐसे में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखे बगैर विकास के लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन दृष्टि को बदलें और एक ऐसे समाकित और सभी को साथ लेने वाली दृष्टि की तरफ बढ़ें जिसमें हम भी जिएं और पर्यावरण भी बचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की वार्ता महात्मा गांधी का प्रकृति दर्शन। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

पर मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं भूपेंद्र कुमार। पहले सुनते हैं इनसे भजन, रचना है तुलसीदास की।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और कलाकार हैं भूपेंद्र कुमार और भाई ये सुनते हैं इनसे गीत।

भूपेंद्र कुमार के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म प्रेम पुजारी में। गीत लिखा था नीरज ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म दम लगा के, हैसा फिल्म का ये गाना, आवाज है पापोन की।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू को फिल्म अकेले हम अकेले तुम में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने। और अब आइए सुनते हैं फिल्म खिलाड़ी का ये गाना। आवाजें हैं अभिजीत भट्टाचार्य की और अलका याग्निक की।

अभी आप सुन रहे थे अतीफ असलम को फिल्म रेस में। गीत लिखा था समीर ने और संगीत दिया था प्रीतम ने। और आइए अंत में सुनते हैं फिल्म माचिस का ये गाना। आवाजें हैं सुरेश वाडेकर और हरिहरन की।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून और हम। आज इसमें सुनिए अधिवक्ता रमेश कुमार से नेहा गुप्ता की बातचीत। विषय है जमीन की रजिस्ट्री करते समय ध्यान रखने योग्य बातें।
1: नमस्कार श्रोताओं। श्रोता, हर व्यक्ति की एक खुशी होती है, एक सपना होता है कि उसका एक प्यारा सा आशियाना हो, उसकी गाढ़ी कमाई में से इतनी तो कमाई हो जाए कि वह एक अदद घर ले सके जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। जी हाँ, जब कुछ कमाई इकट्ठी हो जाती है तो लोग जमीन तलाशते हैं, सोचते हैं कि एक सुंदर सा घर लें, लेकिन कई बार कुछ दिक्कतें आती हैं कि आखिर जो ज़मीन ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं उसका वेरिफिकेशन कैसे करें। जो ज़मीन लेने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और जब रजिस्ट्री हो जाएगी तो हमारी ही होगी, उस पर कोई अगला दावेदार नहीं होगा। आज हम ज़मीन या फिर फ्लैट रजिस्ट्रेशन कराते समय किन बातों को ध्यान में रखें, इसी पर खास चर्चा करेंगे। और खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रयागराज के जाने माने एडवोकेट हैं रमेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद नेहा जी।
1: जो भी लोग मकान रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं, सोचते हैं कि भाई एक जमीन देखी जाए, तो जब जमीन देखने के लिए जाते हैं रमेश जी, तो किन बातों को ध्यान में रखें ताकि एक सही जमीन देख सके अपने लिए?
2: सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जमीन का जो रजिस्ट्रीकरण हो, कानून के हिसाब से ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें उसको ओनरशिप प्राप्त होती है
1: जी।
2: और निश्चित रूप से इसमें सभ्यता के हमारे विकास के साथ साथ तमाम कानूनी संरक्षण दिए गए जिसके आधार पर जो क्रेता हैं उनके हितों का पूरी तरह से संरक्षण हो और उनके साथ किसी तरह की ठगी और कानून के द्वारा जो भी जमीनें हैं उनका ये ना हो कि बाद में वो नुकसान उठाना पड़े।
1: बिल्कुल।
2: इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, खासतौर से जमीन जो आप परचेज करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात तो हमें जो ख्याल रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि जो अमुक जमीन अमुक फ्लैट हम खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में कई कम से कम 4-5 कानून वर्तमान में हैं जो उन पर लागू होते हैं
1: जी।
2: और उन कानूनों के बारे में मैं मोटा मोटा थोड़ा सा आपको बता दूंगा जो उपयोगी है। पहला तो ये होता है कि जब आप किसी जमीन की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उसमें खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश बारे में अपने को कंसंट्रेट करूंगा, ये जनरल ला तो पूरे इंडिया में एक ही है
1: जी, जी।
2: लेकिन फिर भी अलग अलग स्टेट में कुछ अपने लोकल उनके स्थानीय कानून में फेरबदल है
1: जी, जी।
2: तो हमारा पूरी बातचीत का केंद्र जो है उत्तर प्रदेश ही रहेगा
1: जी।
2: तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण ये होता है कि जिस व्यक्ति से हम जमीन खरीद रहे हैं वो एक्चुअल में उसका ओनर है कि नहीं ये हम जान लें। इसको जानने के लिए अगर सपोज दैट कि हम कोई मकान के लिए लैंड खरीद रहे हैं, फ्लैट नहीं लैंड, तो उसमें डिमार्केशन हम पहले करवा लें वहां जा करके, जहां भी वो जमीन जिस तहसील में स्थित है उस तहसील में एक एप्लीकेशन दे करके उस जमीन का सबसे पहले हमको डिमार्केशन करवा लेना चाहिए। डिमार्केशन से दो फायदा होता है कि ऑन रिकॉर्ड किसकी जमीन है वो खतौनी के माध्यम से आपको दिख जाएगी, दूसरा जमीन में कब्जा मौके पर कई बार होता है कि रिकॉर्ड पर नाम किसी का और का है और कब्जा किसी और का, तो जब आप डिमार्केशन कराएंगे तो ये बातें सरेआम हो जाएंगी कि हाँ भाई इस पे कोई खरीदने जा रहा है और अगर कोई मौके पर कब्जा होगा वो दबंग आदमी है या अनऑक्युपाइड अनऑथराइज ऑक्युपेंट है तो वो जरूर हस्तक्षेप करेगा, आपको पता चल जाएगा कि जमीन किसी और के कब्जे में है या हिस्सेदारी में है, दूसरे भाई का हिस्सा है। इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं जब आप डिमार्केशन कराने जाते हैं तो ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है कि जमीन रिकॉर्ड पर आपके नाम है वो जमीन मॉर्गेज रखी हुई है, बंधक जिसको हमारे लोन ले रखा है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह होती है कि जो तहसील है संबंधित तहसील उस तहसील में वेंडर के यहाँ एक फार्म आता है जिसको आमतौर बोलचाल में 12 साल फार्म बोलते हैं, उस फार्म में

0: उस संबंधित प्लाट नंबर, खसरा नंबर, पूरी जो उस जमीन की पर्टिकुलर्स हैं उनको आप भर करके जो भी तहसील है संबंधित तहसील के उप रजिस्ट्रार के यहाँ आप दे देंगे। उसकी कुछ न्यूनतम फीस होती है और फिर वो उस जमीन का 12 साल का पूरा रिकॉर्ड कि 12 साल इस पर अभी तक किसी और के नाम है
1: जी,
0: और इस पर लोन है कि नहीं है, ये सारी जो भी वस्तुस्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी और आपको वो दे दी जाएगी।
1: अच्छा वकील साहब, आपने ये जो 12 साल वाला फॉर्म बताया है कि आपको रजिस्ट्रार के पास जाना है, उप रजिस्ट्रार के पास वो फॉर्म भरा जिसकी शुल्क है कुछ, हाँ। उसके बाद आपको पता चल जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति है, उसने उस पर लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, कुछ मान लिया कि 5 लाख का लोन लिया हुआ है, तो क्या इसकी सूचना उप रजिस्ट्रार के पास जमा होती है पहले से?
0: जी, जमीन जहां पर भी स्थित होती है, जब मॉर्गेज करने आप जाते हैं तो मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन होता है और अब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार यह मस्ट है कि अगर प्रॉपर्टी 100 रुपए से अधिक है प्रॉपर्टी का मूल्य तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो जब आप कोई संपत्ति मॉर्गेज करते हैं उसके बदले लोन लेते हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है,
1: यानी कि बैंक भी ये इन्फॉर्मेशन देता होगा।
0: हाँ नहीं, रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर प्लाट का उल्लेख होगा, आपसे वो जो सेल डीड का पेपर तो बैंक ले लेता है लेकिन आपके और उसके बीच में कि अमुक प्रॉपर्टी मैंने इनको मॉर्गेज किया है उसके बदले हम इतना लोन ले रहे हैं, ये टर्म एंड कंडीशन एक डीड बनती है मॉर्गेज डीड, वो जाकर के उसी संबंधित तहसील जहां आपकी वो स्थित है लैंड, पर्टिकुलर लैंड या फ्लैट, उस तहसील में ही वो रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको जब जानकारी मांगी जाएगी तो वही जमीन के बारे में आप जानकारी चाह रहे हैं तो अगर सेल डीड भी मिल जाएगी, हाँ पहले कौन कौन लोग इसमें बेचे और खरीदे गए हैं, कितनी बार बेची गई या इस पर लोन भी लिया गया, तो वो सारी जानकारी। इसके अलावा थोड़ा सा मैं यहाँ पर और जोड़ दूँ, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर जो रजिस्ट्री और स्टैम्प डिपार्टमेंट है,
1: बिल्कुल
0: हाँ, उसकी अधिकृत वेबसाइट है, उस पर अब लगभग 2017 के बाद की जितनी रजिस्ट्री हुई है वो सारी जानकारियाँ ऑनलाइन हैं। वो पर्टिकुलर आप जिससे आप खरीद रहे हैं उसका नाम पूछेंगे और प्लाट नंबर, उसका पूरा डिटेल
1: gunakshan.com जो भी .in है
0: जी,
1: उस पर जा करके ये इन्फॉर्मेशन आपको ले लेनी होगी।
0: बिल्कुल, वहाँ पर आप पर्टिकुलर भरेंगे तो पूरा डिटेल आपको आ जाता है
1: जी। ये उसमें जब कुछ लोगों ने रिकॉर्ड भरा उस जमीन का तो कुछ खसरा नंबर भी निकलता है, तो लोग ये समझ नहीं पाता कि खसरा नंबर क्या होता है।
0: आमतौर पर 3 भाषा है, उर्दू में उसे अराजी नंबर बोलते हैं, खसरा नंबर, और उसी को इंग्लिश में प्लाट नंबर कहते हैं।
1: अच्छा, प्लाट नंबर है जी,
0: खसरा नंबर, प्लाट नंबर। थोड़ा बहुत कानूनी रूप से एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो खसरा और इसमें अंतर आता है, लेकिन आमतौर पर फ्लैट या रेजिडेंशियल पर्पज के लिए तो तीनों चीज एक ही है। खाता नंबर अलग होता है, एक खाते में कई प्लाट हो सकते हैं,
1: मतलब उस व्यक्ति के नाम पर कई
0: जी, जैसे आपका एक खाता नंबर है पर्टिकुलर, सपोज दैट कि वो 500 स्क्वायर वर्ग मीटर है, अब उसमें आपने छोटे छोटे प्लाट कर दिए हैं और उसको जब बेच देंगे अमुक ए बी सी डी को, फिर वो प्लाट उनके नाम होगा। तो यानी खाता जो है वो बड़ा सर्किल है और प्लाट उसके छोटे छोटे,
1: यानी कि खाता अक्सर जब कोई जाता होगा तो ब्रोकर का खाता नंबर होता
0: जी,
1: है
0: जी, हाँ,
1: एक बड़ा प्लॉट उन्होंने ले रखा है, कई इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स उन्होंने बनाए हुए हैं
0: जी।
1: इसमें कोई धोखाधड़ी की गुंजाइश तो नहीं होती वकील साहब? सपोज कि हमने ऑनलाइन, कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई आपने रजिस्ट्री करवा ली, फिर कोई और दावेदार आ जाता है और उनको लगता है कि, या फिर धमकी देते हैं कि आप जमीन छोड़ दें, कुछ ऐसा हो?
0: आम आप जो जानकारी है काफी अपडेट किया जा रहा है और अपडेट है ऑनलाइन भी, लेकिन फिर भी एक लैटिन में कहावत है जहां से कॉमन लॉ का विकास हुआ कि कैबियट इम्प्रेटर, कैबियट इम्प्रेटर की बायस बीवेयर, यानी खरीदार जो है वो सचेत रहे। खरीदार सचेत रहने से यही तात्पर्य है कि हर समय ये पूरी लायबिलिटी खरीदार की होगी कि जो अपरेंटली जो एरर्स हैं, जो प्रत्यक्ष गलतियां या त्रुटियां एक सामान्य प्रूडेंस वाला समझदार आदमी समझ सकता है, यह दायित्व कानून ही उस पर आरोपित करता है कि ये उसकी लायबिलिटी होगी जमीन जब वो खरीद रहा हो, तो वो उसके सारे इफ एंड बट को देख ले। तो एक तो आपने ऑनलाइन देख लिया, लेकिन अपने को मुतमईन करने के लिए जो मैंने कहा 12 शाला, वो संबंधित तहसील जहाँ भी जमीन स्थित है, हर जमीन कोई ना कोई तहसील में ही होगी, तो उस जुरिस्डिक्शन में, उस क्षेत्राधिकार वाली तहसील में जाकर के जब आप 12 साला निकालेंगे तो उसमें सारे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे कि अब तक पहले इसके पहले
1: बेची। कितना समय लगता होगा रमेश जी 12 साला फॉर्म भरकर इन्फॉर्मेशन निकलवाने में?
0: तो आप दूसरे दिन दे देते हैं,
1: दूसरे दिन,
0: मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशंस है या कोई भी प्रॉब्लम है, इंटरनेट, अब तो ज्यादातर रजिस्ट्री ऑनलाइन हो गई है, तो और बायोमेट्रिक

0: ट्रिक, थंब इम्प्रेशन, सारी चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हैं, तो बहुत अब गलतियां गुंजाइश नहीं रह गई है।
1: जी।
0: लेकिन फिर भी ये आपकी जानकारी है, क्योंकि अपनी गाढ़ी कमाई आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जब सावधानी की बात चली है, तो मैं इसी समय जोड़ देता हूँ कि मैंने जैसा बताया कि 4-5 कानूनों का इस्तेमाल एक साथ होता है किसी ज़मीन पर।
1: जी
0: हम अभी 3 कानून की बात ऐसे ही कर लिए, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया। इसके अलावा जब शहर महानगरों में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो अपने फ्लैट भी बेचते हैं, प्लाट भी बेचते हैं।
1: जैसे

0: स्टैम्प ड्यूटी एक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया। इसके अलावा जब शहर महानगरों में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो अपने फ्लैट भी बेचते हैं, प्लाट भी बेचते
1: यानी
0: हैं,
1: जैसे इलाहाबाद या प्रयागराज विकास प्राधिकरण
0: प्राधिकरण, ये
1: होगा।
0: अर्बन प्लानिंग एक्ट 1973 के तहत इनका गठन होता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग महानगरों में अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं, लेकिन ये मूल एक्ट है, ये अर्बन प्लानिंग एक्ट। इनका उद्देश्य ही ये है कि शहरों का जो विकास हो वो सुगठित और सुव्यवस्थित हो, और उनमें अर्बन प्लानिंग एक्ट में जो पूरा इंतज़ाम है उसमें महत्वपूर्ण रूप से यही है कि जब आप ज़मीन खरीदें ये भी ज़रूरी है कि आप ये देख लें कि वहाँ से मैप सेंक्शन है कि नहीं सेंक्शन है। सपोज़ दैट प्राइवेट डेवलपर से आप ले रहे हैं तब भी उसको संबंधित डेवलपमेंट अथॉरिटी से सेक्शन कराना होता है, मैप का वहाँ से अनुमोदन प्राप्त करना होता
1: इसका
0: है।
1: मतलब कि ऐसी जमीन लें जहाँ पे आप ढंग का घर बना सकें,
0: जी
1: और
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए उस जिले या फिर शहर का जो प्राधिकरण है जो आप कह रहे हैं, वहाँ भी आपको एक जांच पड़ताल, यानी दो
0: हाँ
1: जगह से जांच पड़ताल
0: ज़्यादा
1: बहुत ज़रूरी
0: जरूरी
1: है,
0: है,
1: एक
0: बिल्कुल
1: रजिस्ट्रार ऑफिस से और एक प्राधिकरण से।
0: प्राधिकरण से जानकारी करने से ये होगा कि प्राधिकरण का सेक्शन 27A स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसे प्राधिकरण दो तरह की योजनाएं शहरों के विकास के लिए चलाता है, एक को जोनल प्लान कहते हैं और एक होता है अर्बन प्लान, कि कहाँ उद्योग लगेंगे, कहाँ पर रिहायशी इलाके होंगे। ये अगर उसके कंट्रावेंशंस में कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो वो प्राधिकरण को अधिकार होगा और उसको डिमोलिश कर सकती है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: रमेश जी, ये भी एक कुछ लोगों ने कहा, जिन लोगों ने जमीन खरीदा वो कहते हैं कि भाई आप अगर और इत्मीनान करना चाहते हैं तो ठीक है, आपके पास कैश रखा हुआ है, कि अगर कोई 10 लाख की जमीन ले रहा है, 20 लाख की, 30 लाख की, जितने भी आपके पास वो कैश रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप कुछ लोन बैंक से लें ताकि बैंक भी एक वेरीफाई कर लेता है,
0: हाँ बिल्कुल
1: क्या ये
0: बिल्कुल
1: सच
0: बिल्कुल,
1: है।
0: नहीं बिल्कुल सच है इसमें, क्योंकि
1: हाँ
0: बैंक जब आपको लोन देता है
1: जी
0: तो संबंधित ज़मीन के बारे में वो भी पूरी जानकारी, उनके अपने काउंसिल होते हैं उनके थ्रू, क्योंकि वो इंश्योर होना चाहते हैं कि
1: कि हम जो
0: एश्योरेंस,
1: पैसा लगा
0: हाँ
1: रहे
0: लगा रहे
1: हैं।
0: हैं, वो व्यर्थ ना चला जाए और पैसे की रिकवरी हो सके, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा मैं इसी कड़ी में ये बात
1: जी
0: और बता दूं कि एक तो दो चीज़ें हो गई, तीसरी रेरा एक अथॉरिटी है वो भी
1: बिल्कुल
0: रियल इस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। ये 2016 में जाके एक हमारे पार्लियामेंट ने कानून बनाया, खास तौर से जब बड़ी संख्या में जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनके द्वारा बहुत धांधली, और जैसा अभी आपने चर्चा में भी कहा कि अमुक कट ऑफ डेट दी गई, फिर पता लगा कि उस आपको फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके दिया ही नहीं गया
1: बिल्कुल
0: और पैसा आपसे ले लिया गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो ये रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट बनाया गया, उसके तहत हर स्टेट में एक रेरा बनाया गया है, वो रियल इस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है, जिसमें ये मस्ट है कि कोई भी प्राइवेट डेवलपर्स होगा तो उसको वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपना खुद का, और जिस जमीन का वो डेवलप कर रहा है उसके बारे में सारी जो औपचारिकताएं हैं उसने पूरी कर लिया है कि नहीं। यदि उसने नहीं पूरी किया है तो वो जमीन डेवलप नहीं कर सकता है, और इस संबंध में भी आप जानकारी ले लें कि आप जो जमीन खरीदने जा रहे हैं क्या रेरा के तहत वो ब्रोकर वो इस्टेट डेवलपर दर्ज
1: रजिस्टर्ड है कि नहीं।
0: नहीं है,
1: जी
0: और इसके अलावा जो रेरा के नॉर्म्स हैं, जैसे अगर कॉलोनी है तो उसमें 1/3 ग्रीन एरिया होनी चाहिए, वो सड़क से कितनी दूर होना चाहिए।
1: इसका मतलब कुछ रिसर्च तो कर ही लें और बहुत हड़बड़ी ना दिखाएं जमीन
0: हाँ ये
1: खरीदने
0: बिल्कुल
1: में।
0: संपत्ति का मामला है इसमें, जिससे कहते हैं ना विश्वासी पर भी अधिक विश्वास न करें, आपका
1: हाँ
0: हो सकता है कई बार ब्लड रिलेशन और इस तरह के लोग
1: जी
0: जो
1: जी
0: दोस्त
1: जी
0: यार भी धोखा
1: हाँ
0: देते हैं, तो इसलिए
1: बिल्कुल
0: अपनी आंखों पर ही भरोसा करें और खुद समझने की कोशिश करें। रोड चौड़ीकरण के लिए जैसे होता है कि 100 मीटर तक आप अलग अलग सड़कों के हिसाब से वो तय हुआ कि इसके अंदर आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें कि वो जो जहाँ पर ज़मीन स्थित है ये भी महत्वपूर्ण है कि वो जो रोड है वो स्टेट हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है या नेशनल हाईवे है, फिर उसकी कुछ सीमा होती है उसके अंदर तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि जब वो चौड़ीकरण होगा तो आपका मकान गिरा दिया जाएगा, तो इसलिए ये भी
1: यानी
0: ध्यान
1: थोड़ा
0: रखें।
1: ध्यान रख लें कुछ।
2: कानून और हम कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अधिवक्ता रमेश कुमार से नेहा गुप्ता की बातचीत। जमीन की रजिस्ट्री करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और FM 100.3 MHz पर। 8:45 होने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलिया रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार सवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा

0: स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब से
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-1481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
4: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश

0: for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लांग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जामे इक्तिसादी शराकत दारी के माहिदे पर अमल आवरी शुरू हो गई है। ओमान की टेरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनती शराकत दारी को फरोग देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहिली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लांग ने आज बाहमी उमूर के तमाम मामलात पर तफसीली मुज़ाकरात किए, जिनमें तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात, दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात, सरहदों का बंदोबस्त, तरक्की में तआवुन, सकाफती तबादले और इलाकाई सूरत हाल शामिल हैं। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने करीबी तआवुन को फ़रोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया, बिलखसूस तजारत और सरमायाकारी, तरक्याती तआवुन, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में तआवुन को बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की गई। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने म्यांमार की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहत भारत की हिमायत की तौसीक की और दोनों मुल्कों ने ऐसी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत को उजागर किया जो दोनों के सिक्योरिटी मफादात के लिए नुकसानदेह हों। जनाब मिसरी ने कहा कि म्यांमार के सदर ने इस यकीन दहानी को दोहराया कि म्यांमार की सरजमीन को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जनाब मिसरी ने कहा कि म्यांमार एक अहम मुल्क है और एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत की सरहद 1643 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये भारत की पड़ोसी को अव्वलियत देने एक्ट ईस्ट, नीज महासागर और भारत बहरुल काहल पॉलिसियों में मरकजी हैसियत रखता है। भारत और म्यांमार के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन $2 अरब पर मुश्तमिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत की पड़ोस पहले एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी पॉलिसियों में म्यांमार अहम शराकतदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लांग का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और म्यांमार के सकाफती, तहजीबी और रूहानी ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत से म्यांमार के गहरे रिश्ते की निशानदही करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और म्यांमार के दरमियान मुश्तरक सरहद होने की वजह से म्यांमार जुनूब मशरकी एशिया में रसाई का जरिया भी है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान जामे इक्तिसादी शराकत दारी माहिदा CEPA जिस पर 6 महीने कबल दस्तखत किए गए थे आज से नाफिजुल अमल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि CEPA सिर्फ कोई तिजारती माहिदा नहीं है बल्कि ये तहजीबी रिवायतों पर एतमाद का एक बयानिया है। जनाब गोयल ने कहा कि ये जामे माहिदा ओमान के साथ भारत के ताल्लुकात को नई रफ्तार अता करेगा। मरकजी वजीर ने मुतल्ला किया कि पहले ही दिन भारत को ओमान के टैरिफ खतूत के 98% तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो जाएगी और ये ओमान के लिए भारत की 99% बरामदात का अहाता करते हैं। वजीर मौसूफ ने इत्तला दी कि मुख्तलिफ साजो सामान पर मुश्तमिल कई खेप मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आज पानी के जहाज से रवाना हो रही हैं जो कि इस माहदे पर अमल आवरी की अलामत है। CEPA के तहत कई अहम हसूलियाबियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि USFDA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या UKMHRA से मंजूर शुदा भारत की जेनरिक दवाओं को अब 90 दिन के अंदर ओमान में मार्केट ऑथोराइजेशन मिल जाएगी।

0: लाख डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: मुल्क भर में होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारी इदारों के इस्तेमाल में आने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। अलबत्ता घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 42 रुपये का इजाफा हुआ है और अब ये सिलेंडर 3,113.50 रुपये का हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में पिछले 12 साल के दौरान भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नज़रिए के तहत काबिल ज़िक्र अक्सर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे में मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी फीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज किसानों की बहबूद के तहत हुकूमत के इकदाम पर रोशनी डाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 12 साल के दौरान किसानों की फलाह बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफे के लिए कई इकदाम किए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला PM किसान स्कीम का आगाज है, जो कि मुल्क में फलाह बहबूद का सबसे बड़ा कदम है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में फराहम किए जाते हैं। इसके तहत तकरीबन 9.5 करोड़ किसान कुटुंबों को 4,28,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम मुंतकिल की गई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: मुख्तलिफ जराए के जरिए किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए PM मत्स्य संपदा योजना और मवेशी परवरी के कौमी मिशन जैसी स्कीमों का आगाज किया गया। PM कृषि सिंचाई योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जैसी कोशिशों ने सिंचाई को मुस्तहकम किया और मिट्टी की पैदावारियत में इजाफा किया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदा ने स्कीम की तारीफ करते हुए इसे किसानों के लिए फायदेमंद बताया, क्योंकि ये उनके गुजर बसर में मदद कर रही है।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपये की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने पैदावारी लागत का 1.5 गुना MSP मुकर्रर की है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए 154 मिलियन टन से ज्यादा चावल की रिकॉर्ड पैदावार के साथ चावल उगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जदाश्त की समाअत से इनकार कर दिया जिसमें NEET UG 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान को मौजूदा कागज़ कलम फॉर्मेट की बजाय कंप्यूटर पर मबनी जांच के तर्ज पर मुनाकिद करने की दरख्वास्त की गई थी। जस्टिस PC नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की एक बेंच ने कहा कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को कंप्यूटर पर मबनी जाँच CBT मोड में मुनाकिद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इम्तिहान की मनसूखी के बाद पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है कि तलाक के सिलसिले में डिक्रीज जारी करना लोक अदालतों और ज़िला लीगल अथॉरिटीज़ के दायरे इख्तियार में नहीं आता। हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि शादी को मनसूख करने का इख्तियार पूरी तरह से फैमिली कोर्ट्स के पास है। एक खातून की जानिब से उन्नाव की ज़िला लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA के साल 2018 के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त की समाअत के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये बात कही। अर्जीगुजार का इल्जाम था कि उसके शौहर ने सेटलमेंट रिकॉर्ड को DLSA

के सामने तलाक डिक्री के तौर पर पेश किया और इसे दोबारा शादी करने की बुनियाद बनाया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज इलाकाई पार्टनरों के साथ ताउन को फ़रोग देने की अहमियत की तौसीक की है ताकि एक आज़ाद, खुले, पुरमन, मुस्तहकम और खुशहाल भारत बहरुल काहल को बरकरार रखने में मदद मिल सके। नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वज़राए दिफा मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आज़ादी और खित्ते में बिला रुकावट तिजारत के लिए अपनी मजबूत हिमायत और बैनुल अक्वामी कानून के मुताबिक समंदर के दीगर कानूनी इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस ने की। एक बयान में वजारत दिफा ने बताया कि दोनों मुल्कों ने समंदरी सरहद की सिक्योरिटी के बाहमी ताउन में पेशरफ्त और समंदरी सरहद की सिक्योरिटी इश्तराक के मुश्तरका लाहे अमल को कतई शक्ल देने के मामलों पर तबादला ख्याल किया। वजरा ने ऐलान किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दिफाई सनती शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अगले कदम के तौर पर दिफाई आर्टिकल और दिफाई सर्विसेज की शिकों के मुतालिक एक मफाहमत नामे की तैयारी शुरू करेंगे। दोनों वजीर सेंसर टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी के नए शोबों में मुस्तकबिल की दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी की तहकीक में ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। मगरबी बंगाल काबीना में 35 नए वजीरों की शमूलियत के साथ आज तौसी की गई। इस सिलसिले में कोलकाता में लोकभवन में आज हलफबरदारी की तकरीब मुनद हुई। गवर्नर आरएन रवि ने वजरा की काउंसिल में शामिल होने वाले नए अराकीन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी समेत दीगर सियासी लीडरों के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। आज काबिनी वजरा के तौर पर हलफ लेने वाली शख्सियात में स्वप्नदास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तपस रॉय, शंकर घोष और दीगर शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने दो कानून साजों संदीपान साहा और ऋतव्रता बनर्जी को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों, अहम मीटिंगों से गैर हाजिर रहने और पार्टी क़यादत के मुतालिक नुक्ताचीनी करने वाले अवामी बयान देने के सिलसिले में पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। साल 2026 के मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में TMC की शिकस्त के बाद अंदरूनी खलफशार के दौरान ये फैसला सामने आया है। मलेशिया बच्चों के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उम्र पर मबनी पाबंदियां आयद करने वाला नया मुल्क बन गया है। आज से नाफिज होने वाले नए जाब्तों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की इजाज़त नहीं होगी और प्लेटफॉर्म्स को उम्र की तस्दीक से मुतालिक निज़ाम और बच्चों की तहफ़ की खसूसियात पर अमल करना होगा। इन इकदाम का मकसद बच्चों को नुकसान पहुँचाने वाले मशमूलत, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन डिज़ाइन की लत लग जाने से महफूज रखना है। वो कंपनियां जो इस जाब्ते पर अमल आवरी नहीं करेंगी उन्हें 1 करोड़ रिंगिट तक के जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया ने सोशल मीडिया तक बच्चों की रसाई पर पाबंदियों को मुतारिफ कराया है, जबकि ब्राज़ील ने वालिदैन की सख्त तरीन निगहदाश्त और उम्र की तस्दीक से मुतालिक इकदामात पर अमल शुरू कर दिया है। भारत की सनती पैदावार में अप्रैल 2025 के मुकाबले अप्रैल 2026 में 4.9% की तरक्की हुई है। ये तरक्की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उम्दा कारकर्दगी की वजह से हुई। आदाद शुमार और प्रोग्राम पर अमल आवरी की वजारत ने बताया कि यह आदाद शुमार सनती पैदावार के नजरसानी शुदा इशारे IIP सीरीज़ पर मबनी है, जिसका बुनियादी साल 2022-23 है। इसमें कहा गया है कि इस माह के दौरान 6.2% तरक्की रिकॉर्ड की गई। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहली आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज़ आंधी की सूरत हाल के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने वस्ती कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और कराईकल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सिक्किम में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज़ हवाएँ चलने की भी पेशगोई की है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जामे इक्तसादी शराकत दारी के माहदे पर अमलावरी शुरू हो गई है। ओमान की टेरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनती शराकत दारी को फ़रोग देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और
राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहली आंध्र प्रदेश

0: प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम कहकशा। श्रोताओं नमस्कार। गजलों की दुनिया में कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो केवल सुनी नहीं जाती बल्कि दिल की गहराइयों में उतर जाती हैं। लीजिए सुनिए इसी ऐसे ही भावपूर्ण और दिल नशी गजल जिसे अपनी मधुर और संवेदनशील आवाजों से सजाया है भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह ने। भूपेंद्र सिंह की गहरी मखमली आवाज और मिताली सिंह की मधुर अभिव्यक्ति इस गजल को एक विशेष ऊंचाई देती है। दोनों कलाकारों की जुगलबंदी गजल के भावों को बड़ी सहजता और खूबसूरती से श्रोताओं तक पहुंचती है।

श्रोताओं, गजल की दुनिया में कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान के भीतर छिपे अकेलेपन, बेचैनी और तलाश को बड़ी खूबसूरती से आवाज देती हैं। गजल गायकी के बेमिसाल फनकार गुलाम अली, अद्वितीय गायकी, सुरों की नज़ाकत और भावों की गहराई से इस रचना को अमर बना दिया।

कुछ पल के लिए रोजमर्रा की भागदौड़ से अलग होकर शब्दों और सुरों की इस खूबसूरत दुनिया में खो जाएं। पेश है अमीर मीनाई की कालजयी गजल जगजीत सिंह की दिल नवाज आवाज में।

मक्ता पेश कर रहा हूँ जनाब, अमीर मिनाई की गजल है, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूँ उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस मक्ते में हुजूर और जनाब का जो इस्तेमाल किया शायर ने, जहाँ तक मेरी समझ में आया है तो मैंने उसको कोशिश की है कि आपको बताऊं कि शायर ने क्या सोचा था। हुजूर और जनाब में वही फ़र्क है जो पंजाब में और लखनऊ में फ़र्क है।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम कहकशा अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गाना हमने लिया है फिल्म कयामत से कयामत तक का। आवाज है उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और लता मंगेशकर को फिल्म डर में, और आइए अब सुनते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गाना, आवाज़ है किशोर कुमार की।

अभी आप सुन रहे थे नितिन मुकेश को और लता मंगेशकर को फिल्म नूरी में, और आइए अब सुनते हैं फिल्म निकाह में महेंद्र कपूर को।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए पंडित उमा शंकर मिश्र का सितार वादन, राग है हेम बिहाग, तबले पर संगत की है श्री लतीफ अहमद खान ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित उमा शंकर मिश्र का सितार वादन, राग था हेम बिहाग, तबले पर संगत की थी श्री लतीफ अहमद खान ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, ये आपको जानकारी दे दें कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 10 बजे खेल दर्पण, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर SD मैकार्टी से की गई बातचीत, दुधारू एवं गाभिन पशुओं की देखभाल इस विषय पर। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर युगांतर पांडे की वार्ता होगी गर्मी के मौसम में शिशुओं की देखभाल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन होगा और दोपहर 12:15 पर पंडित गोपाल दास का क्लेरिनेट वादन और रात 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन होगा। नमस्कार प्रयागराज का समय होगा 8:45। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर सोनू निषाद और शाम 7:45 पर शिवानी के सरवानी से भजन और गीत सुनिएगा।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व

0: पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitrakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ओरिएंट अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to the